मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 13वीं तिथि तदनुसार 3 जून 2026। प्रातः के 5:58 हुए हैं। हमारी प्रथम प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
2: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
3: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
1: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
3: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगर पालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात

0: ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सुप्रभात समस्त श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम वंदना में। चलिए भगवान गणेश के चरणों में शीश नवाकर उदित नारायण जी के गाए इस पावन देह भजन के साथ आज के दिन का मंगल शुभारंभ करते हैं।

श्रोताओं, अब सुरमई लहरों पर सवार होकर चलते हैं बप्पा के एक और सुंदर धाम, जहां सुरेश वाडेकर और उनके साथी पुकार रहे हैं जय जय मंगल मूर्ति गणेश।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस वक्त भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। और आइए आज की इस पावन बेला में, इस कार्यक्रम में, उस परम सत्ता का ध्यान करें जिन्होंने इस सृष्टि को अपनी मुरली की तान से बांध रखा है। स्वर है चित्रा सिंह का।

घट घट में जो रम रहा बाहर खोजन जाए क्यों, रोम रोम में जब हरी कहे मनुआ भटके आए क्यों। आइए अपने भीतर बैठे परमात्मा को महसूस करें और सुनते हैं ये शब्द भाई हरि सिंह रागी के स्वर में।

मदीने वाले की महफिल है, जरा अदब से नाम लो। मदीने वाले की महफिल है, जरा अदब से नाम लो। तड़प रहे हो अगर करम को, तो दामने रहमत थाम लो। जी हाँ श्रोताओं, अब वक्त है उस बरगाहे रिसालत में हाजिरी लगाने का, जहाँ हर दिल को सुकून मिलता है। आइए अफजाल हुसैन साहब की मखमली आवाज में अकीदत के कुछ फूल पेश करते हैं और सुनते हैं ये पाक नात।

अफजाल हुसैन की गाई इस नात के साथ ही श्रोताओं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

पतित पावनी गंगा का सुहावना तट, अशोक वृक्ष के नीचे कुश और कोमल पत्तों की साथरी पर श्री राम तथा सीता रात्रि विश्राम कर रहे हैं। प्रभु को धरती पर शयन करते देख निषादराज गुह का मन विषाद से भर जाता है। लक्ष्मण ने निषादराज की मनोदशा भांप उन्हें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उपदेश दिया। कहा, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। भले बुरे का योग, मिलन और वियोग, शत्रुता, मैत्री तथा उदासीनता भ्रमजाल हैं। जन्म और मरण, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल इस जगत के जंजाल हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है चिंतन।
1: सेवा के लिए पहली शर्त प्रेम है, अर्थात जिसके दिल में प्रेम है वही सेवा कर सकता है। टॉलस्टॉय ने कहा है कि प्रेम स्वर्ग का रास्ता है। बुद्ध का कथन है, प्रेम इंसानियत का नाम है। ईसा ने कहा है, प्रेम संसार की ज्योति है। विक्टर ह्यूगो का कहना है कि जीवन एक फूल है और प्रेम उसका मधु। राम कृष्ण परमहंस ने कहा है, प्रेम अमरता का समंदर है। कबीर का कथन है, जिस घट में प्रेम नहीं उसे मरघट समझ, बिना प्राण के सांस लेने वाली लुहार की धौंकनी। अलग अलग शब्दों में सभी महापुरुषों ने प्रेम का बखान किया है। वास्तव में प्रेम मानव जाति की बुनियाद है। प्रेम ऐसा चुंबक है जो सबको अपनी ओर खींच लेता है। जिसके हृदय में प्रेम है उसके लिए सब अपने हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में तो सारी पृथ्वी को एक कुटुंब माना गया है। वसुधैव कुटुंबकम, जो सबको प्रेम करता है उससे बड़ा दौलतमंद कोई नहीं हो सकता। वो दूसरे के लिए दिल में ऊंची भावना पैदा कर देता है। आप जानते हैं आदमी को भूमि से कितना मोह होता है। कौरवों ने कहा था कि हम पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे, लेकिन विनोबा भावे के प्रेम ने लाखों एकड़ भूमि इकट्ठी करा दी। उन्होंने लोगों से ये नहीं कहा कि मुझे जमीन दो, नहीं दोगे तो कानून से या जोर जबरदस्ती से तुम्हारी जमीन को छिनवा दूंगा। जिसका हृदय प्रेम से सराबोर हो वो ऐसी भाषा भला कैसे बोल सकता था। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे भाइयों, मैं तुम्हारे घर पर आया हूं। तुम्हारे 5 बेटे हैं, छठा होता उसका भी लालन पालन तो आपको करना ही होता। मुझे अपना छठा बेटा मान लो, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। विनोबा का ये प्रेम ही था जिसने लोगों के दिलों को मोम बना दिया। किसी किसी ने तो अपनी सारी की सारी जमीन उनके चरणों में रख दी। जिसका हृदय निर्मल है उसी में ऐसे महान प्रेम का निवास रहता है। असली प्रेम तो वो है जिसमें किसी प्रकार के बदले की भावना ना हो। इतना ही नहीं, उसमें विरोधी के लिए भी जगह हो। गर्मी से व्याकुल होकर हम न जाने कितनी बार सूरज से नाराज हो जाते हैं, पर वो कभी हम पर नाराजगी नहीं दिखाता। हम धरती को रोज पैरों से दबाते हुए चलते हैं, पर वो कभी गुस्सा नहीं होती। जरा गर्म हवा आती है तो हम कहते हैं, मार डाला ऐसी हवा ने। हमारी गाली का हवा कभी बुरा नहीं मानती। यदि गुस्सा होकर सूरज धूप और रोशनी ना दे, धरती अन्न ना दे, हवा प्राण ना दे, तो सोचिए हम लोगों की क्या हालत होगी। ऐसे प्रेम का वरदान विरलों को ही मिलता है, पर जिन्हें मिलता है वो अपने को कृतार्थ बना जाते हैं, दुनिया को धन्य कर जाते हैं।
0: ये था आज का चिंतन। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। कार्यक्रम काव्यधारा में लीजिए सुनिए डॉक्टर चित्रा त्यागी का पूर्व प्रसारित काव्य पाठ।
2: मैं ईश्वर के प्रति अपना समर्पण भाव प्रस्तुत कर रही हूँ। क्षितिज तले मैं बैठ सदा चिंतन करती हूँ, क्षितिज तले मैं बैठ सदा चिंतन करती हूँ, सृष्टि की संरचना का अभिनंदन करती हूँ। उस शक्ति पुंज की शक्ति से आह्लादित हर्षण है, निर्विकार आकार बना सृष्टि का कण कण, प्रलयकारी प्रारब्ध सोच क्रंदन कर

करती हूँ, सृष्टि की संरचना का अभिनंदन करती हूँ। ये शब्द तान ले राग सभी हैं तुम्हें समर्पित, ये मन ये तन ये जीवन चरण युगल में अर्पित, तेरी श्रद्धा में आज मैं शतवंदन करती हूँ, सृष्टि की संरचना का अभिनंदन करती हूँ। हे अगम अगोचर आशीर्वचन तुम्हारे पाऊं, तेरी रचना में मुखरित रचना करती जाऊं, तेरा ये जग का मंच शुरू मंचन करती हूँ, सृष्टि की संरचना का अभिनंदन करती हूँ। प्रस्तुत है मेरी तीन क्षणिकाएं। मैं अकेला शांत मंथर गीत हूँ संवेदना का, मैं अकेला शांत मंथर गीत हूँ संवेदना का, चाह कर भी मैं स्वयं को गुनगुना सकती नहीं, होंगे कभी प्रदीप्त मेरी मंजिलों के रास्ते, वक्त से अनजान राही पथ बना सकती नहीं। रेत के चट्टान सा ढहता हुआ ये मन, झील के पानी सा बहता हुआ ये मन, निर्विकार भाव में रहता हुआ ये मन, जग के झंझावात को सहता हुआ ये मन। धूल धूसरित होते सपने, मिट्टी में मिल खोते सपने, जीवन की क्यारी में नितनित नए सवेरे बोते सपने, सपनों का ये ताना बाना नियति है मन बुनते जाना, सपनों के टूटे क्रम में क्या सपनों का खोना क्या पाना, सपने तो केवल सपने हैं सपनों में बस जीते जाना। प्रस्तुत है मेरी यह कविता बेटी। मैं एक बेटी हूं, सारे दुख दर्द समेट लेने का सामर्थ्य है मुझमें, किंतु मुझे जन्म देने से डरती है मेरी अपनी माँ, भयभीत होती है समाज की परंपराओं से। मैं चांद छूने में सक्षम हूं और सागर की गहराइयों तक पहुंच सकते हैं मेरे हाथ, मैं सपनों के पंख लगाकर उड़ती हूं अंतरिक्ष के आर पार, माँ के हृदय से निकली सिसकियों की आहट और पिता की नम आंखों के कोर, बिना देखे पहचान लेने का हुनर है मुझमें, सहन शक्ति और सहजता का पर्याय हूं मैं, उड़ेल लेती हूँ स्वयं में घर परिवार की पीड़ा और स्वतः ही बिखेर देती हूँ होठों पर स्मित सी मुस्कान। मैं साहस हूँ, शक्ति हूँ, मर्यादा और भक्ति हूँ, सरलता हूँ, सफलता हूँ, माझी और कश्ती हूँ, कर्मठ हूँ, स्नेहा हूँ, सामर्थ्या और सक्षम हूँ, किंतु हाय फिर भी समाज से उपेक्षित हूँ। मेरी मर्मांतक चीख तुम्हारे कठोर हृदय के द्वार खोल सके तो बन जाने देना आप सभी मुझे अपने घर आंगन की चिरैया, सोन चिरैया। प्रस्तुत है मेरी ये कविता बेटियां। हर स्वप्न को साकार करती सभ्यताएं हैं, बेटियां माता पिता की परंपराएं हैं। हर स्वप्न को साकार करती सभ्यताएं हैं, बेटियां माता पिता की परंपराएं हैं। कुदरत का करिश्मा या हुनर झेलने का गम, पावस ऋतु सी बेटियां मधुरिम सदाएं हैं। खिल खिलाती मूर्ति आंगन भी की वो तुलसी, खिल खिलाती मूर्ति आंगन की वो तुलसी, शीत घाम मेह सी ठंडी खटाएं हैं, बेटियां माता पिता की परंपराएं हैं। जोत और अरदास हां घर भर की खुशहाली, जोत और अरदास हां घर भर की खुशहाली, बेटियां सर्वधर्म की सब प्रार्थनाएं हैं। तुमने सुनी थी मैंने भी पढ़ ली हैं आयतें, तुमने सुनी थी मैंने भी पढ़ ली हैं आयतें, ये आरती सी बेटियां वैदिक ऋचाएं हैं, बेटियां माता पिता की परंपराएं हैं। वीरान खंडहरों में बसा दें जो बागवां, वीरान खंडहरों में बसा दें जो बागवां, हर जगह पर बेटियां शीतल हवाएं हैं। पीर बाबुल माँ की आंखों की हर चुभन, पीर बाबुल माँ की आंखों की हर चुभन, साथ बैठी शांत सी संवेद

0: नाएं हैं, बेटियां माता पिता की परंपराएं हैं। खुश हूं मैं, ये शब्द मुस्कुरा के कह दिया। खुश हूं मैं, ये शब्द मुस्कुरा के कह दिया। बेटियां भगवान की 16 कलाएं हैं, बेटियां भगवान की 16 कलाएं हैं। हर स्वप्न को साकार करती सभ्यताएं हैं, बेटियां माता पिता की परंपराएं हैं। प्रस्तुत है ये कविता श्रमिक। मानस पुत्र तुम्हारे उपकारों की कड़ियां, मानस पुत्र तुम्हारे उपकारों की कड़ियां, श्रम पूरित हस्ताक्षर बनते ताजमहल स्वीकृतियां। सृजन और पोषण की है गवाक्ष कलाएं, सृजन और पोषण की है गवाक्ष कलाएं, मेहनत से रंग डाली हाथों की रेखाएं। श्रम के साधक श्रमिक साधना मन में, श्रम के साधक श्रमिक साधना मन में, हाथों का संबल ही बल है सीखा इस जीवन में। अप्रतिम धरोहर गढ़ देते हैं जिनके हाथ, अप्रतिम धरोहर गढ़ देते हैं जिनके हाथ, सबके हृदय की मधुर भावना उनके साथ। श्रम साध्य चेतना सुप्त कभी ना होने पाए, श्रम साध्य चेतना सुप्त कभी ना होने पाए, चाहे अगणित झंझावात अवरोधक बन जाए। नियति का धन्यवाद करो करबद्ध उठाकर, नियति का धन्यवाद करो करबद्ध उठाकर, जिनको न मिला कोई काम व्यथा ये पूछो जाकर। सच्चे साधक बन कर्तव्य निभाते रहना, सच्चे साधक बन कर्तव्य निभाते रहना, छोटा न समझना और स्वयं को कभी न छोटा कहना, छोटा न समझना और स्वयं को कभी न छोटा कहना। मेरी यह कविता प्रस्तुत है भ्रूण हत्या के लिए जो कदम उठाते हैं उन माता पिता अथवा समाज के लिए। मिट्टी के गर्भ में उपजा मटर की कोंपल सा मासूम, मिट्टी के गर्भ में उपजा मटर की कोंपल सा मासूम, तन प्यारा नन्हा छोटे नन्हे नन्हे हाथ पांव, मटर सी फलियों का स्पंदन, सुंदर देहयष्टि बंद पलकें, पूर्ण उच्छ्वास किंतु अचेतन, माटी के कोने में छिपा दुबका सहमा अस्तित्व, उखाड़ फेंकने को आतुर पूतना के हाथ, चीखा चिल्लाया मां मैं तेरा अंश, तेरी काया का पल्लव तेरा प्रतिरूप, आना चाहती हूं आने दे, जीना चाहती हूं जीने दे, देखना चाहती हूं देखने दे, रंगीले सपनीले संसार का यथार्थ रूप। ले आ मां ले आ यथार्थ के भविष्य से बाहर, सार्थक हो तेरा जीवन और मेरा जन्म, किंतु मां पाचाल हो मूक बन गई, नहीं बोली कुछ नहीं, नहीं सुनी कोख की चीतकार, बंद नैनों के कोर से ढुलक गए अनेक मोती, ऐसा हाय विवशता के असंख्य जालों ने जकड़ लिया मकड़ी की तरह। मां छटपटाहट विभत्स रूप चीतकार करुण क्रंदन रुदन मिटा अस्तित्व, एहसास के कांटे चुभ गए हृदय पर कोख पर और मां के घायल हृदय पर, परंतु निर्दयी संसार ने रहम की करवट नहीं बदली।
1: काव्यधारा में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर चित्रा त्यागी का पूर्व प्रसारित काव्य पाठ। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज रात्रि 9:30 पर दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा कार्यक्रम चर्चा का विषय है, और आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। और कार्यक्रम मुझे याद है जरा जरा प्रसारित किया जाएगा हमारे केंद्र से आज रात्रि 10:30 पर। श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे जोगिंदर कौर के गाए शब्द। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही देर में दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार और फिर हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानन्द झा।

0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है। इस यात्रा से भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक, नगरपालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने असम के मूगा रेशम के लिए मिशन स्नेहजोरी का शुभारंभ किया। ये पहल असम के विशिष्ट मूगा रेशम उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सूरत के बारडोली कस्बे के पास कल महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन की 2 बसों की टक्कर में 8 लोगों की मौत और 15 से अधिक लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अध्यक्ष निर्वाचित होने पर डॉ खलीलुर रहमान को बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान घोषणा की गई थी। तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का

0: नजीबाबाद केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा में लीजिए सुनिए जानकारी हथेलियों में स्वास्थ्य विषय पर।
1: ज्यों ज्यों भौतिक सुख सुविधाओं का बाहुल्य होता जा रहा है, त्यों त्यों हमारी कंचन काया नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त होती जा रही है। नए नए अन्वेषण हो रहे हैं और नई नई बीमारियों को काय चिकित्सक एवं वैज्ञानिक हमारे सामने प्रकट करते जा रहे हैं तथा उनकी चिकित्सा के लिए औषधियां भी प्रस्तुत करते जा रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र में इतनी प्रगति के होते हुए भी हम प्रतिदिन ऐसे रोगों से ग्रस्त होते जा रहे हैं जो असाध्य से हो गए हैं। लगता यही है कि इस भोगवादी प्रवृत्ति का हमारी काया को रोगग्रस्त करने से घनिष्ठ संबंध है। हम अपनी धात्री प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं और हमारा अप्राकृतिक रहन सहन हमारे शरीर को अंदर से जर्जर करता जा रहा है। इसलिए सावधान और जागरूक रहने की विशेष आवश्यकता है। यदि हम स्वयं को पंच तत्वों से उपचारित करने की नैसर्गिक कला सीख लें तो पंच तत्वों से निर्मित इस काया को शायद ही किसी औषधि की आवश्यकता पड़े। प्राकृतिक आहार विहार एवं व्यवहार रोगों को दूर करने का एक अनुभूत उपाय है। हमें तो मात्र इतना ही जांचना है कि कौन सी वस्तु का उपयोग करने अथवा उसके संपर्क में आने से हम रोगाक्रांत होते हैं और ये ज्ञात कर उससे स्वयं को दूर रखना रोग को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इसी के साथ ही कुछ शारीरिक परिचालन क्रियाओं को अपनाकर भी हम रोगों को दूर रख सकते हैं। इन्हीं क्रियाओं में ताली बजाना भी एक स्वास्थ्यवर्धक सहज प्रक्रिया है। प्राचीन काल से मंदिरों में आरती, भजन कीर्तन, पूजा आदि में हमारे पूर्वज लोग समवेत रूप से ताली बजाया करते थे। आज भले ही हम इसे महत्व न दें, किंतु शरीर को स्वस्थ रखने का ये एक अत्यंत उत्कृष्ट साधन है। भारतीय साधना पद्धति में ताली बजाना एक मूलभूत जीवन धारण की आवश्यक सामग्री या उपस्कर रहा है। इतना वैज्ञानिक, इतना सुसाध्य, इतना सुगम और इतना प्रभावी न तो कोई व्यायाम है न योग साधना ही। सर्वश्रेष्ठ सहज योग साधना का ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयोग है। ताली बजाइए और रोगों को भगाइए, ये एक पुरानी कहावत है। ताली बजाने से एक उत्कृष्ट प्रकार का व्यायाम हो जाता है जिससे शरीर की निष्क्रियता समाप्त होकर उसमें क्रियाशीलता की वृद्धि होती है। शरीर के किसी भाग में रक्त संचार में रुकावट या बाधा पड़ रही हो तो वो बाधा तुरंत समाप्त हो जाती है। इससे शरीर के अंग सम्यक रूप से कार्य करने लगते हैं। रक्त वाहिकाएं ठीक रीति से तत्परता के साथ शुद्धिकरण हेतु रक्त को हृदय की ओर ले जाने लगती है और उसको शुद्ध करने के अनंतर सारे शरीर में शुद्ध रक्त पहुंचाती है। इससे हृदय रोग, रक्त नलिकाओं में रक्त का थक्का बनना समाप्त हो जाता है और भविष्य में हृदय या धमनियों की शल्य क्रिया कराने की नौबत नहीं आने पाती। फेफड़ों में शुद्ध ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होने के कारण तथा अशुद्ध हवा का फेफड़ों से पूरी क्षमता से निष्कासन होते रहने के कारण फेफड़ों की बीमारियों की भी समाप्ति हो जाती है। रक्त में लाल रक्त कणों की वृद्धि होती है जिससे कई रोगों से मुक्ति मिल जाती है। हृदय ही नहीं, सारी काया में शुद्ध रक्त का संचार सुव्यवस्थित रूप से होते रहने से रोगों का प्रभाव समाप्त प्राय हो जाता है और शरीर में चुस्ती, फुर्ती तथा ताजगी आ जाती है। ताली बजाने से श्वेत रक्त कण सक्षम तथा सशक्त बन जाते हैं जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। हम निरोग होने लगते हैं और शरीर के अधिकतम एक्यूप्रेशर प्वाइंट पैरों एवं हाथों में ही होते हैं, विशेष रूप से पैरों के तलवे एवं हाथों की हथेली में। ताली बजाने से हाथों के एक्यूप्रेशर केंद्रों पर अच्छा दबाव पड़ता है और शरीर निरोग होने लगता है। शुद्ध रक्त हृदय से पैरों तक पूरी क्षमता से दौड़ता है और पैरों के एक्यूप्रेशर केंद्रों को भी शक्तिमय बना देता है जिससे हमारा शरीर निरोग बना रहता है।
0: हथेलियों में स्वास्थ्य, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे जानकारी। कार्यक्रम था स्वास्थ्य चर्चा, आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। जानकारी का विषय है संतुलित उर्वरकों का प्रयोग।
2: किसान भाइयों राम राम। खेती की बातें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं उर्वरकों के संतुलित प्रयोग के बारे में। किसान भाइयों, हम अपनी मिट्टी से लगातार फसल उत्पादन ले रहे हैं और हमारा ये प्रयास रहता है कि हम निरंतर अपने खेतों से फसल उत्पादन लेते रहें। इसके लिए हम लगातार अपने खेतों में खेतीबाड़ी करते हैं, शस्य क्रिया करते हैं, साथ ही उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग भी करते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि हमारी जो खेती में आने वाली लागत है वो बढ़ जाती है, साथ ही हमारा पर्यावरण भी इससे प्रदूषित होता है। तो किसान भाइयों, हमें उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करना है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधों को आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में और उचित समय पर उपलब्ध हो जाते हैं। संतुलित उर्वरक प्रयोग पौधों को स्वस्थ रखने, उनकी वृद्धि को बढ़ावा देने और उत्पादन को बढ़ाने में सहायता करता है। संतुलित उर्वरक पौधों को उनकी विकास की हर अवस्था में आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। संतुलित उर्वरक मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने और बेहतर करने में मदद करते हैं, जिससे मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है और मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर होता है। संतुलित उर्वरक प्रयोग से रासायनिक उर्वरकों का कम उपयोग होता है, जिससे पर्यावरण पर होने वाला नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है, साथ ही हमारा वातावरण ठीक रहता है। आइए हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से उर्वरकों का संतुलित प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है कि हमारे किसान भाई मिट्टी का परीक्षण कराएं और अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण करवाकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड लेकर ही हम जो है अपनी मिट्टी में, अपने खेत में हम संतुलित उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं और इससे जो हमें रिपोर्ट मिलती है उसी से हम ये जान सकते हैं कि हमारी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व विद्यमान हैं और किन किन पोषक तत्वों की कमी हमारी मिट्टी में पाई गई है। तो फिर हम रिपोर्ट के आधार पर, जो कि अनुशंसा की गई है, उसके आधार पर हम संतुलित उर्वरक प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी परीक्षण के आधार पर पौधों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्वों का सही अनुपात हम प्रदान कर सकते हैं। उर्वरकों का सही समय पर और सही मात्रा में प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है, साथ ही हम अंधाधुंध खर्च से भी बच जाते हैं। उर्वरकों को पौधों की जड़ों के पास या जड़ों के आसपास छिड़क कर प्रयोग करें ताकि पौधे उन्हें आसानी से अवशोषित कर सकें। इसके साथ ही जैविक खादों, कंपोस्ट और हरी खाद का उपयोग करके हम रासायनिक खादों की खपत को कम कर सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए अच्छा खाने की आवश्यकता है, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम जैविक उत्पादों का प्रयोग करें और जैविक खादों और जैसे कि गोबर की सड़ी गली कंपोस्ट खाद, साथ ही हरी खाद का उपयोग अगर हम अपने खेतों में करते हैं तो हम जैविक अनाज, जैविक फल सब्जी उत्पादित कर सकते हैं। पौधों को आवश्यक मात्रा में ही पानी दें, क्योंकि अधिक पानी से उर्वरक पानी के साथ रिसकर मिट्टी में नीचे चले जाते हैं, इसलिए हमें ज्यादा मात्रा में पानी नहीं देना है। और अगर हम संतुलित मात्रा में सिंचाई करते हैं, खेत में नमी बनाकर रखते हैं, तो इससे एक तो हमारी पानी की बचत होती है, साथ ही जो हमारे आवश्यक पोषक तत्व हैं वो पानी के साथ रिसकर मिट्टी में नहीं जाते हैं और जो हमारा भूगर्भ जल है वो भी इससे शोषित नहीं होता है। इसके अलावा हमारे किसान भाई जो घास फूस, जो खरपतवार हैं, उनको निकालकर अगर उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो खरपतवार जो पौधों की तरह हमारे पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, उससे हमारे पोषक तत्वों की मात्रा बच जाती है और सीधे फिर जो मुख्य हमारी फसल होती है खेत में वही उर्वरकों को ग्रहण करती है, वही पोषक तत्वों को प्रयोग करती है। तो इस तरीके से खरपतवार नियंत्रण करके अगर हम कम मात्रा में भी उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो हम अपनी फसल को मुख्य पोषक तत्व उपलब्ध करवा सकते हैं। तो इसलिए खेत में खरपतवारों का नियंत्रण करना भी बहुत ही आवश्यक है। तो किसान भाइयों, इसके अलावा हम जो है नीम लोपित यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही नैनो यूरिया भी एक नाइट्रोजन का विकल्प रूप में हमारे सामने आ रहा है, तो नैनो यूरिया का इस्तेमाल भी हमारे किसान भी कर सकते हैं। और नीम लोपित यूरिया ये एक ऐसा उर्वरक है जिसमें यूरिया पर नीम के तेल का लेप किया जाता है, जो नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाता है और यूरिया की खपत को कम करता है। तो हमारे किसान भाई इस तरीके से नीम लोपित यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही नैनो यूरिया का छिड़काव भी हम अपनी फसलों पर कर सकते हैं। और किसान भाइयों, मिट्टी परीक्षण करवाकर हम जो है अपने खेत में अगर संतुलित मात्रा में उर्वरक प्रयोग करते हैं तो इस तरीके से हम अपनी मिट्टी के साथ साथ हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, खेती में आने वाली लागत को हम कम कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का खेती की बातें कार्यक्रम संपन्न होता है। कल आपके लिए हम कुछ और जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सब बहन भाइयों को हमारी राम राम।
0: संतुलित उर्वरकों का प्रयोग, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे जानकारी। कार्यक्रम था खेती की बातें, ये आकाशवाणी का नजीब बात केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। श्रोताओं, आज शाम 5 बजे आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है आप सुनेंगे। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे नगर निगम कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के नगर आयुक्त पीएल शाह से चरणजीत सिंह की बातचीत। युवा श्रोता सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम युववाणी शाम 5:15 पर। इस कार्यक्रम में आज क्रम रहेगा बूझो तो जाने, कुछ खास है आज यूथ कनेक्ट कहानी के उस पार और साथ ही आप सुनेंगे बूस्टर्स और फिल्म संगीत। कृषि जगत कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रोजाना की तरह शाम 6:05 पर। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर चंद्र भानु प्रधान वैज्ञानिक से नरेश पाल सिंह की बातचीत। बातचीत का विषय रहेगा यूरिया एवं डीएपी के उपयोग को कम करने में जैविक एवं प्राकृतिक खेती के बायो इनपुट्स का महत्व।

शाम 6:45 पर विविधा में हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर नवीन चंद्र लोहानी की पूर्व प्रसारित वार्ता, जिसका विषय रहेगा खड़ी बोली का क्रमिक विकास। कानून की बात कार्यक्रम रिले किया जाएगा लखनऊ केंद्र से शाम 7:32 पर। श्रोताओं, 7:45 पर जोगिंदर कौर की गाई शब्द आपको सुनवाई जाएगी कार्यक्रम सुगम संगीत में।

बहनें सुनेंगी कार्यक्रम घर संसार, दिन में एक बजकर 15 मिनट पर। चर्चा का विषय रहेगा विश्व साइकिल दिवस और साथ ही क्रम रहेगा बात थारे मन की। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:18 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का किया गठन। एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट देगी यह समिति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने तैयार किया विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण। नई दिल्ली में आज आयोजित हो रहा है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित होगी आगरा जिले की बिरहरू ग्राम पंचायत। और वाराणसी में कल से शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक। संस्कृति विरासत संरक्षण और आपसी सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे 11 देशों के प्रतिनिधि। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष S. राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने कल कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया। यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
3: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: इस बीच भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। सीबीएसई के सचिव का भी तबादला कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण तैयार किया है। श्री योगी ने कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है।
4: मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सत्ता की बागडोर भारत के उस समय के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंपी। पिछले 12 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज परिणाम है डबल इंजन सरकार आने के उपरांत अकेले कुशीनगर में लगभग 90,000 गरीबों के लिए एक एक आवास बने हैं।
2: मुख्यमंत्री ने कल ही गोरखपुर के चिलुआ ताल में 20 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में ताल और पोखरों की उपेक्षा होती थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार ताल और पोखरों का संरक्षण करती है। अपने गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन मुख्यमंत्री

0: गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल आगरा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एक शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव होती है। उन्होंने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे अपना वोटर आईडी कार्ड अवश्य बनवाएं और चुनाव में अपना वोट डालें।
1: आगे आने वाले चुनाव भी पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट होंगे। शुद्ध मतदाता सूची ही पारदर्शी चुनावों की आधारशिला है। आइए अपना वोट जरूर बनवाइए और चुनावों में वोट जरूर करिए।
0: मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने 2 दिवसीय आगरा दौरे के दौरान कल वहां के कैलाश मंदिर में विधि विधान के अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना भी की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसमें प्रदेश के आगरा जिले के बिरहरू ग्राम पंचायत को भी नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिलेगा। बिरहरू ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान भूरी सिंह परमार आज नई दिल्ली में यह सम्मान ग्रहण करेंगे। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सरकार और ग्राम पंचायत का विशेष आभार जताया।
2: ये गांव की जनता का पूरा सहयोग रहो, सरकार का भी बहुत सहयोग रहो। पहली बार मैं प्रधान बनूं और लोगों के हिसाब से सरकार को सहयोग और सब गलियां पक्की इंटरलॉक सीसी सब कराई गई। बाकी पंचायत घर सचिवालय RRC सेंटर लैब लाइब्रेरी ऐसे बहुत से कार्य करे गए, सरकार को बहुत धन्यवाद।
0: वाराणसी में कल और 5 जून को ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक के दौरान संस्कृति, विरासत संरक्षण और आपसी सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों की काशी यात्रा को यादगार बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय सांस्कृतिक अधिकारी वाराणसी डॉक्टर राम नरेश पाल ने बताया कि प्रतिनिधियों के आगमन पर एयरपोर्ट से लेकर शहर के विभिन्न स्थलों तक लोक नृत्यों की प्रस्तुति होगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक विशेष रिपोर्ट।
3: साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने इस सप्ताह के दौरान प्रदेश में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 6 से 8 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए 1 सदस्यीय समिति का किया गठन। 1 माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट देगी यह समिति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण।

0: और शिलान्यास कहा। डबल इंजन सरकार ने तैयार किया विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण। नई दिल्ली में आज आयोजित हो रहा है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित होगी आगरा जिले की बिरहरू ग्राम पंचायत। और वाराणसी में कल से शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक। संस्कृति, विरासत संरक्षण और आपसी सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे 11 देशों के प्रतिनिधि। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान। सड़क पार करवाएं, करें बुजुर्गों की मदद। अंदर से अच्छा लगेगा भले ही लगे थोड़ा वक्त। यातायात नियमों का करें पालन, कभी ना करें उनका उल्लंघन। यातायात सुरक्षा है अति आवश्यक, यही बने आपकी रक्षक। जब भी आप चलाएं कोई वाहन, ध्यान रखें, करें नियमों का पालन।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज की साथ साथ।
4: सूरज के साथ साथ
3: शुभ प्रभात, प्रातः अभिवादन के साथ स्वागत है सभी प्यारे प्यारे और ऊर्जावान श्रोताओं का आपके पसंदीदा रेडियो शो सूरज के साथ साथ में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवा शुक्ला। उम्मीद है आप सभी की सुबह बेहद खूबसूरत, सेहतमंद और नई उमंगों से भरी होगी। श्रोताओं, पैडल मार्कर जो सुबह की शुरुआत करते हैं वो बंद कमरों की बंदिशों से कभी नहीं डरते हैं। हवाओं को चीरकर जो आगे बढ़ते हैं जनाब, वही अपनी सेहत और पर्यावरण दोनों से सच्ची मोहब्बत करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, आज 3 जून है और आज का ये दिन पूरी दुनिया में विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। साइकिल ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये हम सब का एक पूरा का पूरा एहसास है। नाम सुनते ही बचपन की गलियां याद आ जाती है ना, वो कैंची चलाना सीखना, बार बार गिरना, घुटने चिनाना और पीछे से पकड़े हुए दोस्त का चुपके से हाथ छोड़ देना। और जैसे ही बिना पकड़े साइकिल सीधे चलने लगती थी तो मानो ऐसा लगता था जैसे हमने दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीत ली है और हम आसमान में उड़ रहे हैं। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2018 में आधिकारिक तौर पर इस दिन की शुरुआत की थी। आज के इस पूरी तरह से डिजिटल, मशीनी और भागदौड़ भरे दौर में ये दो पहियों की सादगी भरी सवारी हमारे लिए और हमारी सुंदर सी धरती माता के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। मेरे प्यारे श्रोताओं, अक्सर हम सुबह उठते ही अखबारों में या टीवी विज्ञापनों में पढ़ते हैं कि इस जिम में जाओ, भारी भरकम फीस दो, वजन घटाओ और सेहत बनाओ। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि आखिर हजारों रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है, जब हमारे घर के किसी कोने में चुपचाप खड़ी हमारी पुरानी दोस्त साइकिल ही दुनिया की सबसे बेहतरीन डॉक्टर है। अगर आप रोजाना सुबह या शाम को सिर्फ 20 से 30 मिनट पैडल मारते हैं तो इसके फायदे सुनकर श्रोताओं आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहली बात, ये हमारे दिल को पूरी तरह दुरुस्त रखती है। साइकिल चलाने से हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बहुत मजबूत होता है जिससे दिल की बीमारियां हमसे कोसों दूर रहती हैं। दूसरी बात, ये शरीर की अतिरिक्त चर्बी को मक्खन की तरह पिघला देती है, हमारी मांसपेशियों को टोन करती है और हमें बिना किसी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट के एकदम फिट रखती है। और हाँ, सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक सेहत के लिए भी ये जादू की तरह काम करती है। जब आप सुबह सुबह खाली और ठंडी हवा में साइकिल दौड़ाते हैं तो दिमाग में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे डिप्रेशन, एंजाइटी और मानसिक तनाव मिनटों में गायब हो जाता है। लेकिन श्रोताओं, बात सिर्फ हमारी अपनी निजी सेहत की ही नहीं है। आज हमारी धरती, हमारा पर्यावरण भी प्रदूषण के भारी बोझ से दबे जा रहा है। सड़कों पर गाड़ियों का काला धुआं, हॉर्न का कान फाड़ता शोर और लगातार बढ़ता हुआ ग्लोबल वार्मिंग का तापमान, ये सब हमारे और हमारे बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे नाजुक दौर में साइकिल हमारा सबसे बड़ा और सबसे सच्चा हथियार बनती है। ये पूरी तरह से शून्य प्रदूषण यानी जीरो एमिशन पर काम करती है। जहां बड़ी बड़ी गाड़ियां घंटों ट्रैफिक जाम में फंसी रह जाती हैं, हमारी साइकिल चुपके से संकरे रास्तों से भी मुस्कुराते हुए निकल जाती है। ये हमारी सड़कों का बोझ कम करती है। और सबसे बड़ी बात, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के इस दौर में साइकिल सीधे आपके जेब का खर्च बचाती है। तो जरा सोचिए, सेहत भी बिल्कुल मुफ्त और पर्यावरण की सुरक्षा भी पूरी तरह मुफ्त। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, क्यों ना आज इस विश्व साइकिल दिवस के खास मौके पर हम सब मिलकर एक छोटा सा लेकिन बेहद ज़रूरी संकल्प लें। बाजार से हरी सब्जी लानी हो, या सुबह का दूध लाना हो, या पास की ही किसी दुकान पर हम जा रहे हैं और कोई छोटा मोटा काम है, तो मोटरसाइकिल या हम कार की चाबी उठाने की बजाय अपनी उस पुरानी वफादार दोस्त साइकिल को ही घर से बाहर निकालें। क्यों, आपका क्या विचार है?

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की नजीब आबाद केंद्र से इस वक्त कार्यक्रम सूरज के साथ साथ, और मैं हूं आपके साथ शिवा। श्रोता, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आज की उन घटनाओं के बारे में जो आज के दिन घटी और आज के दिन को बनाती हैं खास, यानी 3 जून को बनाती हैं खास। श्रोताओं, 3 जून को ही सन 1918 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन का एक ऐतिहासिक आयोजन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता खुद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी। इसी सम्मेलन में पहली बार देश के सामने ये विचार पुरजोर तरीके से रखा गया था कि हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि हिंदी देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है, इसलिए ये पूरे देश को एक धागे में पिरोने का काम करती है। आज ही की तारीख को सन 1972 में भारत का पहला स्वदेशी आधुनिक युद्धपोत INS नीलगिरी नौसेना में शामिल हुआ था। श्रोताओं, भारतीय नौसेना और देश की रक्षा प्रणाली के इतिहास में ये दिन बहुत ही गर्व का दिन है, क्योंकि अभी जैसे हमने बताया कि 3 जून 1972 को भारत में पूरी तरह से निर्मित पहला आधुनिक युद्धपोत INS नीलगिरी भारतीय नौसेना का हिस्सा बना था। मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में बने इस शक्तिशाली युद्धपोत को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को समर्पित किया था। इसने भारत को रक्षा उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बहुत बड़ी उड़ान दी थी। और आज ही की तारीख को सन 1915 में हमारे राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश किंग चार्ज पंचम ने गुरुदेव टैगोर को साहित्य और समाज में उनके अद्भुत योगदान के लिए नाइटहुड यानी सर की सर्वोच्च उपाधि से सम्मानित किया था। हालांकि इतिहास गवाह है कि इसके ठीक 4 साल बाद जब 1919 में जलियांवाला बाग का क्रूर हत्याकांड हुआ तो गुरुदेव ने इस ब्रिटिश सम्मान को ठुकरा दिया और उपाधि वापस लौटा दी। आज ही के दिन यानी 3 जून को भारत के महान शिक्षाविद और समाज सुधारक हरविलास शारदा जी का जन्म हुआ था। समाज में उनके योगदान को देश कभी नहीं भूल सकता। उन्हीं के अथक प्रयासों और संघर्षों की बदौलत साल 1929 में देश में बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए कड़ा कानून पास हुआ था, जिसे दुनिया आज शारदा एक्ट के नाम से जानती है। इस कानून ने भारत में लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु तय करने में बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। श्रोताओं, हरविलास शारदा जी का जन्म 3 जून सन 1867 में हुआ था। सन 1985 में 3 जून को ही भारत सरकार द्वारा कार्यालयों में 5 दिन का कार्य सप्ताह लागू किया था,

0: श्रोताओं, सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और सरकारी कार्यालयों के लिए सप्ताह में 5 दिन काम करने की प्रणाली को आधिकारिक तौर पर लागू किया था। इससे पहले सरकारी दफ्तरों में 6 दिन काम होता था। कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ाने और उन्हें अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका देने के लिए आज ही के दिन यानी 3 जून से शनिवार और रविवार की छुट्टी का ये नियम शुरू हुआ था। और श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत के लिए आज का दिन बहुत ही भावुक कर देने वाली याद से जुड़ा है। 3 जून सन 2016 को दुनिया के सबसे महान हैवीवेट मुक्केबाज बॉक्सर मोहम्मद अली ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। वे सिर्फ रिंग के अंदर ही महान खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि रिंग के बाहर भी उन्होंने रंग भेद और मानवाधिकारों के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। उनका एक मशहूर डायलॉग आज भी युवाओं को प्रेरित करता है, मक्खी की तरह उड़ो और मधुमक्खी की तरह डंक मारो। तो श्रोताओं, ये तो थी कुछ घटनाएं जो बनाती हैं आज की तिथि, आज की तारीख को खास। और आइए अब सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम सूरज के साथ साथ के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं आपको आज के समाचार पत्रों की कुछ सुर्खियां। श्रोताओं, हिंदुस्तान की खबर है, श्रेष्ठ सेवा के लिए भारतीय शांति रक्षकों का सम्मान। संघर्ष प्रभावित दक्षिण सूडान में आम नागरिकों की रक्षा और शांति निर्माण के प्रयासों में सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवाएं दे रहे 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों को उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं भी हैं। भारत ने अफ्रीकी संघ के अनुरोध पर अफ्रीका सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन को इबोला वायरस से निपटने में मदद के लिए चिकित्सा सहायता प्रदान की। श्रोताओं, दैनिक जागरण लिखता है कि राजकीय माध्यमिक शिक्षकों के तबादलों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू। राजकीय हाईस्कूल और इंटर कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों व शिक्षिकाओं के लिए वर्ष 2026-27 की स्थानांतरण व समायोजन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और साथ ही CBSE की 12वीं कक्षा के पुनर्मूल्यांकन और उत्तर पुस्तिकाओं में त्रुटियों के सत्यापन के लिए आवेदन प्रक्रिया मंगलवार तड़के 4 बजे से शुरू हो गई। श्रोताओं, ये दोनों ही खबरें जो हैं ये सभी अखबारों में मुख्य तौर पर सुर्खियों में हैं। और श्रोताओं, दैनिक जागरण की ही खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल शादीशुदा होने के आधार पर बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति या आश्रित कोटे के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। और अमर उजाला की खबर है, संयुक्त राष्ट्र ने दी चेतावनी, तेज गर्मी से रहें सतर्क। संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी ने मध्यम या तीव्र अल नीनो का पूर्व अनुमान लगाया है। उसने चेताया कि इससे न सिर्फ वैश्विक तापमान बढ़ने का खतरा है बल्कि आगामी महीनों में मौसम की चरम घटनाओं का जोखिम भी बढ़ सकता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार गर्म समुद्री जल अल नीनो के विकास को बढ़ावा दे रहा है और जून से अगस्त तक दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान रहने का अनुमान है। तो श्रोताओं, ये तो थी आज के समाचार पत्रों की कुछ सुर्खियां। आइए अब सुन लेते हैं कुछ जरूरी संदेश।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बात की थी विश्व साइकिल दिवस के बारे में, लेकिन श्रोताओं, आज की ये तारीख यानी 3 जून सिर्फ साइकिल चलाने या सेहत बनाने के संकल्प तक ही सीमित नहीं है। इतिहास के पन्नों में आज ये तारीख एक और बहुत बड़े ऐतिहासिक और भावुक फैसले के लिए दर्ज है। एक ऐसा फैसला जिसने हमारे देश की पूरी तस्वीर, हमारा भूगोल और हमारा भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया था। आइए सूरज के साथ साथ कार्यक्रम में इस सुनहरी धूप में समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं साल 1947 के उस ऐतिहासिक दौर में। जी हाँ श्रोताओं, आज से ठीक कई दशक पहले यानी 3 जून 1947 को भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड लुइस माउंटबेटन ने देश के विभाजन और हमारी आजादी की अंतिम रूपरेखा दुनिया के सामने रखी थी, जिसे इतिहास में 3 जून योजना या माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। साल 1947 की उस तपती गर्मियों में देश का राजनीतिक पारा बहुत गर्म था, हर तरफ अशांति का माहौल था और अंग्रेज जल्द से जल्द सत्ता सौंपकर यहां से निकलना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार ने पहले भारत को आजाद करने के लिए जून 1948 की तारीख तय की थी, लेकिन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने देखा कि देश के हालात तेजी से बदल रही हैं, इसलिए उन्होंने और इंतजार न करने का एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया। और जानते हैं क्या हुआ, इसी 3 जून की शाम को ऑल इंडिया रेडियो पर एक ऐसा ऐतिहासिक प्रसारण हुआ जिसने पूरे देश की धड़कनें बढ़ा दी। लॉर्ड माउंटबेटन के साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार बलदेव सिंह ने पूरे देश को संबोधित किया था। इस 3 जून योजना के तहत कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिन्होंने इतिहास बदल दिया। ब्रिटिश सरकार ने तय किया कि ब्रिटिश भारत को 2 डोमिनियन यानी भारत और पाकिस्तान नामक 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। देश की करीब 565 देसी रियासतों को ये आजादी दी गई कि वे अपनी भौगोलिक स्थिति और मर्जी के अनुसार भारत या पाकिस्तान में से किसी एक को चुन लें। और सबसे चौंकाने वाला फैसला ये था कि आजादी की जो तारीख पहले जून 1948 तय की गई थी, उसे करीब 1 साल पहले लाकर 15 अगस्त 1947 कर दिया गया। श्रोताओं, इस 3 जून के फैसले ने जहां एक तरफ सदियों पुरानी गुलामी की काली रात को खत्म कर हमारी आजादी के नए सूरज का रास्ता साफ किया,

वहीं जाते जाते विभाजन का एक ऐसा गहरा और दर्दनाक जख्म भी दे गया जिसकी टीस इतिहास कभी नहीं भूल सकता। रातों रात सरहदें खिंच गईं और करोड़ों लोगों को अपना सब कुछ छोड़कर विस्थापित होना पड़ा। लेकिन सलाम है हमारे महान पुरखों को, हमारे महान नेताओं और विशेषकर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की अटूट सूझबूझ को, जिन्होंने बिखरते हुए टुकड़ों को समेटकर इस अखंड और खूबसूरत भारत का निर्माण किया। उसी अखंड भारत के खुले आसमान के नीचे आज हम और आप इस शांत सुबह में खुलकर मुस्कुरा रहे हैं। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, आज 3 जून को साइकिल चलाकर अपनी सेहत भी दुरुस्त रखिए और हमारे पुरखों की कुर्बानियों को याद करके देश के प्रति अपने फर्ज को भी याद रखिए। चलिए आज की इस महकती हुई सुबह में देशभक्ति का एक खूबसूरत रंग घोलते हैं और सुनते हैं ये शानदार और सुरीला गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से।

0: अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्यघर.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिव कुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। विदेश मंत्री। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
1: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। नवन्न में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काशफिन नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1 करोड़ 25 लाख घरों में से

0: 98 लाख से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
1: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
0: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43 करोड़ 52 लाख स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50 से 80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
2: एक साल से दवाई ले रहा हूं, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई।
0: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्रीय शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ.S. जयशंकर ने डॉ. खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ. जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ. रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की

0: वारिता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, सीबीएसई चेयरमैन और सचिव हटाए गए, ओएसएम टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, सीबीएसई ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल, अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। वेनेजुएलाज एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज टू बी ऑन अ 5-डे विजिट टू इंडिया बिगिनिंग टुडे। सीनियर कांग्रेस लीडर डीके शिवकुमार टू बी स्वॉर्न इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका दिस आफ्टरनून। West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari to launch Annapurna Yojana to provide 3,000 rupees every month to eligible women in the state today. Bangladesh Foreign Minister Khalilur Rahman elected president of 81st session of UN General Assembly. External Affairs Minister Dr. S.

0: अवार्ड सदर जमहूरिया की जानिब से ऐसे बच्चों को अता किया जाता है जिन्होंने बहादुरी, समाजी खिदमत, माहौलियात, खेलकूद, आर्ट और कल्चर और साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ मैदानों में गैर मामूली खिदमत अंजाम दी हों। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ तूफानी झक्कड़ की सूरत हाल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने केरला और माहे में अगले 2 से 3 दिनों के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कल तक अंडमान और निकोबार जजायर, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश और शिमाल मशरकी खित्ते में गरज चमक और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। खवातीन क्रिकेट में कल रात टोरंटो में खेले गए तीसरे और आखिरी T20 बैन अल-अक़वामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने 6 विकेट से जीत हासिल करके भारत के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। हेथर नाइट और एलिस कैप्सी की शानदार शराकतदारी की बदौलत इंग्लैंड ने आसानी से 180 रन का निशाना हासिल कर लिया। एलिस कैप्सी को इस मैच और सीरीज की बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय खवातीन ने 5 विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाए थे। इसके जवाब में इंग्लैंड ने 18.3 ओवर्स में 4 विकेट पर 184 रन बनाए। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार इनकलाब ने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की हलफबरदारी से मुतल्लिक खबर को शह सुर्खी बनाया है। अखबार की सुर्खी है, 5 नए जजों को हलफ दिलाया गया, सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 37 हुई। अखबार प्रताप की शह सुर्खी है, मोदी सरकार ने CBSE चेयरमैन व सेक्रेटरी को ओहदे से हटाया, पेपर लीक मामले में कोताहियों की जांच कराएगी हुकूमत। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, दिल्ली में BJP सदर से नेपाल के वफद की मुलाकात। अखबारात की एक और अहम सुर्खी है, भारत और जनूबी अफ्रीका ने 2 तरफा रिश्तों को और मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। अखबार प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को सफ़े अव्वल पर जगह दी है कि मजबूत, खुशहाल और खुदकफील भारत की तामीर में ताउन दे कबायली नौजवान।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिग्स आज से भारत के 5 रोजा दौरे पर रहेंगी। सीनियर कांग्रेस रहनुमा DK शिवकुमार को आज से पहर कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी रियासत में अहल खवातीन को 3,000 रुपये माहाना फराहम करने की अन्नपूर्णा योजना का आगाज करेंगे। बांग्लादेश के वजीर खारजा खलीलुर रहमान को अकवामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें सेशन का सदर मुंतखब किया गया है। वजीर खारजा SJ शंकर ने उन्हें मुबारकबाद दी। जर्मनी ने भारतीय बाशिंदों के लिए उसके हवाई अड्डे से गुजर कर जाने वाले मुसाफिरों के लिए ट्रांजिट वीजा की जरूरत आज से खत्म कर दी है। और खवातीन क्रिकेट में तीसरे और आखिरी T20 बैन अल-अक़वामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 6 विकेट से हरा कर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके पसंदीदा कार्यक्रम गोल्डन हिट्स में। तो श्रोताओं, बिना देर किए आज के इस सुरीले सफर की शुरुआत करते हैं। फिल्म सूरज और चंदा के एक बेहद सकारात्मक और जीवन के फलसफे को बयां करते इस खूबसूरत गीत से। आनंद बख्शी साहब के लिखे बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और इसे सजाया है लता मंगेशकर और मुकेश जी की अमर आवाजों ने।

होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। सचमुच जो होना है उसे मुस्कुराकर स्वीकार करना ही जिंदगी है। सुबह सुबह लता जी और मुकेश जी की जुगलबंदी मन को एक अजीब सा सुकून दे जाती है। चलिए इस सुकून को थोड़ा और बढ़ाते हैं और रुक करते हैं साल 1972 की बेहतरीन फिल्म परिचय की ओर। जब हम सुबह के सफर पर निकलते हैं तो गिटार की ये धुन सीधे दिल में उतर जाती है। जितेंद्र साहब की सादगी, गुलजार साहब के लिखे बोल और किशोर कुमार की जादुई आवाज। आरडी बर्मन के संगीत में सुनिए ये गीत।

मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना है। सुबह सुबह ये गाना रगों में एक नई ऊर्जा और ताजगी भर देता है।

0: प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और सुरों के सफर में हमारी अगली पसंद भी बेहद लाजवाब है श्रोताओं। साल 1970 की ब्लॉकबस्टर फिल्म सफर का ये गाना आज भी हर महफिल की जान है। जब राजेश खन्ना साहब पर्दे पर हों और मुकेश जी की रूहानी आवाज हो तो समा बन जाता है। कल्याण जी, आनंद जी का संगीत और इंदिवर के बोल, आइए सुनते हैं प्यार और मान सम्मान से भरा ये खूबसूरत गीत फिल्म सफर से।

क्या बात है, मोहब्बत का इससे खूबसूरत इजहार और भला क्या हो सकता है। गोल्डन हिट्स के इस सफर को श्रोताओं थोड़ा और रोमानी बनाते हुए अब आपको ले चलती हूँ साल 1964 की एक बेहद खूबसूरत फिल्म की ओर। फिल्म है पूजा के फूल, जिसमें धर्मेंद्र और माला सिन्हा की खूबसूरत केमिस्ट्री थी, मदन मोहन साहब का लाजवाब संगीत और मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की अमर आवाज़। दिल को छू लेने वाला ये मीठा गीत सुनिए। श्रोताओं, आवाजें हैं लता आशा भोसले और मोहम्मद रफी की, और बोल हैं राजेंद्र कृष्ण के।

0: हर पल चंदन का एहसास।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। श्रोताओं, गुजरे जमाने के गानों की यही तो खूबसूरती है, हर लफ्ज सीधे दिल में उतर जाता है, समय पंख लगा कर उड़ता है। और हमारा ये जो कार्यक्रम है गोल्डन हिट्स, ये भी अब अपनी आखिरी मंजिल पर आ गया है। तो जाते जाते सुबह की ठंडी हवाओं के नाम एक ऐसा गाना जो आपके पैरों को थिरकने पर मजबूर कर दे और पूरे दिन के लिए आपको पॉजिटिव एनर्जी से भर दे। साल 1969 की फिल्म प्रिंस का ये गीत सुनिए, शंकर जयकिशन का संगीत है और हसरत जयपुरी के बोल और स्वर है लता मंगेशकर का। तो झूमते हुए सुनिए ये गीत।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:15 होने को हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए लखनऊ और गाजियाबाद जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं लखनऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मुमताज अली का।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मई 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया, जिनमें से लखनऊ भी एक था। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा,
3: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूँ मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में केंद्रीय सामाजिक न्याय, अधिकारिता, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने 300 से अधिक उम्मीदवारों को सरकारी सेवा की सौगात दी, जिनमें से 198 उम्मीदवार भारतीय रेलवे का हिस्सा बने। श्री वर्मा ने कहा कि रोजगार मेला आरंभ किए जाने के बाद देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 12 लाख

0: पत्र वितरित किए जा चुके हैं। इस प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता के साथ नौकरियां दी गई हैं। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 6 मई को 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर प्रदेश की राजधानी पहुंचे। 6 मई की रात को उन्होंने लखनऊ के निजी होटल में फल निर्यातकों के साथ निर्यात को बढ़ाने पर चर्चा की। अगले दिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत आने वाले केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा में उन्होंने फ्रूट होराइजन 2026 कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। श्री चौहान ने साफ कहा कि अब केवल ज्यादा उत्पादन से बात नहीं बनेगी, बल्कि भारत को वैश्विक फल बाजार में मजबूत पहचान लाने के लिए गुणवत्ता, शेल्फ लाइफ, प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक और निर्यात मानकों पर गंभीरता से काम करना होगा। उन्होंने जोर दिया कि खेती को खेत तक सीमित नहीं रखा जा सकता, अब उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, बाजार और निर्यात तक पूरी वैल्यू चेन को मजबूत करना समय की मांग है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए किसानों का विकास आवश्यक है। श्री चौहान ने कहा कि निर्यात बढ़ाने के लिए बागवानी क्षेत्र के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उन्होंने कहा कि इस दिशा में समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ काम करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के साथ भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 मई 2026 को लखनऊ वासियों को विकास की सौगात दी। उन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में 413 करोड़ की 342 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छ सुंदर समर्थ लखनऊ पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान लघु फिल्म भी दिखाई गई। मुख्यमंत्री ने सभी 17 नगर निगमों के महापौर, 200 नगर पालिका परिषद, 545 नगर पंचायतों के चेयरमैन और लगभग 14,000 पार्षदों को 3 वर्ष का कार्यकाल संपन्न होने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जनता का पैसा जनहित में ही खर्च होगा। उन्होंने कहा लखनऊ को स्वच्छता रैंकिंग में 3रा स्थान मिला है, अब इसे पहले स्थान पर लाना है। श्री योगी ने कहा
1: 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है और नगर निगम लखनऊ ने कहा कि पूरा नगर निगम ही हमारा परिवार है, इसलिए बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचाना है।
0: जनगणना 2027 के तहत स्वगणना का काम लखनऊ में 7 मई 2026 से शुरू हुआ और 21 मई 2026 तक चला। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित विभिन्न मंत्रियों और अधिकारियों ने स्वगणना में भाग लिया। अब जनगणना के प्रथम चरण के तहत प्रगणक घर घर जाकर मकान की गणना कर रहे हैं। 22 मई को शुरू हुआ यह कार्य 20 जून 2026 तक चलेगा। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी और निदेशक शीतल वर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि मकान की गणना के पहले दिन 1 करोड़ से अधिक मकान को सूचीबद्ध किया गया है। लखनऊ में जेठ के बड़े मंगलों की धूम मची हुई है। लखनऊ के अलीगंज स्थित पुराने हनुमान मंदिर से शुरू हुई यह परंपरा अब प्रदेश के कई जिलों तक पहुंच चुकी है। लखनऊ में प्रत्येक बड़े मंगल पर हनुमान जी के विभिन्न मंदिरों में दर्शन पूजन के साथ भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। अब तक हजारों भंडारे आयोजित हो चुके हैं। इस बार अधिमास लगने के कारण 8 बड़े मंगल पड़ रहे हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 28 मई को ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। 30 मई तक चले बकरीद पर्व पर लोगों ने कुर्बानी की परंपरा का निर्वहन किया। लखनऊ स्थित इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने बकरीद के लिए 12 बिंदुओं की एडवाइजरी जारी की थी। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2026 के संस्करण में 7 मुकाबले लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में खेले गए, जिनका लुत्फ शहरवासियों के साथ साथ अन्य राज्यों और शहरों से आए लोगों ने भी उठाया। अब कान्हा स्टेडियम में 17 जून 2026 को भारत और अफगानिस्तान के बीच की 1 दिवसीय मैच खेला जाएगा।
2: लखनऊ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजियाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज शर्मा का।
3: भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के साथ साथ समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के भी सपने पूरे हो रहे हैं। सरकार का संकल्प है कि हर वर्ग को सरकार द्वारा चलाए जा रही योजनाओं का लाभ मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऐसे गरीबों को रहने के लिए अपना छत मिली है जो किराए पर रहते थे। गाजियाबाद के रहने वाले पवन कौशिक ने बताया कि पहले वो किराए के मकान में रहते थे और हर एक 2-4 साल में उनको मकान बदलना पड़ता था, जिससे उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। गाजियाबाद की बापूधाम योजना में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपना मकान लेने का सपना देखा, जो कि पूरा भी हुआ। लाभार्थी पवन कौशिक ने बताया,
4: मुझे पता चला कि प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू जो है वो GDA में फ्लैट आवंटन के लिए योजना निकाली गई है, तो मैंने उसमें 2020 में आवेदन किया था। अभी मुझे 1-1.5 महीने पहले मेरी रजिस्ट्री हुई है, साथ के साथ कब्जा भी हो गया। सरकार ने बहुत अच्छा किया।
3: वहीं गाजियाबाद के अभिषेक कुमार कहते हैं कि एक मकान हर इंसान का सपना होता है। भारत सरकार ने मकान देकर निम्न वर्ग के सपने को पूरा किया। उन्होंने सरकार की भागीदारी से कम कीमत में उपलब्ध हुए मकान के लिए सरकार का आभार भी जताया। वहीं GDA उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न आवासीय योजनाओं के बारे में बताया। सरकार समाज के आखिर

0: पायदान पर खड़े व्यक्ति को हर वो सुविधा देना चाहती है जिससे वह अपने आप को सक्षम महसूस कर सके। मकान हर किसी का एक बहुत बड़ा सपना होता है। उस मकान को सरकार गरीबों के लिए भी आसानी से उपलब्ध करा रही है। उन्होंने जनपद गाजियाबाद में चल रही अन्य आवासीय योजनाओं के बारे में बताया और EWS के तहत भविष्य में आने वाली योजनाओं का जिक्र भी किया। उन्होंने बताया,
1: सरकार की भी नीति है कि गरीब लोग अधिकतम से अधिकतम इसमें लाभान्वित हो। जो हमारे प्राधिकरण की खुद की योजना है उसमें भी हम छोटे साइज के 40 स्क्वायर मीटर के, 60 स्क्वायर मीटर के, 90 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स जो कि निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए सुलभ होते हैं उसको हम लॉटरी के माध्यम से अधिक जनता को उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं।
0: गाजियाबाद के सिकंदरपुर में बने हिंडन एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। हवाई अड्डे का विस्तार 14 एकड़ जमीन पर किया जाएगा। इसमें से 6.8 एकड़ जमीन की खरीद को लेकर किसानों ने सहमति बनाने का जिला प्रशासन द्वारा प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। शेष 7.2 एकड़ जमीन की खरीद के लिए सिकंदरपुर गांव के किसानों से अब जिला प्रशासन द्वारा वार्ता शुरू कर दी गई है। ऐसे में हिंडन हवाई अड्डे की उड़ान बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ जैसे सीमित शहरों तक नहीं बल्कि देश के कोने कोने तक होगी। इससे गाजियाबाद के विकास को पंख लगेंगे और आसपास के जिलों के लोगों के लिए भी एयर कनेक्टिविटी की सुविधा बेहतर होगी। शासन के निर्देश पर जनपद की 67,000 ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जागरूक करने के लिए उनको सिलाई कढ़ाई से लेकर मोबाइल रिपेयरिंग, खेती करने, बैंकिंग कार्य करने सहित अन्य कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिलाया जाता है। प्रशिक्षण देने के बाद सरकार की ओर से महिला स्वयं सहायता समूह को कारोबार शुरू करने के लिए आर्थिक रूप से सहायता भी दी जाती है। कम ब्याज पर बैंक से लोन दिलाया जाता है। वर्तमान में 2400 महिला स्वयं सहायता समूह हैं। वित्तीय वर्ष 26-27 में सरकार ने जिले में 6,700 नए महिला स्वयं सहायता समूह बनाने के निर्देश दिए हैं। एक महिला स्वयं सहायता समूह में न्यूनतम 10 महिलाएं शामिल होती हैं। ऐसे 67,000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 6,700 महिला स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाएगा। सरकार की एक जिला एक उत्पाद और एक जिला एक खेल की सफलता के बाद अब ODOC एक जनपद एक व्यंजन योजना शुरू की गई है। इसमें स्थानीय खान पान और स्वाद को ध्यान में रखते हुए इसे प्रदेश द्वारा और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना आवश्यक है। इसी क्रम में गाजियाबाद को सोया चाप के बाद हरी मिर्च के अचार को भी इस योजना के लिए चिन्हित किया गया है। जनपद में सोया चाप के कारोबार से 10,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। वहीं हरी मिर्च से तैयार अचार को भी एक जनपद एक व्यंजन योजना में शामिल किया गया है। इस अचार के निर्माण और व्यापार से 2500 से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं शशिकला राजपूत के गाए पूर्व प्रसारित रुहेलखंडी लोकगीत।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है, इसके अंतर्गत आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं रुहेलखंडी लोकगीत, शशिकला राजपूत की सुर में।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: धरती गाती है लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस वक्त शशिकला राजपूत के गाए रुहेलखंडी लोकगीत।

धरती गाती है लोक संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शशिकला राजपूत के गाए रुहेलखंडी लोकगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है पूर्व प्रसारित कार्यक्रम बात आसपास की। वाचन स्वर एवं संकलन विपिन राजपूत का है।

0: नमस्कार श्रोताओं, बात आसपास के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में मैं विपिन राजपूत आपके साथ हूं। इन दिनों गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और कई क्षेत्रों में हीट वेव यानी लू का असर देखने को मिल रहा है। तेज धूप, गर्म हवाएं और बढ़ता तापमान लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है। खासकर बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और बाहर काम करने वाले लोगों को अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। हीट वेव के दौरान शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे चक्कर आना, सिर दर्द, कमजोरी, उल्टी, तेज बुखार और बेहोशी जैसी समस्याएं हो सकती है। इसलिए जरूरी है हम समय रहते सावधान रहे। दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच धूप में बाहर निकलने से बचे। यदि किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़े तो सिर को कपड़े, टोपी या छाते से ढककर निकले। हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहने और बार बार पानी पीते रहें। गर्मी के मौसम में अधिक तली भुनी चीजों से बचें और मौसमी फल, दही, छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, ORS जैसे पेय पदार्थों का सेवन करें। यदि किसी व्यक्ति को तेज बुखार, घबराहट, सांस लेने में परेशानी या बेहोशी जैसी समस्याएं हो तो उसे छांव या ठंडी जगह पर ले जाएं। शरीर को ठंडा करें और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर से संपर्क करें।
1: आपका नाम?
2: पंकज कुमार सैन मेरा नाम है।
1: इस तेज गर्मी और लू में काम करना कितना मुश्किल होता है?
2: बड़ा मुश्किल होता है इस तेज गर्मी और लू में काम करना। कभी कभी तो लू इतनी तेजी से थपेड़ा देती है, इतने तेजी से हरकत में आते हैं कि वो अक्सर जो है कभी कभी चक्कर भी कभी कभी बहुत तेजी से आने लगते हैं।
1: आप खुद को लू से बचाने के लिए क्या उपाय करते हैं?
2: लू से बचाने के लिए तो कोशिश करता हूँ कि जितना पानी पिया जाए उतना अच्छा है। कई बार तो ऐसा होता है कि नींबू थोड़ा सा जो है चीनी का घोल मिला के पीने से भी काफी अच्छा लगता है, शरीर को काफी ठंडक मिलती है।
1: काम के दौरान आपको सबसे ज्यादा परेशानी क्या होती है?
2: काम के दौरान बहुत ज्यादा जब लू होती है और गर्मी से शरीर थक जाता है तो कभी कभी सामान बेचते बेचते इतना कठिन हो जाता है किसी कस्टमर को सामान देना कि हाथ से पसीने तक आने लगते हैं। चूंकि हवाएं तेज चलती हैं, लू तेज चलती हैं, तो ग्राहक भी थोड़ा कम आते हैं, इससे आवाजाही भी कम रहती है।
1: गर्मी में काम करते हुए आप अपनी सेहत का कैसे ध्यान रखते हैं?
2: चालों की अपेक्षा कर गर्मी में ज्यादा अपने आप पे ध्यान देना पड़ता है। वैसे तो मेरी दिनचर्या में शामिल है कि मैं सुबह 7 बजे करीब अपनी दुकान पर आ जाता हूँ। दोपहर में जब भीषण गर्मी पड़ती है, भीषण लू चलती है, तो करीब लगभग दोपहर में 12:30 बजे 1 बजे मैं घर आराम करने के लिए चला जाता हूँ। वही शाम को 5 बजे जो है सुचारू रूप से अपनी दुकान पर वापस आ जाता हूँ। गर्मी से बचने के लिए अक्सर मुझे ये सब चीजें अपने जीवन में करनी पड़ती हैं।
0: चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद अजहर से बातचीत।
1: हीट वेव या लू क्या होती है और इसके मुख्य लक्षण क्या है?
3: जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इतना बढ़ा हुआ तापमान लगातार 24 से 48 घंटे तक रहता है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर भी लोगों का बढ़ने लगता है, उसी को हम हीट वेव कहते हैं या लू लगना आम भाषा में कहते हैं।
1: हीट वेव लू से बचाव के लिए आम जनता को क्या सावधानियां रखनी चाहिए?
3: हीट वेव से बचाने के लिए जो है जहां पर रह रहे हैं अपने स्थान को जो है ठंडे स्थान पर रहें, कोशिश ये करें अगर बाहर निकलने की जरूरत भी पड़ती है तो बहुत ज्यादा पानी पीकर घर से बाहर निकले। पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें या ताजे फल फ्रूट जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जैसे मौसम के हिसाब से आते हैं, तरबूज है, खरबूजा है, खीरा, ककड़ी और लस्सी, छाछ और आम का पन्ना, इस तरह की चीजें जो है अगर इस्तेमाल करके घर से निकलेंगे तो लू से बचाव का बहुत अच्छा उपाय।
1: अगर किसी को लू लग जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए?
3: अगर किसी व्यक्ति को लू लग जाए तो उसमें लक्षण के हिसाब से देखते हैं हम कि अगर उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो हम उसे कोल्ड स्पंजिंग करेंगे, यानी तौलिया वाला कपड़ा लेकर और सादे पानी से या ठंडे पानी से कपड़ा भिगोकर उसके जिस्म को, पूरे जिस्म को स्पंजिंग करेंगे और टेम्परेचर उसे कम करने की कोशिश करेंगे। दूसरे लक्षणों में जैसे उल्टी लगना, जी मचलाना या बेहोशी तारी हो जाना, इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में मरीज को फौरन अस्पताल लेके जाना होगा और इस कंडीशन मरीज अगर है, होश में है, तो उसे घर पर ही ORS का घोल पिलाएंगे और पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। उसे ठंडे स्थान पर रखेंगे, सीधा लिटाकर रखेंगे, आसपास ज्यादा भीड़ नहीं लगाएंगे, यही उपाय हमें करना है।
1: PSC स्तर पर हीट वेव से निपटने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं?
3: पीएससी स्तर पर हमारे यहाँ 2 बेड का इंतजाम है। अगर कोई सीरियस मरीज इस तरह का आ जाता है तो यहाँ हम उसे फ्लूइड्स लगाते हैं। पहले अगर देखते हैं इस कंडीशन में है मरीज के मुंह से ले सकता है ओरली, तो ओआरएस का यहाँ घोल देते हैं, कोल्ड स्पंजिंग वगैरह कराते हैं, टेम्परेचर उसका नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद भी अगर देखते हैं टेम्परेचर कम नहीं हो रहा या उल्टियाँ ज़्यादा हो रही हैं, दस्त भी कभी कभी इसमें आने लगते हैं, तो हमें यहाँ फ्लूड देना पड़ता है, ड्रिप लगानी पड़ती है। उसके लिए हमारे पास यहाँ पीएससी पे 2 बेड का इंतज़ाम है और हमने एक जिंक एंड ओआरएस कॉर्नर भी बना रखा है, इसीलिए कि डायरिया के या लू के मरीज आते हैं तो उसके लिए हम ओआरएस देते हैं।
1: क्या गांव स्तर पर भी कोई जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है?
3: गाँव स्तर पर आशाओं के लेवल से हमने ओआरएस के पैकेट बंटवा दिए हैं और आशाओं को ट्रेंड भी कर दिया है कि इस तरह के मरीजों को किस तरह से हमें डील करना है। अगर ज़्यादा सीरियस कंडीशन है तो आशाओं को भी ये हिदायत दी गई है कि उन्हें पीएससी पर लेकर आना है, ऐसे मरीजों को पीएससी पर लेकर आना है।
1: हीट वेव के दौरान खान पीन में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए?
3: खान पीन में ज़्यादा पानी का इस्तेमाल एक तो ज़्यादा करें, दूसरे ठंडे स्थानों पर रखें और पानी वाले फ्रूट्स ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, लस्सी, छाछ, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें। और हीट वेव से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय आम का पन्ना जो है वो इसमें बहुत अच्छा काम करता है, उसको बनाकर मरीजों को इस्तेमाल करें।
1: अंत में आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: आम जनता के लिए बस यही संदेश है कि सतर्क रहें, हीट वेव के लक्षणों को जानें, लक्षण देखते ही उसी के हिसाब से अपना इलाज करें, या ज्यादा खतरनाक लक्षण है तो फौरन पीएससी पर पहुंचें।
0: वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर पी आर नायर बिजनौर से बातचीत।
4: सर, हीट वेव को स्वास्थ्य की दृष्टि से कितना गंभीर माना जाता है?
5: हीट वेव यानी अत्यधिक गर्मी स्वास्थ्य के लिए बेहद गंभीर स्थिति मानी जाती है। लगातार अधिक तापमान रहने से शरीर का तापमान नियंत्रण तंत्र प्रभावित हो जाता है, जिससे डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर स्थितियां पैदा हो सकती हैं।
4: इस वर्ष जिले में हीट वेव की क्या स्थिति बन रही है और स्वास्थ्य विभाग के वहाँ कितना तैयार है?
5: इस वर्ष तापमान में लगातार वृद्धि देखी जा रही है और मौसम विभाग के द्वारा भी हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरी गंभीरता के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।
4: जिले के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में क्या विशेष तैयारियां की गई हैं?
5: सभी अस्पतालों और समाधि स्वास्थ्य केंद्रों में हीट वेव से प्रभावित मरीजों के लिए विशेष बेड आरक्षित किए गए हैं। पर्याप्त मात्रा में ओआरएस, आवश्यक दवाइयां, आईवी फ्लूइड्स और बर्फ की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। चिकित्सा कर्मियों को हीट स्ट्रोक के मरीजों के त्वरित उपचार के लिए प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही इमरजेंसी सेवाओं को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है।
4: ग्रामीण क्षेत्रों में जहां संसाधन सीमित होते हैं वहां क्या विशेष नीति अपनाई जा रही है?
5: ग्रामीण क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम और स्वास्थ्य टीमों की माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। गांव में घर घर जाकर लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने, पर्याप्त पानी पीने और लू से बचाव के उपचार बताए जा रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जरूरी दवाइयां और ओआरएस की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जरूरत पड़ने पर गंभीर मरीजों को उस स्वास्थ्य केंद्र पर रेफर करने की व्यवस्था भी बनाई गई है।
4: लू लगने के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं जिन्हें आम लोग पहचान सकते?
5: लू लगने के शुरुआती लक्षणों में तेज बुखार, अत्यधिक पसीना या पसीना न आना, चक्कर आना, कमजोरी, सिरदर्द, उल्टी, बेचैनी, शरीर में ऐठन और बेहोशी जैसी स्थिति शामिल है। यदि किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण दिखाई दें, तुरंत सावधानी बरतनी चाहिए और चिकित्सीय सहायता लेनी चाहिए।
4: इन लोगों को विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है।
5: बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, मजदूरों, खेतों में काम करने वाले लोगों, हृदय, मधुमेह और उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।
4: क्या स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई हेल्पलाइन नंबर या विशेष सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है?
5: स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी सरकारी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आम जनता को जरूरत पड़ने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी गई है। साथ ही आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं और एम्बुलेंस 108 को भी सक्रिय रखा गया है ताकि जरूरतमंद मरीजों को तुरंत सहायता मिल सके।
0: हीट वेव से बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। थोड़ी सी जागरूकता और सावधानी हमें सुरक्षित रख सकती है। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। तो यह था हमारा आज का कार्यक्रम बात आसपास की, जिसमें हम बात कर रहे थे हीट वेव लू से बचाव के संबंध में। इसी के साथ बात आसपास की कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। कल नए अंक के साथ आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आप विपिन राजपूत को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
6: अभी आप सुन रहे थे पूर्व प्रसारित कार्यक्रम बात आसपास की। वाचन स्वर एवं संकलन था विपिन राजपूत का। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रस्तुत है भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम सुहाना सफर।

0: स्वागत है सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सुहाना सफर में। और आज के इस सफर में मैं हूँ आपकी रेडियो की हम सफर सुनीता रावत, और मेरे साथ हैं
1: शिवा शुक्ला
0: जी। शिवा, आज हम अपने श्रोताओं को लेकर चल रहे हैं यादों के एक ऐसे गलियारे में जो कल की ही बात लगती है ना। तो आइए साथ मिलकर पलटते हैं साल 2023 की डायरी की वो पन्ने जिन्होंने हमारी जिंदगी को ढेर सारे रंगों, आंसुओं, मुस्कुराहटों और जादुई धुनों से भर दिया था।
1: याद कीजिए साल 2023 की वो शुरुआत। कोरोना के उस लंबे और उदास सन्नाटे के बाद ये वो साल था जब हमारे सिनेमा घरों के बंद तालों में फिर से चाबी घूमी थी। थिएटर्स एक बार फिर हाउसफुल के रंग बिरंगे बोर्ड से सज गए थे। टिकट खिड़की पर वो लंबी लाइनें, सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न की वो जानी पहचानी खुशबू और अंधेरे कमरे में अजनबियों के साथ मिलकर बजाई गई वो तालियां। बॉलीवुड ने एक बार फिर अंगड़ाई ली और हमें अपनी जादुई दुनिया में वापस बुला लिया।
0: बिल्कुल शिवा, और ये साल सिर्फ फिल्मों का ही नहीं बल्कि भावनाओं के एक ऐसे बड़े सैलाब का था जब पूरे 4 साल के लंबे इंतजार के बाद बड़े पर्दे पर शाहरुख खान ने दस्तक दी तो सिनेमा घर मानो स्टेडियम बन गया। पठान और जवान को देखकर फैंस की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। किंग खान ने हमें सिखाया कि कमबैक हो तो ऐसा हो जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने रिकॉर्ड्स को कागज की तरह फाड़ कर रख दिया।
1: बिल्कुल सुनीता जी, वक्त का पहिया थोड़ा और घूमा और पर्दे पर लौटा हमारा पुराना भोला भाला बचपन। जब सनी देओल ने गदर 2 में फिर से तारा सिंह बनकर कदम रखा तो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में सीटियों का ऐसा तूफान आया कि दीवारें हिल गईं। उड़ जा काले कावा और मैं निकला गड्डी लेके जैसे गानों को जब नए अंदाज में बजाया गया तो 90 के दशक का वो सीधा साधा प्यार हमारी आंखों के सामने तैरने लगा।
0: बिल्कुल शिवा, लेकिन 2023 जो है वो सिर्फ बड़े सितारों की चकाचौंध का साल नहीं था। इसी साल आई एक छोटी सी बेहद सादगी से भरी फिल्म 12th फेल। विक्रांत मैसी की उस मासूम अदाकारी और सच्ची कहानी ने हर उस इंसान की आंखों को नम कर दिया जो अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहा था। इस फिल्म के रिस्टार्ट वाले मंत्र ने देश की लाखों युवाओं को टूटकर फिर से खड़े होने का एक नया हौसला दिया।
1: और संगीत, साल 2023 का संगीत तो सीधे रूह में उतर गया था। जब रातों के अकेलेपन में हमारा दिल थोड़ा घबराया या उदास हुआ तो अरिजीत सिंह की मखमली आवाज में अपना बना ले गाने ने एक मरहम का काम किया। प्रीतम के संगीत और इन जादुई आवाजों ने हमें सिखाया कि दुनिया चाहे कितनी भी डिजिटल हो जाए लेकिन दिल आज भी पुरानी और सच्ची धुनों के लिए ही धड़कता है।
0: बिल्कुल शिवा, और मोहब्बत का रंग भी इस साल बेहद सुरीला रहा। चलिए कि बीट्स और तुम क्या मिले के खूबसूरत बोल हमारी अपनी धड़कन बन गए। कश्मीर की वादियों में फिल्माए गए उन गानों ने हमें एक बार फिर से यश चोपड़ा साहब के उस दौर की याद दिला दी जहां प्यार हवाओं में तैरता था और हर दिल है वो गुनगुनाता था।
1: बिल्कुल सुनीता, आपने बिल्कुल सही कहा, इस सफर में मस्ती का तड़का लगाना तो बनता है ना।
0: बिल्कुल,
1: सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम रील्स के इस दौर में कुछ गाने ऐसे आए जिन्होंने हर उम्र के इंसान को पैर थिरकाने पर मजबूर कर दिया। और शादियों की महफिल हो या दोस्तों की गाड़ियां, व्हाट झुमका और तेरे वास्ते जैसे गानों पर पैर खुद ब खुद उड़ जाते थे। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा गाते गाते ना जाने कितने लोगों ने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया।
0: बिल्कुल बिल्कुल शिवा, और साल का अंत होते होते सिनेमा ने एक और अनोखा मोड़ लिया। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल ने पर्दे पर एक अलग ही पागलपन दिखाया लेकिन इस फिल्म के संगीत ने जो इतिहास रचा वो अद्भुत था। बॉबी देओल की एंट्री पर बजने वाला ईरानी लोकगीत जमाल कुडू और पंजाब की मिट्टी से जुड़ा अर्जन वैली गाना, इन धुनों ने सोशल मीडिया पर ऐसा तहलका मचाया कि हर कोई बस इन्हीं के रंग में रंग गया।
1: वक्त तो पंख लगाकर उड़ जाता है ना श्रोताओ, लेकिन ये फिल्में और ये प्यारे नगमे हमेशा के लिए हमारे दिल की अलमारी में खूबसूरत तोहफे की तरह महकते रहते हैं। साल 2023 हमें सिखा गया कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, सिनेमा और संगीत हमें जीना सिखा देते हैं। तो चलिए सुनते हैं साल 2023 का ही वो सबसे रोमांटिक गाना जो हमें सबको याद दिलाता है कि प्यार करना जरूरी है। सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को 2023 में ही रिलीज फिल्म जवान का ये गीत
0: जी। बिल्कुल,
1: जिसके बोल हैं कुमार के, संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र का और गायक कलाकार हैं अरिजीत सिंह, शिल्पा राव और साथी
0: जी।

0: फिल्म जवान के इस गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी प्यारे श्रोताओं का कार्यक्रम सुहाना सफर में। क्यों सुनीता, साल 2023 हमारी फिल्मों और गानों के लिए जितना धमाकेदार था, राजनीति के मंच पर भी ये साल कितनी बड़ी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं रहा। शह और मात के इस खेल में साल भर कई बड़े मोड़ आए, नए गठबंधन बने, पुरानी दोस्ती टूटी और कई राज्यों की सत्ता ने करवट बदली।
1: बिल्कुल शिवा, और साल 2023 की शुरुआत देश की राजनीति में एक बड़े कदम के साथ हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा जनवरी के महीने में श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के साथ ही पूरी हुई। कड़कड़ाती ठंड और बर्फबारी के बीच खत्म हुई इस 4000 किलोमीटर से लंबी यात्रा ने न सिर्फ राहुल गांधी की छवि को बदला, बल्कि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश और नई जान फूंक दी।
0: लेकिन राजनीति का मौसम पल भर में बदलता है। मार्च के महीने में एक अदालती फैसले के बाद राहुल गांधी को अपनी संसद सदस्यता गंवानी पड़ी और उनका सरकारी बंगला भी छिन गया। ये खबर महीनों तक सुर्खियों में रही। हालांकि साल के बीच में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनकी संसद सदस्यता फिर बहाल हुई, जिसने साबित किया कि भारतीय लोकतंत्र में अदालतों और कानूनी लड़ाइयों का मोड़ कितना अहम होता है।
1: बिल्कुल शिवा, और साल के मध्य में चुनावी बिगुल बजा दक्षिण भारत के बेहद अहम राज्य कर्नाटक में। यहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर थी, जहां स्थानीय मुद्दों पर जमकर बहस हुई। लेकिन जो है, जब मई के नतीजे आए तो कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने और डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री, जिसने कांग्रेस को एक नया आत्मविश्वास दिया।
0: जैसे जैसे साल आगे बढ़ा, 2024 के लोकसभा चुनावों की सुगबुगाहट तेज होने लगी। इसी दौरान विपक्ष ने एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला दांव खेला। पटना, बेंगलोर और मुंबई की मुलाकातों के बाद करीब 26 विपक्षी पार्टियों ने एक मंच पर आकर एक नया गठबंधन बनाया, जिसे नाम दिया गया INDIA, मींस इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इस नए मोर्चे ने देश की राजनीति में एक नई बहस और हलचल पैदा कर दी।
1: बिल्कुल शिवा, और मई 2023 में देश को एक ऐतिहासिक और गौरवशाली पल भी देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में भारत के भव्य और आधुनिक नए संसद भवन का उद्घाटन किया। गुलामी के प्रतीकों को पीछे छोड़ते हुए इस नई इमारत में ऐतिहासिक संगोल यानी राजदंड को स्थापित किया गया। हालांकि इस भव्य समारोह का कई विपक्षी दलों ने बहिष्कार भी किया, जिससे यह ऐतिहासिक पल भी थोड़ा राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया।
0: सितंबर के महीने में सरकार ने संसद का एक विशेष सत्र बुलाया, जो भारतीय महिलाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। नए संसद भवन में देश का पहला कानून पास हुआ, जिसका नाम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इस बिल के जरिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का रास्ता साफ हुआ। इस फैसले का पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर स्वागत किया।
1: बिल्कुल शिवा, और साल 2023 में भारत की राजनीति सिर्फ देश के भीतर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी खूब चमकी। सितंबर में नई दिल्ली ने दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के समूह G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर दुनिया के बड़े बड़े नेता भारत आए। दिल्ली घोषणा पत्र पर सबकी सहमति बनी और अफ्रीकी संघ को इसका स्थायी सदस्य बनाना भारत की विदेश नीति और सरकार की एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी गई।
0: साल का अंत होते होते देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिन्हें 2024 का सेमीफाइनल कहा जा रहा था। जब दिसंबर में नतीजे आए तो राजनीतिक पंडित भी हैरान रह गए। हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ चुनावी हैट्रिक लगाई, वहीं कांग्रेस को तेलंगाना में जीत से संतोष करना पड़ा। इन नतीजों ने देश की राजनीति में बीजेपी और पीएम मोदी के दबदबे को एक बार फिर साबित कर दिया।
1: तो दोस्तों शिवा, ये था साल 2023 की सियासत का वो सफ़र जहां हर दिन की नई कहानी लिखी जा रही थी। वादे, दावे, रैलियां और नारे, इन सब ने मिलकर भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरत और जीवंत तस्वीर को दुनिया के सामने रखा। और शिवा, अब क्यों ना रुख संगीत की ओर करें और श्रोताओं को।
0: बिल्कुल सुनीता, हम सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। इस फिल्म का गीत, जिसे आवाजें दी हैं अरिजीत, श्रेया घोषाल और साथियों ने।

0: स्वागत है एक बार फिर से श्रोताओं और शिवाजी आपका भी।
1: बिल्कुल
0: तो शिवा, अब जो पन्ना हम पलटने जा रहे हैं वो पसीना, जज्बा, रफ्तार और देश के गौरव की कहानी है। और आज हम जो बात कर रहे हैं वो साल 2023 के खेल जगत के उस सफ़र की, जिसने कभी हमारी धड़कनों को रोक दिया, कभी आंखों में आंसू की नमी ला दी, तो कभी पूरे देश को जश्न में डुबो दिया।
1: बिल्कुल सुनीता, साल 2023 की सबसे बड़ी हलचल रही भारत की मेजबानी में खेला गया आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। पूरे 1.5 महीने तक देश में मानो दिवाली जैसा माहौल था। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने जो खेल दिखाया वो अद्भुत था। शुभमन गिल के शतक, मोहम्मद शमी की जादुई गेंदबाजी और विराट कोहली के बल्ले की गूंज ने भारत को लगातार 10 मैचों में ऐतिहासिक जीत दिलाई। पूरा देश मान चुका था कि चमचमाती ट्रॉफी इस बार हमारी ही है।
0: बिल्कुल शिवा, लेकिन जो खेल की दुनिया होती है ना, बड़ी बेरहम होती है। यहाँ पटकथा जो है पहले से ही लिखी नहीं होती। 19 नवंबर 2023 का वो दिन, अहमदाबाद का खचाखच भरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम और सामने थी ऑस्ट्रेलिया। फाइनल मुकाबले में एक खराब दिन ने करोड़ों भारतीयों का दिल तोड़ दिया था। ट्रेविस हेड के शतक ने भारत का विश्व विजेता बनने का सपना छीन लिया। मैच के बाद रोहित और विराट की नम आंखें और पूरा देश एक अजीब से सन्नाटे में डूब गया, मगर उस आहार ने हमें अपनी टीम से और ज़्यादा प्यार करना सिखाया।
1: भले ही हम ट्रॉफी न जीत पाए हों, लेकिन इसी वर्ल्ड कप ने हमें क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा पल दिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में महान सचिन तेंदुलकर के सामने विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 50वां शतक ठोक दिया। सचिन ने 49 शतकों के असंभव रिकॉर्ड को तोड़कर विराट क्रिकेट के भगवान से भी आगे निकल गए। जब विराट ने झुककर सचिन को सलाम किया तो वो पल खेल के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया।
0: बिल्कुल शिवा, और अब एक बार फिर से रुक ले मनोरंजन की और श्रोताओं को एक प्यारा सा गीत सुना देते हैं। 2023 में ही
1: आई फिल्म तू झूठी मैं मक्कार का हमने ये गीत लिया है। सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को अरिजीत सिंह के स्वर में। गीत के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।
0: तो श्रोता आप सुनते रहिए रेडियो और हम लोग जो है इस गीत के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।

0: शिवा, एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने श्रोताओं का। और क्रिकेट के मैदान से बाहर निकले तो चीन के हांगझू में हुए एशियन गेम्स 2023 में भारतीय एथलीट ने वो कर दिखाया जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। भारत का नारा था इस बार 100 पार, और हमारे खिलाड़ियों ने जान लगा दी। कुल 107 मेडल जिसमें 28 गोल्ड जीतकर भारत ने एशियन गेम्स के इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। तीरंदाजी, शूटिंग और एथलेटिक्स में हमारे लड़के लड़कियों ने दुनिया को अपनी जो है ताकत का लोहा मनवाया। और शिवा, इन सब चीजों को जो खबरें थी, ये सारी जो जानकारी थी, रेडियो का इसमें बहुत बड़ा जो था रोल था, अहम रोल था।
1: सभी खबरें आकाशवाणी के माध्यम से ही जनता के साथ जुड़ी और लोग खुशी से झूम उठे जब ये खबरें उन्हें सुनाई दी। और जब बात खेलों की ही हो रही है सुनीता जी, तो हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को कोई कैसे भूल सकता है। साल 2023 में नीरज ने बुडापेस्ट में हुई वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.17 मीटर दूर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता। वो इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। इसके बाद एशियन गेम्स में भी उन्होंने अपने सोने के तमगे को बरकरार रखा। नीरज का हर थ्रो देश के हर युवा को आसमान छूने का हौसला दे रहा था।
0: बिल्कुल शिवा, और साल 2023 आईपीएल के रोमांच के लिए भी याद किया जाएगा, जहां चेन्नई सुपर किंग्स ने पांचवी बार ट्रॉफी जीतकर महेंद्र सिंह धोनी के फैंस को झूमने के लिए मौका दिया। वहीं वर्ल्ड कप में अपनी गेंदबाजी के से तहलका मचाने वाले मोहम्मद शमी के लिए भी यह साल उनके जीवन का सबसे बड़ा साल रहा। साल के अंत में उन्होंने देश के प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई, जो उनके कड़े संघर्ष और अटूट जज्बे का सबसे बड़ा इनाम था। और अब शिवा, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं संगीत की ओर जाते जाते,
1: और समय भी हमारे कार्यक्रम का पूरा होने को चला है, तो चलते चलते कार्यक्रम के अंत में सुनवा देते हैं अपने श्रोताओं को फिल्म बॉर्डर 2 का ये गीत विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार की आवाजों में। जी बिल्कुल।

0: और इसी के साथ श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम सुहाना सफर संपन्न करने की मुझे यानी शिवा शुक्ला को
1: और मुझे यानी सुनीता रावत को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष में कार्यक्रम सुहाना सफर। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रस्तुत है पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। और इस कार्यक्रम में जैसा कि आप जानते हैं, आप सुनते हैं अपनी पसंद के गीत अपनी ही फरमाइश पर। तो अपनी फरमाइश हमें मैसेज के माध्यम से आप भेज सकते हैं श्रोताओं। इसके लिए हमारा नंबर आप नोट कीजिए।
1: हमारा नंबर जो है शिवा, वो अपने श्रोताओं को बताते हैं 9457078288।
0: नंबर में एक बार फिर से बता दूं श्रोताओं, 9457078288।
1: जी बिल्कुल शिवा। और मैसेज और पत्र लेना शुरू करें शिवा।
0: जी बिल्कुल,
1: आने शुरू हो गए हैं जो है,
0: लगातार हमें मैसेज मिल रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, ये मैसेज हम ले लेते हैं। ये हमें भेजा है परी महल काजगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलफ, सफ़ी मास्टर, जाहिद अली, मीरा सराय बदायूं से। ये है मीर सराय बदायूं से, आप हैं आफरीन खान और जमीर जी। और अगला ये मैसेज शिवा,
0: अगला मैसेज आया है जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से। लिखने वाले हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा।

0: से लक्ष्मी नंदिनी रोहित ऋतु मुकेश जगताप।
1: और ये मैसेज हमें भेजा है मोहल्ला हलवायन शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, सजदा रानी और हिना कौसर ने। और
0: अगली फरमाइश आई है नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से, लिखने वाले हैं अजीज भाई, मतीन भाई, अब्दुल रहमान, सैयद खलील, मुबीन भाई, एमडी यासीन, शेख चांद, फारूक, फूल वाले, मूसा करीम, नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से हमें ये मैसेज भेजा है इन्होंने।
1: जी बिल्कुल। और ये भेजा है हमें मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर, आरती गौरी और ओमकार सुरलकर ने।
0: और सुनवा देते हैं आप सभी श्रोताओं की पसंद पर ये कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म बुड्ढा मिल गया से। गीत के बोल हैं मजरू सुल्तानपुरी के, संगीत आरडी बर्मन का है और स्वर है किशोर कुमार का।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: कार्यक्रम के अगले गीत के लिए मैसेज करने वाले हमारे श्रोता हैं, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से आप हैं, ये फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण और जोहानुल हुदा, और आप हैं
2: कुलम रोड हरगोविंद नगर नवन शहर से, सुरिंदर संधु, अनीता संधु, रोहित, रितेश, शिखा, प्रतीक्षा और इनके परिवार के और सदस्य भी हैं
1: जी। बिल्कुल, और ये भेजा है हमें सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा ने। और
2: अगले फरमाइश करता है मंजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक।
1: और ये हैं आप हैं गांव हीरा वाली फाजिल का पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु, पार्वती, हिमांशु गोदारा और इनके सभी दोस्त।
2: अगले फरमाइश करता है कोजागिरी कॉलोनी कोपर गांव से, लिखने वाले हैं सुरेश मालोंदे, वर्षा मालोंदे, श्रद्धा मालोंदे, मानसी मालोंदे।
1: और अगली जो मैसेज भेजा है वो है हमारे श्रोता आर्य नगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंगेल और नंदनी जंगेल। धदधा ग्राम सुखरी कला से आप है अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल।
2: और आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म तेरे घर के सामने का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, बोल हसरत जयपुरी के हैं, संगीत एसडी बर्मन का है, तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

0: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम और लगातार हमें मैसेज भी मिल रहे हैं श्रोताओं आपके। और एक बार फिर से हमारे जो नए श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, सुनीता जी क्यों ना हम उन्हें फिर से अपना व्हाट्सएप नंबर बता दें।
1: जी बिल्कुल शिवा, और हमारा नंबर है 9457078288।
0: बिल्कुल, और हमें अगला मैसेज जो फरमाइश के लिए मिला है वो है बठिंडा रोड मंडी डबवाली से। मैसेज भेजने वाले हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग, और अगले फरमाइश करता है
1: जी ये हैं मलोट कैंप पंजाब से आप हैं सतीश मिगलानी, अनमोल और विवियन मिगलानी। और
0: अगला मैसेज आया है गांव व डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से। लिखने वाले हैं जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर।
1: और ये अगला मैसेज हमें भेजा है
0: फालिस का पंजाब से, ये मैसेज
1: जी,
0: है, और लिखने वाले हैं भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा।
1: जी और ये मैसेज हमें भेजने वाले हमारे जो श्रोता हैं वो हैं लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू।
0: अगला मैसेज है पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से, फरमाइश करता है अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक।
1: जी और ये अगला मैसेज हमें भेजा है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पल डिकेस्टो और विलिस डिकेस्टो ने। और
0: गंज डुंडवारा से फरमाइश करता है शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी। आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म ज्वेल थीफ का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ में। बोल है मजरू सुल्तानपुरी के और धुन बनाई है एस टी बर्मन ने।

0: और शिवा अब मैसेज लेना शुरू कर दिया अगले गीत के लिए। तो ये मैसेज हमें भेजा है गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी। और अगला मैसेज हमें ये भेजा है,
1: अगला मैसेज है गांव लोहेड़ी, जिला महोबा, बुंदेलखंड, यूपी से। लिखने वाले हैं जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रिया, रेनू, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव। अस्पताल रोड, केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर, मध्य प्रदेश से मैसेज आया है चंद्रेश गौहर, वंदना, मानवी, तन्वी गौहर का। और साथ ही लिखते हैं अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, स्वीट बेबी काव्या।
0: जी। और ये अगला मैसेज हमें भेजा है उगैती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार गुप्ता, पंकज बजाज, प्रशांत गुप्ता और प्रिंस कुमार ने।
1: महाराष्ट्र से मैसेज किया है रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई और इनके पूरे परिवार की ओर से।
0: और अगला मैसेज हमें ये भेजा है ऊपर कोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरसन अब्बासी, अबान अब्बासी और इनका पूरा परिवार।
1: अगले फरमाइश करते हैं शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा, पीहू स्वर्णकार और राज पैलेस मऊनाथ भंजन, उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन वर्मा। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये कार्यक्रम का अंतिम गीत जो हमने लिया है फिल्म तीसरी मंजिल से। आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की, गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार आर डी बर्मन।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत तुम्हारे संपन्न करने की शिवा शुक्ला
1: और सुनीता रावत को
0: दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः 11 बजने को है। लीजिए पेश है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

कुमार सानू और साधना सरगम की युगल आवाज़ों में अभी आपने जुर्म फिल्म का ये गीत सुना। गीत के बोल लिखे थे इंदिवर ने और संगीत दिया था राजेश रोशन ने। लीजिए पेश है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में कभी कभी फिल्म का ये गीत। गीत के बोल लिखे हैं साहिल लुधियानवी ने और संगीत दिया है खयाम ने।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत श्रोता इस समय आकाशवाणी नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं। लीजिए अब पेश है करीब फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं कुमार सानू और संजीवनी की। गीत की बोली के हैं राहत इंदौरी ने और संगीत दिया है अन्नू मलिक ने।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म करीब से। आवाज़ें थी कुमार सानू और संजीवनी की। गीत की बोली के थे राहत इंदौरी ने और संगीत दिया था अनु मलिक ने। लीजिए, पेश है कार्यक्रम का अगला गीत,

गुलाम से। आवाज़ें अलका याग्निक और कुमार सानू की हैं, गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

श्रोता भी सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। इस समय प्रातः के 11:30 होने को हैं। लीजिए पेश है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र राधेनगर से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं, और यही मानव संबंध की विडंबना है।
1: बहुत सुंदर संदेश राजेश पी कारिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
2: महाराष्ट्र से प्रशांत रमेश पाटिल।

0: और धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, अरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का।
1: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
0: और साथ ही साथ हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रसिद्ध शीत मरुस्थलों की।
1: इस क्रम में कल हमने चर्चा की थी अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल की और जाना था इससे जुड़ी रोचक बातों को। आज हम चर्चा करेंगे एक और अनोखे शीत मरुस्थल की और वो है गोभी का मरुस्थल। तो अजीत जी, चर्चा को विस्तार दीजिए।
0: जी विमलेश जी, आइए चर्चा को विस्तार देते हैं। तो श्रोताओं, आपको हम बताना चाहते हैं कि अंटार्कटिक का शीत मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है
1: जी।
0: लेकिन यदि एशिया महादेश की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोभी। इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर।
1: जी
0: विमलेश जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, ये मरुस्थल मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। स्थानीय भाषा में गोभी को गोब कहते हैं जिसका अर्थ है निर्जल स्थान। एक बात और आपको बता दें कि ये रेत का नहीं लेकिन पत्थरों का मरुस्थल है क्योंकि इसका अधिकांश भाग चट्टानी और पथरीला है। केवल 5% भाग ही रेतीला है।
0: तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इस मरुस्थल के तापमान की। जहां तक तापमान का प्रश्न है, यहाँ तापमान बहुत कम होता है।
1: जी
0: सर्दियों में ये -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है।
1: यानी एक ही मरुस्थल में कड़कती ठंड भी और झुलसाने वाली गर्मी भी।
0: जी
1: लेकिन इसे शीत मरुस्थल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ अधिकांश समय सर्दियों का ही होता है। अजी जी, एक बड़ी विशेष घटना हुई है जिसके कारण गोभी का मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध हुआ है। क्या थी वो घटना?
0: विमलेश जी, वो घटना थी जब वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में डायनासोर के अंडे और जीवाश्म मिले।
1: जी
0: यहाँ और भी कई दुर्लभ प्राणियों के जीवाश्म मिले हैं, जिसके कारण वैज्ञानिकों और संचार माध्यमों ने इसे प्राचीन जीव जगत के खजाने की संज्ञा दी है।
1: अजीत जी, अब श्रोताओं को जरा यहाँ रहने वाले लोगों की जानकारी दे दें।
0: जी हाँ, जरूर।
1: श्रोताओं, गोभी मरुस्थल में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी घुमंतू जीवन यानी नोमेडिक लाइफ जीते हैं। मंगोल परिवारों का पारंपरिक घर गोलाकार का होता है जिन्हें यर्ट कहते हैं। इन घरों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि आसानी से खोले और दूसरी जगहों पर ले जाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग यहाँ मौसम को देखते हुए जगह बदलते हैं। वैसे गोभी मरुस्थल के बाहरी इलाकों में आधुनिक शहर भी हैं।
0: तो श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि आज के आधुनिक वाहन यहाँ बहुत कम मिलते हैं। यहाँ के ऊंट 2 कुबड़ वाले होते हैं
1: जी
0: जो अत्यधिक ठंड और गर्मी दोनों सह सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि ठंड के समय ये ऊंट बर्फ खाकर अपनी पानी की जरूरत को पूरा करते हैं।
1: जी
0: घुड़सवारी यहाँ के प्रतिदिन के लोक जीवन का हिस्सा है और घुड़दौड़ है यहाँ का प्रिय खेल और मनोरंजन का माध्यम।
1: जी अजीत जी, क्योंकि उमंग रेडियो कार्यक्रम है तो ये बताना तो बहुत ही प्रासंगिक होगा कि गोभी मरुस्थल के दूर दराज के इलाकों में भी आज भी टेलीविजन की पहुंच बहुत कम या नहीं के बराबर है।
0: जी
1: यहाँ लोग रेडियो सुनकर ही मौसम का हाल जानते हैं, समाचार सुनते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। अब आधुनिकता के दौर में पर्यटन बढ़ गया है, सैलानी देश विदेश से आते हैं और यहाँ के घुमंतू परिवारों के साथ होम स्टे करते हैं।
0: श्रोताओं, यहाँ की दिनचर्या भी बहुत मजेदार और गतिविधियों से भरी हुई है। सुबह उठकर दूध दुहना महिलाओं का काम है, जबकि पुरुष मवेशी चराने का काम करते हैं।
1: जी
0: दिन भर की मेहनत के बाद शाम को पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है और कहानियों और गीतों के द्वारा मनोरंजन करता है। ये गाते हैं, बजाते हैं।
1: बजाने के लिए इनके खास वाद्य यंत्र हैं जैसे मोरिन खोर।
0: ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
1: ये 2 तारों वाला वाद्य यंत्र है। एक और बहुत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है लिम्बे। ये बांसुरी जैसा वायु वाद्य यंत्र है। एक रोचक बात यह है कि यहाँ लोग अपने संगीत को ऊंट, घोड़े और प्रकृति से जोड़ते हैं। कई धुनें यहाँ ऐसी होती हैं जो जानवरों को बुलाने और शांत करने के लिए बनाई गई हैं।
0: बहुत सुंदर जानकारी विमलेश जी। सचमुच गोभी का शीत मरुस्थल जीवन की कठिनाइयों और उसे सुंदर ढंग से जीने का अनूठा उदाहरण है।
1: तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी गोभी के शीत मरुस्थल की।
0: अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, गोभी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गोभी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं।
0: श्रोताओं, आप प्रश्नों के उत्तर और संदेश हमारे ईमेल यानी audio@cit

0: nic.in पर या हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। और हाँ, NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें यानी ऑडियो बुक्स आप दीक्षा या NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है दोस्त की पहचान।
1: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में बताया गया है कि एक सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाती है। संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए।
2: एक जंगल से दो दोस्त गुजर रहे थे।
3: कितने बड़े बड़े पेड़ है यहाँ तो।
4: हाँ, बहुत बड़े पेड़ हैं।
3: अरे देखो देखो, कितने अच्छे पक्षी हैं यहाँ पर।
5: अरे वो देखो चिड़िया।
6: अरे वो देखो बंदर।
7: ओ, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।
8: मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है।
9: हाँ, ये तो सही कह रहे हो।
10: अरे कोई जानवर आ गया तो क्या करेंगे हम?
11: क्या करेंगे?
12: देखेंगे, जब जानवर आएगा तब।
2: अचानक
10: ये तो रीछ की आवाज है।
13: अरे अरे, मुझे तो लगता है रीछ आ रहा है।
10: ओ, अब हम अपनी जान कैसे बचाएंगे?
11: क्या करे क्या करे, जल्दी सोचो क्या करे।
10: मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
11: अरे मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता है।
2: रीछ को देखकर उनमें से एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़ गया।
11: ओ, ऐसा करता हूँ, पेड़ पर चढ़ जाता हूँ।
2: और दरख्त की टहनियों में छुपकर बैठ गया। दूसरा दोस्त नीचे अकेला रह गया।
10: ओ, अब मैं क्या करूं? मैं
2: जब उसको कुछ नहीं सूझा,
10: मैं ऐसा करता हूँ, जमीन पर लेट जाता हूँ और अपनी सांस रोक लेता हूँ, तभी जान बचेगी।
2: तो वो सांस रोककर चुपचाप जमीन पर लेट गया। रीच उसके करीब आया, उसने उसे सूंघा।
10: ये रीच तो मुझे सूंघ गया। मैं ऐसा करता हूँ, सांस रोक के लेटा रहता हूँ, तभी जान बच पाएगी।
2: और मुर्दा समझकर छोड़ दिया।
10: बच गए, लगता है रीच चला गया।
2: रीच जब चला गया तो दूसरा दोस्त,
11: रीछ तो चला गया, अब मैं पेड़ से नीचे उतर सकता हूँ।
2: और अपने साथी से जाकर पूछा,
11: एक बात तो बताओ, रीछ ने तुम्हारे कान में क्या कहा?
2: पहले दोस्त ने जवाब दिया,
10: मेरे कान में कहा, ऐसे दोस्त से दोस्ती मत करो जो मुसीबत के समय काम ना आए और तुम्हारा साथ छोड़ दे।
2: पंचतंत्र की कहानी मश्क। सोचिए और बताइए,
0: महफूज तरीके से जंगली जानवरों को कैसे देखा जा सकता है? जंगलों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उनकी फेहरिस्त बनाइए। अगर आप उन दोस्तों में होते तो दोस्त की मदद कैसे करते? दोस्त की पहचान। अभी आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम। अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, रिकॉर्डिंग मंजू कुमारी, फनकार फरहान अली नकवी, बाल कलाकार सोहम और वान्या, हिदायतकार विमलेश चौधरी, पेशकश कुसुम लता। ये प्रोग्राम CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम दोस्त की पहचान।

0: की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गौरा देवी।
2: इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति के द्वारा चिपको आंदोलन की जानी मानी नायिका गौरा देवी के जीवन और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है।
3: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
4: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
3: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
5: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
6: अरे इस बार भी नहीं लगी।
7: अरे
5: नहीं लगा ना? लाओ लाओ, रुको रुको रुको। अरे मैं
7: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो। अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
5: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
7: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
6: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
7: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
5: बड़ी आई रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
3: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
4: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
3: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
4: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
8: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
7: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
8: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
9: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
8: आप तो काम करती है ना?
9: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
8: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
3: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास

0: के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
1: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
0: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
1: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
0: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
1: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
2: गौरमा,
3: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
2: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
3: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
2: गौरमा,
3: हाँ,
2: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
3: क्या?
2: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
3: अच्छा, तो ये बात है। बहनों, चलो हम सब तैयार हो जाएं।
4: बिल्कुल,
3: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
5: हाँ, सब तैयार हैं।
4: नहीं कटने देंगे।
2: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
0: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
3: ये है जंगल के उपकार,
6: मिट्टी पानी और बयान,
3: मिट्टी पानी और बयान।
1: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
3: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे, जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
7: आगे बढ़ो।
4: अरे कहां से
7: तुम इनकी बातों में बताओ। मैंने तुम्हें पेश की थी।

0: देश की इस काम के लिए
1: छिपक जाएंगे, छिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे हम।
2: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम, एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे आज,
1: नहीं लगाने देंगे। बहनों
2: आगे बढ़कर छिपक जाओ पेड़ों से।
0: ठीक है तो वहां चलो, अरे उन पेड़ों को काटो, चलो।
3: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
4: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
0: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
3: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में यह आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
4: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
3: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
4: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
2: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहां से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
3: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा, प्रवीण शर्मा और गीतांजलि। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्माण सहायक कुसुम लता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोता भी सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे NCERT। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय दिन के 12 बजे हैं। लीजिए पेश है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

शास्त्रीय संगीत में अब से थोड़ी ही देर बाद यानी दिन में 12:05 पर आप सुनेंगे वासुदेव देश पांडे का गाया राग वृंदावनी सारंग। आपके साथ तबले पर संगत करेंगे साबिर हुसैन खान और सारंगी पर होंगे लियाकत अली। फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी आप सुनेंगे दिन में 12:30 पर। घर संसार कार्यक्रम में आज दिन में 1:15 पर आज का क्रम रहेगा बात थारे मन के। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा में दिन में 1:45 पर सुनिएगा मीना बिष्ट के गाए कुमावनी लोकगीत। व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम संदेश.com का समय रहेगा दिन में 2:30 पर।

आकाशवाणी की 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है के अंतर्गत नगर निगम कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के नगर आयुक्त पीएल शाह से चरणजीत सिंह की बातचीत पेश की जाएगी शाम 5 बजे। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर आज के क्रम रहेंगे बूझो तो जाने कुछ खास है आज यूथ कनेक्ट कहानी के उस पार पोस्टर और साथ ही सुनिएगा फिल्म संगीत। यूरिया एवं डीएपी के उपयोग को कम करने में जैविक एवं प्राकृतिक खेती के बायो इनपुट्स का महत्व इस विषय पर डॉक्टर चंद्रभान से नरेश पाल सिंह की बातचीत सुनिएगा कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर। विविधा कार्यक्रम में शाम 6:45 पर सुनिएगा वार्ता खड़ी बोली का क्रमिक विकास वार्ताकार होंगे डॉक्टर नवीन चंद्र लोहानी। छाया गीत आप सुनेंगे शाम 6:55 पर। कानून की बात शाम 7:32 पर हमारे लखनऊ केंद्र से रिले की जाएगी। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7 बजकर

फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या का समय रहेगा रात्रि 8 बजे। एक ही फिल्म से कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर। चर्चा का विषय है रात्रि 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का समय रहेगा रात्रि 10 बजे। कार्यक्रम मुझे याद है जरा जरा आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। श्रोताओं, ये तो थी कुछ कार्यक्रम संबंधी जानकारियां।

हम आकाशवाणी की नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 12:05 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत में लीजिए पेश है वासुदेव देश पांडे का गाया राग वृंदावनी सारंग। विलंबित रचना एक ताल और द्रुत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं साबिर हुसैन खान और सारंगी पर हैं लियाकत अली।

शास्त्रीय संगीत में श्रोता भी सुन रहे थे वासुदेव देश पांडे का गाया राग वृंदावनी सारंग। विलंबित रचना एक ताल और द्रुत तीन ताल में निबद्ध थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे साबिर हुसैन खान और सारंगी पर थे लियाकत अली। हम आकाशवाणी की नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। इस समय दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिट्टे मेलोडी। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म बॉबी से, आवाज़ें हैं मन्ना डे, शैलेंद्र सिंह और साथियों की। गीत के वो लिखे हैं विट्ठल भाई पटेल ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: लीजिए श्रोताओ, आप पेश है मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में कर्ज फिल्म का ये गीत। गीत की बोली लिखी आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आंखों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने ड्रीम गर्ल फिल्म का ये गीत सुना। कार्यक्रम के अंत में लीजिए पेश है SP बालासुब्रमण्यम और आशा भोसले की आवाज़ों में सागर फिल्म का ये गीत।

0: श्रोता, इसी गीत के साथ मिड डे मेलोडी कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय दिन के 1 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आज आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई, कई अन्य लोगों को बचा लिया गया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार आग बुझाने के लिए 15 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एम्बुलेंस सेवा, अन्य आपातकालीन एजेंसियों के दल बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि त्वरित कार्यवाही से प्रभावित परिसरों से कई लोगों को बचाने और सुरक्षित निकालने में मदद मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
2: मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस कॉन्क्लेव में ट्राइबल डेवलपमेंट से जुड़े संस्थाओं और मानव संसाधन के विकास से लेकर के वित्तीय व्यवस्थाओं तक तथा मॉनिटरिंग से लेकर के स्किल टीम डिलीवरी तक अत्यंत महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा होगी।
1: भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरे सबसे बड़ा और ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा लगभग 10 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुव्रता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। घरेलू शेयर बाजार में संवेदी सूचकांक में आज आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 558 अंक की गिरावट के साथ 74,092 पर, जबकि निफ्टी 155 अंक फिसल कर 23,329 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by Anuja Kumar. More than 10 people lost their lives and several others are rescued after a fire broke out at a hotel in Malviyanagar, Delhi this morning. According to the Delhi Fire Services, 15 fire tenders rushed to the spot to douse the fire. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the loss of lives in the fire incident. In a social media post, Mr. Modi said that authorities are providing all possible assistance to those affected. He also wished a speedy recovery to the injured. Mr. Modi also announced that an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund will be given to the next of kin of each deceased. The injured would be given 50,000 rupees. Delhi Chief Minister Rekha Gupta has also expressed grief over the tragic loss of lives in the fire incident. In a social media post, Ms. Gupta said that immediately after receiving information about the incident, teams of Delhi Fire Services, Delhi Police, District Disaster Management Authority, CATS Ambulance Services and other emergency response agencies were mobilized and launched the rescue and relief operations. President Draupadi Murmu today inaugurated the National Conclave on Strengthening of Integrated Tribal Development Agencies and Integrated Tribal Development Projects in New Delhi. Addressing the occasion, the President said that tribal society living across the country is culturally very rich and efforts must be made to bring the tribal community forward. She said development must reach the last home and the last village. Ms. Murmu expressed concern that there are still some sections of tribals who are unaware of the various schemes of the government.
2: PM Janman Yojana ke तहत जनजातीय समुदाय में भी सबसे पिछड़े समूहों के 20,000 से अधिक गांव तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाने का लक्ष्य है। हम सब जानते हैं 75 जो ग्रुप्स और है पीबीटी जी सबसे पिछड़े अभी भी और कोई पेड़ के मंच के रहते रहते हैं, उनके कोई जमीन नहीं, जमीन था लेकिन रिकॉर्डेड नहीं, इसलिए उनको जमीन देकर घर बनाना, उनके हर चीज के लिए अधिकारी लोगों को जितने कर्मचारी लोगों का दायित्व है।
3: वेस्ट बंगाल फॉर्मर रूलिंग पार्टी द तृणमूल कांग्रेस इज इन टर्मोइल एंड ऑन द वर्ज ऑफ स्प्लिट। एक्सपेल्ड टीएमसी एमएलए रीता ब्रत बनर्जी claims the support of nearly 60 MLAs, a number that could decisively shift the control in the assembly. His faction has already written to Speaker Atin.

घर संसार कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को थारी बहन अंजना की राम राम और स्वागत तम सभी का। बहनों महीना है जून का और तम सभी जानो कि जून का महीना यानी भयंकर गर्मी, इसलिए इस मौसम में थोड़ी भी लापरवाही स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सके है। इसलिए इस समय शरीर में पानी की कमी तो बिल्कुल ना होने दे, क्योंकि इस समय गर्म हवा चले है जिसे हम लू भी कह दें ना, और अगर लू की चपेट में आ गए तो थकान, चक्कर आना, सिर दर्द ये समस्या हो सके है और व्यक्ति थका थका महसूस कर सके है। तो बहनों जरा खेतों पे जाओ तो सोच समझ कर जाइए, सुबह और शाम में ही काम करना अच्छा रहेगा। और अच्छा यही होगा कि हम सुबह और शाम जब काम निपटा लेंगे तो तेज धूप में हमें जाना ही ना पड़ने का, और घर के काम काज भी धूप से बच के कर ले तो अच्छा रहेगा। और सुबह शाम में ही निपटा लें, खेत के काम हो या अपने घर के हो तो अच्छा रहेगा। और खेत के काम जब हम खुले स्थानों पर कर रहे हैं तो भाई तेज धूप भी पड़े हैं तो वहाँ पे हमें गर्मी अधिक लगेगी जिससे हम लू की चपेट में आ सकें। तो बेहतर होगा कि सुबह शाम में हम काम निपटा लें, तेज धूप से हम बचें। और अगर भाई निकलना भी पड़े तो छाते का प्रयोग करें, सिर पर गीला कपड़े रखें और थोड़ा ढीले कपड़े पहन लें, चश्मे का प्रयोग कर लें, ताजे फल हरी सब्जी और हल्का भोजन करें, सुपाच्य भोजन करें और स्वच्छता का जरा ध्यान रखें, साफ सफाई का, क्योंकि साफ सफाई रहेगी तो भाई हर तरह से हम बीमारियों से बचे रहेंगे। और व्यायाम भी कर लें, और इस समय छाछ है, सत्तू है, तरबूज, खीरा, ककड़ी, नारियल पानी, नींबू, शिकंजी, ये सब शरीर को ठंडक प्रदान करें तो इनका सेवन अधिक करें। तो बहनों कहने का मतलब बस यही है कि अगर यदि हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हम लू से बच सके हैं और समय रहते सचेत रहने की आवश्यकता है। फिर देखो गर्मी यूं छुमंतर सी गई और हम एकदम स्वस्थ, एकदम फिट फोर और तनाव से भी दूर। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा मन एकदम बढ़िया रहेगा, तरोताजा रहेगा और हम अपने परिवार की देखभाल भी अच्छे से कर पाएंगे। और चलो बातें तो हम और भी करेंगे, लेकिन पहले सुन ले मैं कुछ जरूरी संदेश।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: इन संदेशों के बाद एक बार फिर स्वागत तम सभी का। बहनों, तम सभी जानो कि आज है माह का पहला बुधवार और पहले बुधवार को क्रम रवे स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम बात थारे मन की। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम बात थारे मन की। बहनों, बचपन के वो दिन जब हम साइकिल पर सवार अपनी सखी सहेलियों के साथ चले थे स्कूल, सच खूब अच्छा लगा था। जब बतियाते हुए स्कूल पहुंचे थे पता भी ना चला था कि कब आ गया स्कूल। साथ ही रास्ते में आम, अमरूद और बेर के पेड़ आना और उनसे फल तोड़कर खाना खूब भावे था। और साइकिल चलाने से शरीर भी हष्टपुष्ट और तनाव से भी दूर और बेफिक्र होकर के चले जावे थे स्कूल। एक समय की बात याद आ रही है बहनों कि हम साइकिल पर सवार और हम 10-15 सखी सहेली। अब भाई जब 10-15 सखी सहेली हो तो बात तो आनी लाजमी है, कभी ना कभी तो याद आ ही जाती है। तो हम तो साइकिल पे सवार थे और गर्मियों का मौसम था, आम के पेड़ पे पीले पीले आम पक्के लटक रहे थे। अब भाई आम का पूरा बाग रास्ते में पड़ता था, कोई मना करने वाला भी ना हुआ था क्योंकि रास्ते में लगे हुए थे। हाँ, यदि किसी ने मना कर दिया तो थोड़ा आगे बढ़ गए और ना मना किया तो वो उन आमों को साइकिल पे जो चढ़ करके तोड़ते थे, वो मन आज भी बहुत सुखद अनुभूति दे रहे हैं। जी हाँ, आप ठीक समझ गए हैं कि आज है 3 जून और 3 जून है तो आज हम साइकिल दिवस भी मना रहे हैं। विश्व साइकिल दिवस मनाना हमारा उद्देश्य यही है कि आज भी हम उन दिनों को याद करते हैं कि जो हमें तनाव से दूर रखे हैं, क्योंकि ये जो पर्यावरण के प्रति हमें सजग रहने को सिखाया वो साइकिल ही है, क्योंकि ये साइकिल हमें हर तनाव से दूर रखे है। और इसका महत्व भी यही है कि हम लोगों को जागरूक करें और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा दें। क्योंकि बहनों, तुम सभी जानो कि साइकिल एक सस्ता और यातायात का सुलभ साधन है। नियमित साइकिल चलाने से शरीर भी फिट रहे हैं और मोटापे जैसी समस्या तो कोसों दूर रहे हैं। साथ ही ईंधन की भी बचत रहे है, बढ़ते प्रदूषण को रोकने में भी हमारी साइकिल ही सहायक रहे है। तो साइकिल चलाने से ना धुआं और ना ही और कुछ खर्च, यानी ईंधन की भी बचत, साथ ही पैसे की भी बचत और स्वास्थ्य एकदम चोखा और तनाव तो कोसों दूर। तो बहनों, जब हमारा शरीर भी फिट, हमारा स्वास्थ्य भी फिट, तो क्यों ना हम साइकिल को अपना

0: में, और हाँ छोटी छोटी पगडंडियों में भी हमारी साइकिल नू रास्ता बनाती हुई चली जावे कि बस हम तो सातवें आसमान पे हैं भाई। फोर व्हीलर हुई, टू व्हीलर हुई, छोटी छोटी पगडंडियों पर चलाने में मुश्किल आवे, लेकिन साइकिल तो नू दौड़ती हुई चली जावे सबको बीच में छोड़ के और निकल जावे, और हम पहुंच जाते हैं अपने गंतव्य पर, और कोई नुकसान भी ना, यानी सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया। तो जो हमारे जीवन में इतना अधिक महत्व रखे है ये साइकिल, तो क्यों ना हम साइकिल को अपनावें और दूसरों को भी प्रेरित करें साइकिल चलाने के लिए, तभी तो सच्चे अर्थों में हम साइकिल दिवस मना पाएंगे। तो चलिए आज बात थारे मन की क्रम के अंतर्गत भी आज हमने इसी संदर्भ में बात की, साइकिल स्वास्थ्य और पर्यावरण, इस विषय पर सुनते हैं ये बातचीत।
1: बहनों, आप सभी जानती हैं कि आज है विश्व साइकिल दिवस, और इस संदर्भ में आज हम पहुंचे जलालाबाद, जहां हमने कुछ बहनों से बात की साइकिल स्वास्थ्य और पर्यावरण। इस संदर्भ में हम अपनी बहनों के बीच पहुंचे, आइए उनके विचार हम उन्हीं से जानते हैं। आपका शुभ नाम?
2: मेरा नाम शाहना है।
1: शाहना, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। और शाहना जी, आप क्या करती हैं?
2: मैं टीचिंग करती हूँ।
1: अच्छा, टीचिंग करती हैं आप। देखिए, आप अध्यापिका हैं और बच्चों को समझाती भी होंगी कि आज हम साइकिल दिवस मना रहे हैं, तो क्या आप साइकिल को महत्व देती हैं?
2: जी, मैं साइकिल को बहुत महत्व देती हूँ।
1: किस प्रकार से उपयोगी हमारे लिए साइकिल?
2: साइकिल हमारे लिए बहुत उपयोगी है, हमारी सेहत के लिए बहुत उपयोगी है वो, और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी है। इससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता, क्योंकि इससे कोई धुआं नहीं होता, इसमें कोई पेट्रोल डीजल कुछ यूज़ नहीं होता। साथ साथ इससे हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहती है, इसमें कोई खर्चा नहीं होता है हमारा।
1: अच्छा, आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहती है, कैसे?
2: क्योंकि इसमें हमें कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है, ना पेट्रोल खरीदना पड़ता है, ना डीजल खरीदना पड़ता है, बस उठाओ और जाओ।
1: अच्छा, आज के संदर्भ में साइकिल का क्या महत्व है, क्योंकि हम देखते हैं कि साइकिल का बहुत कम उपयोग होने लगा है।
2: क्योंकि आजकल ये बहुत सारी चीज़ें पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटी, ये सब चीज़ें चलने लगी है ना, तो साइकिल का महत्व थोड़ा कम हो गया है। लेकिन साइकिल स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है और बच्चों को यूज़ करनी चाहिए। हम भी जब पढ़ते थे तो हम साइकिल का यूज़ करते थे और साइकिल पे ही स्कूल जाते थे। मेरे दादाजी भी साइकिल चलाते थे, मेरे पापा भी साइकिल चलाते थे। हम कई पीढ़ियों से साइकिल देखते आ रहे हैं, और साइकिल एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे हम अपने पर्यावरण और अपनी सेहत दोनों का ध्यान रख सकते हैं।
1: अच्छा, जैसे कम दूरी पर भी हम अधिकतर वाहन का प्रयोग कर लेते हैं, सार्वजनिक वाहन का प्रयोग कम करते हैं, साथ में बाइक उठाई या स्कूटी उठाई उसी से चल देते हैं। अगर हम अपने बच्चों को कहते भी हैं कि अरे भाई साइकिल से चले जाओ, थोड़ी दूरी पर ही तो जाना है, लेकिन वो मानते नहीं है, तो उनको आप किस प्रकार से समझाती हैं?
2: हम उन्हें इसी प्रकार से समझाते हैं कि साइकिल से आप जाओगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, प्लस आपका पैसे की भी बचत होगी, क्योंकि आपको पेट्रोल का यूज नहीं करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम समझाते हैं और बच्चे मान भी जाते हैं और फिर साइकिल का यूज करते हैं।
1: अच्छा, जैसे पर्यावरण की भी मांग है, आज बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है और लगातार गर्मी बढ़ने की संभावना है, और इस समय हमारे देश में आर्थिक संकट भी आया हुआ है पेट्रोल डीजल के रूप में। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का थोड़ा बचत करके चले, तो आपका क्या मानना है और किस प्रकार से हम पेट्रोल और डीजल की बचत कर सकते हैं?
2: जी, प्रधानमंत्री ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हमें वाकई इसका यूज करना चाहिए साइकिल का। इससे अगर हम साइकिल का यूज करेंगे थोड़ी दूर पर भी, तो पेट्रोल की बचत होगी, और जिससे हमारे देश को लाभ मिलेगा, इसकी बचत होगी, और वो हमें करनी चाहिए। तो साइकिल का यूज बच्चे हों बड़े हों, इन्हें सबको करना चाहिए।
1: यानी आपको ये मानना है कि छोटी छोटी बचत बहुत बड़ा रूप ले लेती है। अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हम आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगे, पर्यावरण की भी रक्षा करेंगे और अपना स्वास्थ्य भी अच्छा करेंगे। इस संदर्भ में आप अपने बच्चों से जो आपको सुन रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगी?
2: मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि बच्चे, आजकल छोटे छोटे बच्चे को हम देखते हैं वो बाइक स्कूटी इन चीजों का यूज बहुत करते हैं। आप इन चीजों का यूज ना करें, साइकिल का यूज करें।
1: यानी अपने आप को स्वस्थ रखना है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, तो साइकिल का उपयोग बढ़ाना ही होगा। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं, आपका शुभ नाम?
3: मेरा नाम अनुष्का दक्षत है।
1: अनुष्का, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम घर संसार में। आप कैसी हैं?
3: मैं बहुत अच्छी हूँ।
1: देखिए, आप एक युवा हैं और इस समय क्या कर रही हैं आप?
3: इस समय मैं साउथ जेल से बीएससी कर रही हूँ।
1: अच्छा, बीएससी कर रही हैं। क्या आप साइकिल को महत्व देती हैं? कि साइकिल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है?
3: जी, साइकिल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। साइकिल चलाने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और साइकिल चलाने से हमारे पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है, क्योंकि उसमें पेट्रोल का यूज नहीं होता, और पेट्रोल के यूज से काफी मतलब पॉल्यूशन होता है पर्यावरण में, धुआं वगैरह होता है, तो उससे पर्यावरण को नुकसान

0: होता है, बट साइकिल चलाने से हमारे जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहता है और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखती है।
1: क्या आप साइकिल चलाती हैं?
0: जी मैं साइकिल चलाती हूँ।
1: आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है?
0: जी साइकिल चलाने से मुझे लगता है कि स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है मेरा।
1: अच्छा, जो बहनें आपको सुन रही है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
0: मैं उन्हें ये कहना चाहूंगी कि नहीं उसमें साइकिल चलाया करें, सुबह के टाइम पे साइकिल चलाया करें, उससे स्वास्थ्य अच्छा रहता हमारा। उससे हमारी एक एक्सरसाइज जाती है जिससे डेली की लाइफ हमारी काफी बिजी रहने लगी है। हमें सुबह के टाइम पे अगर हम साइकिल भी चलाएंगे तो उससे हमारा जो स्वास्थ्य वो अच्छा रहेगा।
1: अनुष्का, आपने बताया कि अगर हम प्रतिदिन साइकिलिंग करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। इस समय पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़े हुए हैं, तो क्या आर्थिक रूप से भी मदद होगी?
0: हाँ आर्थिक रूप से हमें बहुत मदद होगी क्योंकि आजकल जो पेट्रोल वगैरह है वो काफी महंगा हो गया है, तो इस प्रकार अगर हम साइकिल चलाएंगे तो उससे हमारा जो पेट्रोल खर्चा होगा वो हमारा वो भी बचेगा और वो हमें आर्थिक रूप से भी मदद करेगा।
1: अच्छा अनुष्का, हम देखते हैं कि अधिकतर युवा पीढ़ी ही नहीं बल्कि जो हम थोड़ा बड़े हैं वो भी थोड़ी थोड़ी दूरी पर भी अगर जाते हैं तो साइकिल का ना प्रयोग करके अपना टू व्हीलर या जैसे बाइक या फिर स्कूटी इन सब का इस्तेमाल करते हैं। आपकी क्या राय है?
0: मेरी ये राय है अगर मतलब ज्यादा दूरी की चीजें होती हैं वहाँ पे इनका प्रयोग एक बारी को आप कर सकते हैं, बट जहाँ आपको ये लगता है कि हाँ हम यहाँ पे ज्यादा दूरी पे नहीं है स्थान वहाँ पे हम साइकिल से जाएं या फिर ज्यादा करीबी स्थान पे हम पैदल जाएं या फिर साइकिल से जाएं तो वो ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए। उससे हमारा जो पर्यावरण है वो भी सुरक्षित रहेगा, हमारा खर्चा भी बचेगा, आर्थिक रूप से भी मदद मिलेगी। हमें साइकिल से जाना चाहिए ज्यादातर।
1: तो आपका ये मानना है कि साइकिल हमारे लिए बहुत जरूरी है?
0: हाँ,
1: हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, हमारी आर्थिक रूप से भी मजबूती होगी, साथ ही हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा।
0: जी साइकिल हमारे लिए बहुत उपयोगी है, हमें डेली लाइफ में अपनी साइकिल को उपयोग में लाना चाहिए।
1: अनुष्का, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं,
2: करते हैं अन्य बहन से बात। आपका शुभ नाम?
3: मेरा नाम तितिक्षा है, हाउस वाइफ हूँ।
2: तितिक्षा, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम घर संसार में। और जैसा कि आज है साइकिल दिवस, हम साइकिल दिवस मना रहे हैं, तो हमारे जीवन में साइकिल का तो बहुत अधिक महत्व है। लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि अब साइकिल चलाना हमारी युवा पीढ़ी भी और कोई भी अधिकतर पसंद नहीं करता, आपका क्या मानना है?
3: हाँ वैसे आप सही कह रही हैं कि आज के टाइम में कोई भी प्रेफर नहीं करता है इतना कि आप साइकिल चलाते हैं। आजकल के टाइम में सभी कार चलाना पसंद करते हैं, बाइक चलाना पसंद करते हैं, साइकिल तो बहुत ही कम लोग दिखाई देती है अब की चला रहे हैं। लेकिन साइकिल का इफेक्ट पड़ता है आपके पर्यावरण पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है और आपके स्वास्थ्य पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है।
2: किस प्रकार से पड़ता है स्वास्थ्य पर,
3: स्वास्थ्य
2: पर्यावरण पर?
3: जी बिल्कुल, मैं बताऊंगी आपको कि स्वास्थ्य पे बहुत इफेक्ट पड़ता है कि आपके एक तो आप साइकिल चलाते हैं आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होती हैं और आपका मतलब जो हार्ट रहता है वो भी ठीक रहता है। आप एक्सरसाइज आपको जरूरत नहीं है करने की, आप साइकिल चला के ही अपनी कैलोरीज बर्न कर सकते हैं और अपने शरीर को कसरत करा सकते हैं। और पर्यावरण की तरफ से देखा जाए तो पर्यावरण में आजकल इतना पॉल्यूशन हो चुका है धुएं वगैरह की वजह से, पेट्रोल की वजह से, तो हम वो भी बचा सकते हैं कि हम पॉल्यूशन ना कर पाए
2: उससे, क्योंकि साइकिल में पेट्रोल और डीजल की तो आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार से हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, कहीं ना कहीं हम अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रख पाएंगे और अपना स्वास्थ्य भी सुरक्षित करेंगे। क्योंकि जब हम साइकिलिंग करेंगे तो हमारा एक्सरसाइज भी होगा, व्यायाम भी होगा, तो इस तरह से हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख लेंगे और अपने पर्यावरण का भी ध्यान रख लेंगे। अच्छा, आज के समय में यदि हम बात करें साइकिल चलाना, क्योंकि देखो डीजल और इस समय पेट्रोल बहुत महंगे हो रहे हैं, तो जो युवा पीढ़ी या फिर जो हमारे आसपास है अधिकतर टू व्हीलर का या फिर घर में कार का प्रयोग करते हैं, अगर छोटी छोटी सी दूरी पर भी जाते हैं तो वो वाहन निकालेंगे और उससे चले जाएंगे, क्या ये उचित है?
3: नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है। एक तो लाइफ स्टाइल आपका बहुत ख़राब हो जाता है प्रदूषण की वजह से, और आप एक होता है ना कि खुली हवा में सांस लेना, वो खुली हवा में सांस लेना भी आप भूल जाते हैं। साइकिल में आपको दिमाग की भी शांति मिलती है और आप अच्छा महसूस करते हैं। और ये जो ईंधन की जो बढ़ती कीमत है वो साइकिल सबसे अच्छा तरीका है कि बचा सकता है, या पास के कामों में ऑफिस या कॉलेज जाने इसका उपयोग करने के तो अच्छा रहेगा।
2: क्या साइकिल चलाने से तनाव भी कम होता है?
3: जी बिल्कुल, साइकिल चलाने से तनाव तो कम होता ही है और दिल को भी बहुत शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि मतलब आप खुली हवा में सांस ले रहे हैं और अच्छे से सोच पा रहे हैं सारे डिसीजंस वगैरह सभी चीजों में। साइकिल चलाना है एक बहुत
2: हमारे जीवन में बहुत अच्छा व्यायाम हो जाता है, साइकिल से कहीं ना कहीं ट्रैफिक की समस्या भी कम

0: होती है। क्या आप मानती हैं इस बात को?
1: हाँ, मैं मानती हूँ इस बात को, क्योंकि सड़कों पर कारों के मुकाबले बहुत ही कम जगह घेरती है साइकिल, और आसानी से निकल भी जाती है कहीं पर। अगर लोग छोटी छोटी दूरियों के लिए भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ और जाम काफ़ी कम हो जाएगा।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर हम साइकिल का इस्तेमाल करें तो कहीं ना कहीं सड़कों पर भीड़ कम दिखाई देगी। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे श्रोता बहनों को बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं आगे। आपका शुभ नाम?
2: यशिका।
0: यशिका क्या करती हैं आप?
2: मैं एक स्टूडेंट हूँ।
0: अच्छा, स्टूडेंट हैं। क्या साइकिल को महत्व देती हैं?
2: जी हाँ, मैं अपने जीवन में साइकिल को बहुत महत्व देती हूँ, क्योंकि साइकिल से एक तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो बहुत ठीक रहता है, और इससे मैं ये मानती हूँ कि हमें योगा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप रोज साइकिल चला रहे हो तो।
0: क्या आधुनिक जीवन शैली में लोग साइकिल से दूर होते जा रहे हैं, आपका क्या मानना है?
2: क्योंकि आज के टाइम पे ना लोग बाग इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि नहीं, ज़रा सी तो जगह है, क्यों पैदल जाएं या साइकिल चलाकर जाएं, और मेहनत लगेगी, तो वे टू व्हीलर या फोर व्हीलर से जाना प्रेफर करते हैं आज के टाइम पे।
0: अच्छा, जैसे आप स्टूडेंट हैं, ट्यूशन वगैरह भी जाती होंगी, स्कूल जाती होंगी, तो क्या आप साइकिल से जाती हैं या अपने घर में स्कूटी या बाइक से जाती हैं?
2: नहीं, मैं साइकिल से ही जाती हूँ और साइकिल से ही आती हूँ, और मुझे काफ़ी फ्रेश फील होता है साइकिल चलाकर, क्योंकि उसमें हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा रहता है और हम बहुत फ्रेश फील करते हैं, क्योंकि वो हमारे पूरे बॉडी को
0: स्ट्रांग बनाता है।
2: हाँ, स्ट्रांग बनाता है। हमारी इस टाइम पर भारत की मांग है कि सब साइकिल का यूज़ करें, क्योंकि इससे हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहेगा और हम खुद भी बहुत स्वस्थ रहेंगे, और लोगों को भी प्रेरित करें इस चीज़ के लिए कि वे थोड़ी सी ही दूरी जाने के लिए टू व्हीलर का यूज़ ना करें और पैदल जाएं या फिर साइकिल का प्रयोग करें।
0: बहुत सुंदर याशिका, आपने अपने विचार रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साइकिल स्वास्थ्य और पर्यावरण। बहनों, अभी आप सभी ने हमारी बहनों के विचार सुने और सभी बातों से यही निष्कर्ष निकला है कि छोटी दूरी के लिए साइकिल का प्रयोग करें, जिससे हम पर्यावरण को शुद्ध रखने में पूरा पूरा योगदान दे सकें, शरीर को फिट रखने में साथ साथ आर्थिक रूप से भी हम सभी को लाभ होगा। और साइकिल को अपनाना और जीवन को स्वस्थ बनाना, ये सब एकदम बढ़िया रहेगा और चोखा रहेगा, इसलिए साइकिल को अपनावें और पर्यावरण को स्वस्थ बनावें। और आप करवाते हैं थारा मनोरंजन कुछ इसी संदर्भ में, क्योंकि पर्यावरण है तो जीवन है। तो आइए सुनते हैं ऐसा ही ये प्यारा सा लोकगीत रजनी टॉक की आवाज़ में।

हम बात जी हाँ बहनों, अभी आपने सुना ये पर्यावरण गीत सच वास्तव में कि हम यदि पेड़ों को काटेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे, क्योंकि ये हमारी शान है। हमारे पेड़ हमें जीवन देते हैं, इसके बिना हमारा जो ये संसार है हरा भरा वो भी नीरस लगेगा, क्योंकि सुंदरता संसार में पेड़ पौधों से ही आती है। हमारे जीवन में सुंदरता हमारे पेड़ पौधे हैं, इसीलिए हमें अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधों को रोपना चाहिए। लेकिन आज कंक्रीट के मकान लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं। अरे जरा सोचो, अगर इसी तरह से मकान बढ़ते रहे और पेड़ पौधे कटते रहे तो हमें जो जीवन देने वाली गैस है ऑक्सीजन, वो कहाँ से मिलेगी? और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम निकालते हैं वो पर्यावरण में ऐसी ही घूमती रहेगी, और बीमारियों की जड़ जो है ये सब भी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यही है,

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर संसार। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा में श्रोताओं लीजिए पेश है मीना बिष्ट के गाए कुमाऊनी लोकगीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा में श्रोता इस समय सुन रहे हैं मीना बिष्ट के गायक कुमाऊनी लोकगीत।

0: 5, while the Nifty fell 147 points to 23,336 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. 21 people killed in a massive fire at a hotel in Delhi's Malviya Nagar. Prime Minister Narendra Modi expresses grief, announces an ex gratia of 2 lakh rupees to next of kin of each deceased. Trinamool Congress faces turmoil as expelled MLA Ritabrata Banerjee claims support of nearly 60 MLAs in West Bengal Assembly. Supreme Court forms high-powered expert panel to re-examine Aravali definition. Senior Congress leader D.K. Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. India becomes the world's second largest solar growth market, surpasses USA in annual solar capacity additions. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिव कुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे अब समाचार विस्तार से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है एक रिपोर्ट
2: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग दिल्ली पुलिस जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है दीपेंद्र कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली
1: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी
3: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की गृहमंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध

0: है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गांव और व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए।
1: जनजातियों समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तले इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
0: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार

0: को द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीप अंसाहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रूपए मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू करना संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में 2 पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट पूरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि ये लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी

0: ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमेरिका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
1: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांचाई इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
2: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
1: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय आयरलैंड के नहन गुवेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में PV सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओमबाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DK शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में HS प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 2:30 हुए। लीजिए पेश है व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम संदेश.com। स्वागत है सभी श्रोताओं का कार्यक्रम संदेश.com में। जैसे कि श्रोताओं नाम से ही, इसके शीर्षक से ही पता चलता है कि संदेश.com, तो आपको जो है हम आपको बता देते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपसे गानों से संबंधित कुछ प्रश्न पूछते हैं और आपको उनको मैसेज करना होता है। और जो भी श्रोता, जो हमारे नए श्रोता इससे जुड़ रहे हैं, वो हमारा जो व्हाट्सएप करने के लिए नंबर जो है वो नोट कर ले। हमारा नंबर है 9457078288, 9457078288। श्रोता, ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, और मैसेज आप जो है इस नंबर पर कर सकते हैं। और आपको सुनना है गीत, और गीत के बाद आपको जो प्रश्न हम पूछेंगे वो आपको मैसेज कर देना है। नंबर हमने आपको बता ही दिया है। तो चलिए पहले सुन लेते हैं ये गीत, और आपको बताना है कि ये गीत हमने कौन सी फिल्म से लिया है। सुनिए गीत और बताइएगा कि ये गीत जो है हमने वो कौन सी फिल्म से लिया है।

0: काफ़ी सारे श्रोताओं ने जो है हमें मैसेज भेज दिए हैं। चलिए तो हम बता देते हैं, ये गीत था मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म चिराग से। गीत के बोल लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया था मदन मोहन ने। और देखते हैं हमारे किन किन श्रोताओं ने जो है इसका सही उत्तर दिया है। ये हमें भेजा है गांव फरासी ज़िला हिसार से मैसेज किया है राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी ने। आपका जवाब जो है बिल्कुल सही है, फिल्म चिराग। और आप हैं ये मैसेज हमें भेजा है ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलबीर सिंह ने। आपका भी जो जवाब बिल्कुल सही है, फिल्म है चिराग। और ये मैसेज हमें भेजा है विरम गांव गुजरात से अजीत कुमार भावसार ने। आपका भी जो जवाब बिल्कुल सही है, फिल्म का नाम जो है चिराग है। और ये मैसेज हमें भेजा है पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू स्माइल खुशदिल, हंसमुख लाल जिंदल और इनके बहुत सारे साथी। इनका भी जवाब जो है बिल्कुल सही है, फिल्म का नाम चिराग। और ये मैसेज हमें भेजा है मुंबई से अनु बड़जात्या, शमशुल खान और अनुराज बनारा ने। आपका भी जवाब बिल्कुल सही है, फिल्म चिराग। और ये मैसेज हमें भेजा है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय और इनके बहुत सारे दोस्तों ने, फिल्म चिराग। आपका जवाब बिल्कुल सही है। और ये मैसेज हमें भेजा है विलेज एंड पोस्ट रहु नगली, आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, अक्षत चौहान और भूमिका चौहान ने। आपका भी जवाब जो है बिल्कुल सही है, फिल्म चिराग। श्रोताओं आप लोग सुनते रहिए रेडियो और हम अभी हाजिर होते हैं इस संदेश के बाद।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम, डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: श्रोताओं लीजिए अब सुनिए ये अगला गीत और आपको बताना है कि इस गीत के गायक कलाकार कौन हैं।

तो इस गीत के लिए भी जो है काफ़ी मैसेज हमें आए हैं, तो हम बता देते हैं अपने श्रोताओं को। ये गीत हमने लिया था फिल्म महल से, और जो कि हमने पूछा था कि गायक कलाकार कौन है, तो गायक कलाकार हैं किशोर कुमार और आशा भोसले जी हैं, और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने, और गीत के वो लिखे हैं आनंद बख्शी ने। तो चलिए देखते हैं कि इस जवाब भेजने वाले श्रोताओं ने हमें क्या जवाब दिया है। ये हमें भेजा है मुंबई से अनु बड़जात्या, शमशुल।

0: विरम गायत गुजरात से अजीत भावसार और प्रमिला भावसार ने, आपने किशोर कुमार तो सही लिखा है लेकिन गायिका जो है वो लता मंगेशकर नहीं बल्कि आशा भोसले जी हैं। और ये मैसेज हमें भेजा है श्रोता जो है वो अपना नाम भेज दे रहे हैं और जो हमने सवाल भेजा है उसका आंसर नहीं दे रहे, तो हम अपने श्रोताओं से अनुरोध करेंगे कि जो सवाल हम पूछ रहे हैं उसका जो है वो जवाब दें। और ये मैसेज हमें भेजा है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राय और महराज जहाँ ने, आपका जवाब भी जो है बिल्कुल सही है। और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि ये जैसा कि नाम है sandesh.com, तो आपको हमें संदेश भेजना है और हम आपसे गानों से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे, आपको हमें वो मैसेज करने हैं। और मैसेज करने के लिए हम अपने श्रोताओं को नंबर पुनः बता देते हैं, हमारा नंबर है 9457078288, 9457078288। और श्रोता लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत, और आपको बताना है कि इस गीत के गीतकार कौन है। ध्यान से सुनिएगा, आपको बताना है कि ये गीत जो आप सुनेंगे इसके गीतकार कौन है।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?

0: ये गीत हमने लिया था फिल्म धनवान से। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर के, और संगीत दिया था हृदयनाथ मंगेशकर ने। और हमने प्रश्न किया था कि इस गीत के गीतकार कौन हैं, तो इस गीत के गीतकार हैं साहिल लुधियानवी। और हमें सही उत्तर देने वाले हैं ये चकला बाज़ार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल और हंसमुख लाल जिंदल। आपका बिल्कुल सही आंसर है साहिल लुधियानवी। और आप हैं सराय मीर स्ट्रीट नगीना से रईस अहमद राही, रविश अहमद राही, रूपेश अहमद राही, रिशान अहमद, रुशीज अहमद और रुशमान अहमद। आपका जो जवाब है वो भी बिल्कुल सही है। और ये जवाब हमें दिया है मुंबई से अनु बड़जात्या, शमशुल खान और अनुराज पिनारा ने। आपका भी जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है साहिर लुधियानवी। और ये जवाब हमें भेजा है गांव फरासी ज़िला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी। इनका जवाब भी जो है वो बिल्कुल सही है साहिर लुधियानवी। चलिए अब सुन लेते हैं ये ज़रूरी संदेश, और हम तुरंत हाजिर होंगे इस संदेश के बाद।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: श्रोताओं, अब आपको सुनना है ये गीत और आपको बताना है कि इस गीत के जो संगीतकार हैं वो कौन हैं। एक बार पुनः बता दें, आपको बताना है कि इस गीत के संगीतकार कौन हैं।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म मन मंदिर से। आवाज़ें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, गीत के बोल लिखे थे राजेंद्र किशन ने। और जैसे कि हमने क्विज किया था कि इस गीत के संगीतकार कौन हैं, तो इस गीत के संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और सही जवाब देने वाले हमारे श्रोता हैं विलेज एंड पोस्ट राहू नागली से आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, अक्षय चौहान, भूमिका चौहान और नैतिक चौहान। आपका जवाब बिल्कुल सही है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और ये मैसेज हमें भेजा है विरम गांव गुजरात से प्रमिला भावसार और इनके परिवार के सदस्यों ने। आपका जवाब भी बिल्कुल सही है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। और ये मैसेज हमें भेजा है सराय मेरी स्ट्रीट नगीना से रईस अहमद राही, रवीश अहमद राही, रुईश अहमद राही, रिशान अहमद राही, रुशीस अहमद राही, रुशमान अहमद राही और समस्त राही परिवार। आपका सवाल भी बिल्कुल, जो उत्तर है जवाब वो बिल्कुल सही है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और यह जवाब हमें भेजा है चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल और हंसमुख जिंदल ने। आपका जवाब जो है वो सही नहीं है। चलिए अब अगला पत्र जो है मैसेज हम ले लेते हैं। आप हैं मुंबई से अनु बरजातीय, शमशुल खान और अनुराज बनारा। आपका भी जवाब जो है बिल्कुल सही है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो श्रोताओं, अब समय हमें इजाज़त नहीं देता है कि हम इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं, तो इसी के साथ sandesh.com कार्यक्रम संपन्न करने की अब हमें आगे दीजिए। नमस्कार। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। इस समय दिन के 3 बज चुके हैं। अब हमारी आज की ये प्रसारण सभा यहीं पर संपन्न होती है। अपनी अगली प्रसारण सभा में शाम 5 बजे पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

इनकी आयु 18 वर्ष है, शरीर की बनावट सामान्य शरीर है। सोनम का कद 5 फुट 2 इंच है और रंग गोरा है। इनके ऊपर इनाम राशि भी है जो कि 10,000 रुपये है। यदि इनके बारे में आपको कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना अनूप शहर, जनपद बुलंदशहर में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है ब्रह्मपाल, पिता का नाम है रघुबीर, अंतिम बार इन्हें ग्राम मडोना जाफराबाद दिन शुक्रवार तारीख 3/4/2026 को देखा गया है। इनकी आयु करीब 56 वर्ष है, कद 5 फुट 7 इंच है, शरीर की बनावट पतला शरीर है और चेहरे का रंग गेहुआ है। इनका पता है ग्राम मडोना जाफराबाद पुलिस स्टेशन बीबी नगर बुलंदशहर। यदि इनके बारे में आपको कोई भी जानकारी प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना बीबी नगर, जनपद बुलंदशहर में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है अर्जुन सिंह, इनके पिता का नाम है पप्पू सिंह, निवासी मोहल्ला लोहान, थाना जहांगीराबाद बुलंदशहर। इन्हें अंतिम बार इनके घर लोहान मोहल्ला तारीख 8/1/2026 तक देखा गया है। इनकी आयु 18 वर्ष है, शरीर की बनावट आंख नाक कान सामान्य है और शरीर पतला है, रंग गेहुआ है। अर्जुन का कद 5 फुट 8 इंच है। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना जहांगीराबाद, जनपद बुलंदशहर में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है मनोज कुमार जैन, इनके पिता का नाम है विमल प्रसाद जैन। मनोज को अंतिम बार अंसारी रोड चौराहा जनपद बुलंदशहर में देखा गया है 14/3/2026 दिन शनिवार तक। मनोज की उम्र 53 वर्ष है, कद 5 फुट है, शरीर की बनावट सामान्य शरीर है और चेहरे का रंग गेहुआ है। मनोज अपने घर से किसी निजी कार्य के लिए निकले थे और अभी तक वापस नहीं आए हैं। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना कोतवाली नगर, जनपद बुलंदशहर में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है रिहाना, पति का नाम है दानिश, निवासी वीसा कॉलोनी, अंतिम बार इन्हें वीसा कॉलोनी बुलंदशहर में देखा गया है 4/4/2026 तक। इनकी आयु 30 वर्ष है, कद 5 फुट 4 इंच है, इनकी शरीर की बनावट सामान्य है, चेहरे का रंग गोरा है। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना कोतवाली नगर, जनपद बुलंदशहर में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है रागनी उर्फ काजल, इन्हें अंतिम बार 27/3/2026 ग्राम अघापुर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में देखा गया है। इनकी आयु 23 वर्ष है, शरीर की बनावट सामान्य शरीर है, कद 4 फुट 6 इंच है। प्रार्थी का पूरा पता है रागनी उर्फ काजल, पत्नी धर्मेंद्र सिंह, पिता का नाम विकास सैनी, निवासी ग्राम अघापुर थाना सेक्टर 49 नोएडा गौतम बुद्ध नगर। यदि इनके बारे

0: में आपको कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना सेक्टर 49, नोएडा, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में सूचना दे सकते हैं। श्रोताओं, ये तो थे कुछ खोए व्यक्तियों के बारे में जानकारी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, TRM 810 किलो हर्ट्ज पर।
1: आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
0: श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आज के कार्यक्रमों का विवरण। 4:20 पर आप सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज। 4:30 पर आप सुनेंगे समाचारों के अंतर्गत कार्यक्रम परिक्रमा। साथियों, 5:10 पर आप आनंद लेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी का। 5:30 पर आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। 6:10 पर आप सुनेंगे हिंदी वार्ता। 6:30 पर आप सुनेंगे ग्राम संसार कार्यक्रम, जिसमें आज चर्चा होगी विश्व साइकिल दिवस पर। 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कृषि जगत। 7:30 पर आप आनंद लेंगे कुछ प्यारी सी गजलों का। रात्रि 8 आप आनंद ले सकेंगे गीत मालिका में फिल्म संगीत का। तो श्रोताओं, ये तो थे आज के कुछ प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, TRM 810 किलो हर्ट्ज पर। स्टूडियो घड़ी में 4:20 होने को है और 4:20 पर आप सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़।

0: irwin.edu.in वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में आवेदन निदेशक लेडी इरविन कॉलेज सिकंदरा रोड नई दिल्ली कॉलेज की वेबसाइट पर रिक्ति परिपत्र के प्रकाशन की तिथि से 45 दिनों के भीतर जमा किए जा सकते हैं। यदि कोई संशोधन हो तो उसे कॉलेज की वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा। ये जानकारी 30 मई 2026 से 5 जून 2026 के रोजगार समाचार पत्र पर आधारित है। इसके अतिरिक्त लेडी इरविन कॉलेज में ही एक सेक्शन ऑफिसर, एक सीनियर असिस्टेंट और एक प्रोफेशनल असिस्टेंट के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ये पद डेपुटेशन आधार पर भरे जाने हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.ladyirwin.edu.in। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, CGO कॉम्प्लेक्स लोदी रोड नई दिल्ली, इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। संयुक्त निदेशक कैपिटल मार्केट 2 पद, उपनिदेशक बैंकिंग 2 पद, उपनिदेशक कॉरपोरेट लॉ 2 पद, उपनिदेशक फॉरेंसिक ऑडिट 1 पद, उपनिदेशक अन्वेषण 3 पद, प्रधान निजी सचिव 1 पद, वरिष्ठ सहायक निदेशक बैंकिंग 4 पद, वरिष्ठ सहायक निदेशक कैपिटल मार्केट 1 पद, वरिष्ठ सहायक निदेशक कॉरपोरेट कानून 4 पद, वरिष्ठ सहायक निदेशक 1 पद, वरिष्ठ सहायक निदेशक अन्वेषण 2 पद, वरिष्ठ सहायक निदेशक कराधान 1 पद, वरिष्ठ अभियोजक 3 पद, सहायक निदेशक अन्वेषण 12 पद। ये सभी 38 पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हैं। निजी उम्मीदवारों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। रोजगार समाचार दिनांक 28 फरवरी 2026 से 6 मार्च 2026 के अंक में प्रकाशित रिक्ति परिपत्र के संदर्भ में प्राप्त आवेदनों पर वर्तमान रिक्ति परिपत्र के लिए विचार किया जाएगा। अतः जो उम्मीदवार पहले के रिक्ति परिपत्र के विरुद्ध आवेदन कर चुके हैं उन्हें उसी पद के लिए फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। योग्यता, वेतनमान और अन्य जानकारियों के लिए देखिए वेबसाइट www.sfio.nic.in। इसके अतिरिक्त आप ये वेबसाइट भी देख सकते हैं www.mca.gov.in। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा 2026 के लिखित परिणाम की घोषणा। आयोग द्वारा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा 1 2026 के लिखित भाग के परिणाम की घोषणा कर दी गई है और ये आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट है www.upsc.gov। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अब प्रस्तुत है समाचारों के अंतर्गत कार्यक्रम परिक्रमा। समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
0: नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 4:30, यानी वक्त है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की हमारी इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे याद उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को है जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिन। दोस्तों, परिक्रमा के इस अंक के साथ हम हैं, मैं हूं मुनीश शर्मा और मेरे साथ हैं रेणु कटारिया। नमस्कार रेणु जी।
3: Namaskar Munish, hello and a very warm welcome to all our listeners who are tuned to our program Parikrama on 100.1 FM Gold. And I am Renu Kataria, as Munish has already introduced me, and his full name is Munish Sharma. And dear listeners, as Munish has informed, we have a selection of news, our discussion segment, Dateline India reports, capsules, tributes and so much more, all for you over the next 30 minutes. And let's begin with the news headlines first, Munish.
0: Yes, Renu. So the first headline, Delhi ke Malviya Nagar sthit ek hotel mein bhishan aag lagne se 21 logon ki maut. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया. प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा.
3: तृणमूल कांग्रेस फेसेस टर्मोइल एज एक्सपेल्ड. एमएलए ऋतब्रता बैनर्जी क्लेम सपोर्ट ऑफ नियरली 60 एमएलएज इन वेस्ट बंगाल असेंबली.
0: सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया.
3: Senior Congress leader D.K. Shivakumar sworn in as Chief Minister of Karnataka.
0: भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना. वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा.
3: And in Indonesia Open Badminton, H.S. Pranoy and Ayush Shetty to play in men's singles this afternoon. Dear listeners, it is now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we are going to talk about World Bicycle Day. And here I would like to quote Albert Einstein, Munish. He said, "Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving." So, this day is celebrated annually on June 3rd to acknowledge the simple, affordable, reliable and environmentally fit sustainable means of transport, fostering environmental stewardship and health. The day was adopted through a UN General Assembly resolution recognizing the uniqueness, longevity and versatility of the bicycle. Theme of this year is Cycling for a Greener Future. It highlights the bicycle's role in cutting carbon emissions, combating traffic congestion and promoting sustainable, healthy urban environments.
0: दरअसल साइकिल संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के सबसे असरदार साधनों में से एक है. जनसंख्या वृद्धि को बढ़ते उत्सर्जन से अलग करके साइकिल चलाना शहरी हवा की गुणवत्ता को सक्रिय रूप से बेहतर बनाता है, कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है और इस मुहिम को इतनी ज्यादा लोकप्रियता मिली है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें साइकिल चलाने को सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में मुख्य धारा के तौर पर शामिल करने को बढ़ावा दिया गया है. चाहे इसका इस्तेमाल रोजाना शहरी सफर के लिए किया जाए या फिर सप्ताहांत में मनोरंजन के लिए किया जाए, जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों की जगह साइकिल का इस्तेमाल करने से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन सीधे तौर पर कम होता है.
3: एंड नॉट ओनली दिस मुनीश, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी सच एज वॉकिंग, साइकिलिंग और डूइंग स्पोर्ट्स हैज सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ. एट ऑल एजेस द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग फिजिकली एक्टिव आउटवे पोटेंशियल हार्म, फॉर एग्जाम्पल थ्रू एक्सीडेंट्स. सम फिजिकल एक्टिविटी इज बेटर देन नन. By becoming more active throughout the day in relatively simple ways, people can quite easily achieve the recommended activity levels. And here I'm remembering another thing, Munish, when we were kids, aajkal to bachchon ko sirf hum cycle dete hain ki chaliye aap park tak cycling kar lijiye ya apni colony ke andar hi aap cycle chalaiye. But I remember those days when we used to cycle to school aur hum log itne active rehte the aur itna acha lagta tha cycling karke aur hum dekhte rehte the ki आज मार्केट में कोई नई साइकिल आई है तो चलिए पापा को बोलते हैं कि हमें वो वाली आज साइकिल खरीदवाइए.
0: इंडीड एंड इवन नाउ वी वुड लव टू, बट यू नो द सेफ्टी फैक्टर इज अ बिग कंसर्न.
3: एग्जैक्टली,
0: दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड. और देखिए रेणु जी, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बज रहे हैं। हमारी द्वितीय प्रसारण सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। कार्यक्रमों के आरंभ में प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है। श्रोताओं नमस्कार, आज रिश्ता ये खास है कार्यक्रम लेकर मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो मित्र चरणजीत सिंह। और आज के हमारे खास मेहमान हैं नगर निगम कोटद्वार के नगर आयुक्त PL शाह साहब। सर, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद चरणजीत जी।
0: भारत में रेडियो प्रसारण के 90 वर्षों के उपलक्ष में जो हमारा ये खास कार्यक्रम है रिश्ता ये खास है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका रिश्ता आकाशवाणी के साथ कैसे खास है।
1: ये जो रेडियो वाला हमारा रिश्ता है, हम उस जमाने के पड़े हुए हैं जब टीवी है, समाचार पत्र हैं, ये बहुत ही चुनिंदा लोगों के दिनचर्या का पार्ट हुआ करते थे। या जब हम कभी अपने मुख्य बाजारों में जाते थे तो वहाँ पर हम किसी दुकान में बैठ करके चाय के साथ अखबार पढ़ते थे। और वहाँ पर भी सभी दुकानें ऐसी नहीं होती थी जहाँ पर अखबार रोजाना मिलता था। मेरे पास 3 ऐसी भूली बिसरी यादों में से 3 ऐसे रोचक किस्से हैं कि जहाँ पर रेडियो हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। और लाइफ को यूँ मानिए कि यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में बोलें या मनोरंजन के क्षेत्र में बोलें या एक हेल्प के रूप में बोलें, तो वहाँ पे रेडियो ने हमारे जीवन में या विशेषकर मेरे जीवन में भूमिका अदा करी है। सबसे पहले वाक्य मैं बताता हूँ कि जब हम लोग तैयारी करते थे तो उस समय समाचार सुनने का एक मुख्य साधन जो है रेडियो हो जाता था। अब रेडियो भी सभी लोगों के पास नहीं होता था, वो भी कुछ चुनिंदा लोगों के पास होता था। तो हमने भी जो है कहीं से एक पुराना जो है समाचार सुनने के लिए एक पुराने रेडियो का कहीं से जुगाड़ किया था और उसको ठीक करवा के मैकेनिक के पास में देवप्रयाग में मैंने उसको ठीक करवाया था। और उससे मैं अपनी तैयारी के समय समाचार सुनता था। सुबह 8 बजे के समाचार आते थे जो बहुत ही विस्तृत होते थे। पहले वो हेडलाइन के रूप में आता था और फिर एक एक पॉइंट्स को जो है एनालिसिस वो किया जाता था उसमें। तो वो समाचार थोड़ा सा तेज होते थे तो उसको जैसे एक बार सुना तो कुछ कुछ पॉइंट्स तो याद रहते थे लेकिन डिटेलिंग उसकी याद नहीं रहती थी। तो इसके लिए जो है दोपहर के बाद एक टाइमिंग थी, मुझे टाइम एग्जैक्ट याद नहीं है, तो धीमी गति के समाचार आते थे तो बहुत धीमा जो है उसमें बोलते थे और एक एक चीज जो है क्लियर हो जाती थी। तो वो 2:30 बजे का जो टाइम आता था, हम लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठते थे और पूरे जो समाचार थे उनको लिखना शुरू करते थे और वो समाचार हम पूरा लिख डालते थे। तो ये जो धीमी गति का समाचार था ये काफ़ी जो है पढ़ाई में हमें हेल्प करता था और जो करंट अफेयर्स जैसे चीज़ें हैं उनको अपडेट करने में बड़ी मदद करता था।
0: तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये किस दौर की बात है और उस समय आप कहाँ रहते थे?
1: देखिए, ये उस समय मैं ग्रेजुएशन में था और मैंने जो ग्रेजुएशन किया है वो ओंकारानंद सरस्वती डिग्री कॉलेज देवप्रयाग से किया है। और ये 92 और 93 की बात है जब मैं ग्रेजुएशन में था।
0: तो क्या शिक्षा के क्षेत्र में भी आपके साथ कहीं ना कहीं आकाशवाणी का कोई योगदान जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें?
1: आकाशवाणी नजीबाबाद केंद्र जो है हमारे गांव में पकड़ता था और हमारा जो नियरेस्ट आकाशवाणी का केंद्र था वो नजीबाबाद ही था। तो चाहे वो समाचार हो, चाहे वो ग्राम जगत वाला कार्यक्रम हो या चाहे ये शाम को जो है आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से जो है कुछ गढ़वाली गाने आते थे।
0: जी जी जी।
1: और चूंकि हम लोग उत्तराखंड के मैं टेहरी से बिलोंग करता हूँ तो गढ़वाल के रहने वाले हैं तो गढ़वाली गानों में हमारा काफी इंटरेस्ट था। तो उस समय जो है मुख्य रूप से 2-3 लोगों के 4 लोगों के गाने जो है मुझे मालूम है कि उन लोगों को हम सुनते थे। एक तो जो हमारे गढ़ रत्न है नरेंद्र सिंह नेगी
0: जी,
1: उनके गाने हम सुनते थे। और एक गाना जो बार बार आता था और वो था कि स्याली है बसंती स्याली, तन की गोरी मन की काली। और एक दूसरा गाना हुआ करता था कुमाऊनी जो अपने गायक थे गोपाल बाबू गोस्वामी, तो उनका भी ये गाना आता था कि कैकी बजी मूरूली हे बीणा उचिनिस डाणियों मा।
0: अच्छा।
1: तो इसको हम जो है शाम को बहुत चाव से और इसका इंतजार हमको रहता था कि ग्राम जगत कार्यक्रम आने वाला है, तो उसके लिए हम एकदम गाने सुनने के लिए 5-10 मिनट अपना जो है मनोरंजन करने के लिए एकदम तैयार रहते थे।
0: अच्छा।
1: और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था हमारे लाइफ का, और ऐसा लगता है कि जैसे जो है ये परसों की ही बात होगी, अभी भी हमारी मेमोरी में इतना ताजा है ये जो ग्राम जगत का कार्यक्रम है।
0: अच्छा, शिक्षा के साथ साथ इसने मनोरंजन में भी काफी योगदान दिया है आपको।
1: बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली।
0: चूंकि बात हम शिक्षा के क्षेत्र की कर रहे थे, आप कैसे मानते हैं कि इसने शिक्षा के क्षेत्र में भी समाज को काफी योगदान दिया है आकाशवाणी केंद्र नजीबाबाद ने, और व्यक्तिगत रूप से आपके जीवन में किस तरह से इसका जुड़ाव बना रहा शिक्षा के क्षेत्र में?
1: देखिये, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है उस टाइम में रेडियो ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और जो हमारा आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, क्योंकि हमारा ताल्लुक तो नजीबाबाद केंद्र से ही था, वहाँ से जो भी कार्यक्रम आता था, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई है। जैसे हम समाचार की बात करते हैं तो समाचार एक सुनना, उसकी डिटेलिंग सुनना, और जो धीमी गति के समाचार थे जिनको हम एक एक आराम से बैठ करके सुनते थे, तो वो जो भी नया हो रहा है विश्व परिदृश्य में, क्या हो रहा है भारत में, क्या हो रहा है, क्या क्या हम कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं हम रेडियो से सुनते थे।
0: तो आपको आगे बढ़ाने में किस तरह से ये चीज आपके आपके लिए मूल्यवान साबित हुई?
1: देखिए, जो भी एग्जाम होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम, और हम उस समय कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, हम इलाहाबाद में उस समय PCS की तैयारी कर रहे थे, तो उस दौरान जब हम गांव में उससे पहले जब हम पढ़ रहे थे और इलाहाबाद में तैयारी के दौरान भी ये जो करंट अफेयर्स है वो हमको इससे मिल जाता था, रेडियो कार्यक्रम से।
0: अच्छा।
1: हमको मिल जाता था।
0: अच्छा।
1: और लगभग जो मुख्य मुख्य घटनाक्रम थे उनसे हम अपडेट रहते थे, तो ये इम्पोर्टेंट जो है पार्ट था। दूसरा जो किसान जगत कार्यक्रम आता था उसमें किसानों के लिए, जैसे आलू की बहुत सी वैरायटी होती है, इसी तरह से चावल की वैरायटी हो गई, तो इनके बारे में भी जो है कई कार्यक्रम आते थे, तो और इत्तेफाक से ये जो है कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते थे, तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत नॉलेज हमको और सभी लोगों को जो है दिया करते थे। तो मैं समझता हूँ कि उस दौर में जो रेडियो जो था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक नॉलेज का सोर्स हुआ करता था।
0: उस दौर में रेडियो बहुत ही नॉलेज का सोर्स हुआ करता था। शाह साहब, आपने ये बात हमारे साथ साझा की और आपने ये भी स्वीकार किया कि वास्तव में कहीं ना कहीं आपको सेबल करने में, आपको लाइफ में आगे बढ़ाने में आकाशवाणी केंद्र नजीबाबाद का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कोई ऐसी घटना जिसने आपको आप प्रभावित किया हो उस दौर में, और वो बात आपको आज भी आपके जहन में ताज़ा हो, ऐसी कोई बात हमारे साथ आप शेयर करना चाहेंगे?
1: मेरा गाँव जो है मुख्य मार्ग से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर था, तो मैं कई बार जो हूँ अपने कॉलेज से रात को कई बार गाड़ी का किराया नहीं होता था, तो हम लोग जो हैं पैदल देवप्रयाग से, और अपने जो हमारा जो एक मेरे सिस्टर का गांव पड़ता है मूल्य गांव, तो मूल्य गांव के ऊपर गांव था, गड़ाकोट नाम से गांव था मेरे सिस्टर का, तो बेसिकली मैं वहीं से जो हूँ देवप्रयाग आया जाया करता,
0: कॉलेज आते जाते थे,
1: तो मूल्य गांव से लेकर के और गड़ाकोट जो गाँव है उस बीच में काफ़ी चीड़ का बड़ा जंगल है।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो वहाँ जब मूल्य गांव में किसी ट्रक से बैठ करके या किसी गाड़ी से बैठ करके या किसी से लिफ्ट मांग करके जब देवप्रयाग से मैं मूल्य गांव पहुँचता था, तो मूल्य गांव से थोड़ा ऊपर गांव में पहुँचते हुए जो है रात हो जाती थी।
0: अच्छा।
1: तो रेडियो जो है एक साथी के रूप में भी काम करता था।
0: अच्छा।
1: डर लगता था कि कोई जानवर ना आ जाए।
0: अच्छा।
1: लोगों के गाँव वालों से कहानी सुनते थे कि यहाँ भूत भी रहता है, इस गदेरे में, इस गाटे में भूत रहता है, तो वो भी डराता था।
0: अच्छा।
1: तो उस समय क्या होता था कि मैं रेडियो लगाता था ऊंची आवाज में, और रेडियो के जो कार्यक्रम आते थे वो लगता था कि कोई मेरे साथ में है, और ये भी था कि जो जंगली जानवर थे वो भी उसकी आवाज को सुन करके जो है इधर उधर हो जाते थे, आदमियों का कोई झुंड जा रहा है,
0: झुंड जा रहा है,
1: तो यहाँ जाना जो है खतरे से खाली नहीं है। तो इस तरह से ये आज भी मेरी मेमोरी में ताजा है कि मैं इस अनुभव को कभी नहीं भूल पाऊंगा, और इससे जो है रेडियो बड़ा एक साथी के रूप में मेरा साथ दिया करता था।
0: तो आपने भूली बिसरी बातें भी हमारे साथ साझा की, और आपने ये भी हमें बताया कि किस तरह से आकाशवाणी केंद्र नजीबाबाद का आपके निजी जीवन में, आपके सामाजिक जीवन में योगदान रहा है। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से अब हाईटेक जमाना है, और इस दौर में जब लोगों के हाथों में हर समय, उनकी पॉकेट में हर समय कार्यक्रम रहते हैं आकाशवाणी केंद्र नजीबाबाद के एक ऐप के माध्यम से, तो आप आजकल जो कार्यक्रम सुन रहे हैं ये कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं, और इन कार्यक्रमों के संबंध में आप हमारे आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए, आकाशवाणी रेडियो का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम आज भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने तब हुआ करते थे। किसानों के लिए भी और आम आदमी के लिए भी। ये अलग बात है कि थोड़ा सा जो है इनका अल्टरनेट अब मोबाइल हो गया है और बहुत सारी सूचनाएं लोग जो हैं गूगल से सुन लिया करते हैं,
0: जरूरी भी है।
1: और दूसरा ये भी है कि जो मनोरंजनात्मक जैसे गाने हुआ करते थे वो लोग जो हैं अब जो है गूगल में जा करके या यूट्यूब में जा करके गाने सुनते हैं। लेकिन निश्चित रूप से रेडियो का अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस है और हम जैसे लोग हैं जो उस ज़माने के लोग हैं हम आज भी जो है रेडियो सुनना पसंद करते हैं। तो इसलिए आज भी जो है जो आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र से जो कार्यक्रम चलते हैं वो आज भी हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना तब हुआ करते थे।
0: आकाशवाणी नजीबाबाद के कार्यक्रम जितने महत्वपूर्ण पहले हुआ करते थे उतने ही महत्वपूर्ण आज भी हैं। ये हमारे साथ अपनी बात को साझा कर रहे थे नगर निगम कोटद्वार के नगर आयुक्त PL शाह। सर आज हमसे इस कार्यक्रम में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद चरणजीत जी।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रिश्ता ये खास है। आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित इस कार्यक्रम में नगर निगम कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के नगर आयुक्त PL शाह से बातचीत कर रहे थे चरणजीत सिंह। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, आइए आपको बता देते हैं हमारे आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। हमारे दिल्ली केंद्र से चर्चा का विषय है का प्रसारण किया जाएगा रात्रि 9:30 पर। हमारे लखनऊ केंद्र से कानून की बात आप सुनेंगे शाम 7:32 पर। नजीबाबाद केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के अंतर्गत आपको बता दें कार्यक्रम मुझे याद है जरा जरा, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। आकाशवाणी देहरादून में कार्यरत सनवर अली खान की आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़ी यादें इस कार्यक्रम में प्रसारित की जाएंगी। व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया आप सुनेंगे रात 10:00। सुगम संगीत के अंतर्गत कलाकार जोगिंदर कौर की आवाज में शब्द आप सुनेंगे शाम 7:45 पर। विविधा के अंतर्गत वार्ताकार डॉक्टर नवीन चंद्र लोहानी से वार्ता आप सुनेंगे शाम 6:45 पर। वार्ता का विषय होगा खड़ी बोली का क्रमिक विकास। कार्यक्रम कृषि जगत आप सुनेंगे शाम 6:05 पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रभानु से नरेश पाल सिंह की बातचीत प्रसारित की जाएगी। भेंटवार्ता का विषय रहेगा यूरिया एवं डीएपी के उपयोग को कम करने में जैविक एवं प्राकृतिक खेती के बायो इनपुट्स का महत्व। युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी प्रसारित किया जाएगा अब से कुछ ही देर में 5:15 पर। आइए अब आपको दे देते हैं कल यानी गुरुवार की प्रातःकालीन प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आप सुनेंगे सुबह 7:31 पर। काव्यधारा में निशा अग्रवाल से काव्य पाठ आप सुनेंगे सुबह 6:45 पर। स्वास्थ्य चर्चा में प्याज के गुणों के बारे में आप जानेंगे सुबह 7:05 पर। वंदना कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 6:05 पर और श्री रामचरित मानस गान का समय रहेगा सुबह 6:30। तो श्रोताओं, ये थी आकाशवाणी केंद्र नजीबाबाद से आज के शेष कार्यक्रम और गुरुवार की प्रातःकालीन प्रसारण सभा में कार्यक्रम प्रसारित होने वालों की संक्षिप्त जानकारी। मीडियम वेव 314.47 यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: उम्मीदों की उड़ान, सपनों की पहचान, युवाओं की आवाज और विचारों की नई जान।
1: और दोस्तों, इन्हीं रंगों और उमंगों के साथ स्वागत है आपका हमारे आज के युवाणी प्रोग्राम में।
0: मैं हूं आपकी दोस्त और आज की होस्ट सना।
1: और दोस्तों, सना के साथ मैं हूं आपकी वन ऑफ द होस्ट राशि त्यागी।
0: तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक ऐसे टॉपिक से जो हमें अपने गौरवशाली इतिहास से जोड़ता है।
1: दोस्तों, भारत का इतिहास कई महान शासकों और साम्राज्यों की कहानी से भरा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ शासकों ने अपनी साहस से पहचान बनाई भी है तो कुछ ने अपने प्रशासन और संस्कृति से इतिहास में अमिट छाप भी छोड़ दी है।
0: बिल्कुल, और जब भारत के इतिहास की बात होती है तो मुगल साम्राज्य का नाम जरूर

0: सामने आता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, तो इसी इतिहास से जुड़ा एक दिलचस्प सवाल लेकर हम हाजिर हैं हमारे पसंदीदा सेगमेंट और आपके पसंदीदा सेगमेंट बूझो तो जाने के साथ।
0: तो आज का सवाल है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की?
1: बिल्कुल दोस्तों, और इसका सही जवाब आपको देना है हमारे एफवी पेज आकाशवाणी नजीबाबाद के कमेंट सेक्शन में जाकर।
0: हमें रहेगा आपके ढेर सारे मैसेजेस का इंतजार। तब तक के लिए आइए आप सबको सुनवाते हैं आज की शाम का ये पहला गीत।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे आज हंस कर लोट पोट,
1: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
3: अरे तू कब आया गांव से?
4: अभी भैया कुछ ही देर पहले आया।
3: अच्छा, चल तो एक काम कर, जल्दी से ना अच्छे से तैयार हो जा, तुझे पार्टी में लेके जाऊंगा आज।
4: पार्टी में भैया? हाँ चलो ठीक है, रुक जाओ 10 मिनट चल रहे।
3: हाँ जल्दी तैयार होके आ जा।
4: लो भैया तैयार हो गया। ओ भैया कितनी बड़ी पार्टी हो है, कितना बढ़िया फंक्शन का अरेंजमेंट है नी।
3: चल खा ले जो तुझे खाना है, मैं जरा सलाद ले आऊं।
4: ए हाँ ले, तो सब्जी कटी रखी है अभी, ये गाजर मूली ले, हो गई पार्टी।
3: ओ पागल, सब्जी कटी भी नहीं रखी है, सलाद है।
2: जी हाँ मजा आ गया।
3: दोस्तों अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट कुछ खास है आज का।
4: और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही असली ग्रोथ है।
3: हम सभी को वो जगह बहुत पसंद होती है जहां हम सेफ महसूस करते हैं, जहां सब कुछ जाना पहचाना होता है, इसे ही कहते हैं कंफर्ट जोन।
4: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि अगर एक बीज मिट्टी को चीरकर बाहर ना निकले तो क्या वो बड़ा विशाल वृक्ष बन सकता है कभी?
3: बिल्कुल नहीं। उसी तरह हमारी असली काबिलियत भी तब सामने आती है जब हम नई चुनौतियों का सामना करते हैं।
4: बिल्कुल दोस्तों, जैसे नई चीजें सीखना, मंच पर बोलना या किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना या फिर दोस्तों अपने डर का सामना करना, ये सभी कदम हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकाल कर लेकर आते हैं।
3: फ्रेंड्स, शुरुआत में डर लगना लाजमी है, कई बार असफलता भी मिलती है, लेकिन हर एक्सपीरियंस हमें कुछ नया सिखाता है और पहले से बेहतर भी बनाता है।
4: बिल्कुल, याद रखिए दोस्तों, सफलता हमेशा उन्हीं लोगों को मिलती है जो जोखिम उठाने का साहस रखते हैं। अगर हम हमेशा आसान रास्ता चुनेंगे तो क्या हमें मंजिल मिलेगी? क्या हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे?
3: दोस्तों, जिंदगी में बदलाव तभी आता है जब हम अपने कंफर्ट जोन की सीमाओं को तोड़ने का साहस रखते हैं।
4: सो दोस्तों, आज का हमारा संदेश आपके लिए यही है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, उसको खत्म कीजिए और अपनी असली ग्रोथ पर आ जाइए।
3: इसी के साथ आइए आपको सुनवाते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे एहसास कर लोट पोट,
1: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा।
1: जी हाँ, मजा आ गया।
3: अबे यार, एक घंटा तो हो गया खड़े हुए, न जाने कब आ गई हो बस।
4: ए, ए बेटे इधर आइए। बेटे सुनिए, सही कह रहा, मुझे भी बड़ी देर हो गई। कितनी देर में आ गई बस?
3: पता ना अम्मा, कब तक आ गई।
4: अच्छा बेटे, जो ये तेरे साथ खड़ा सुथरा सा लड़का, यू क्या लगा है तेरा?
3: अरे अम्मा, बहुत दूर का रिश्ता है हमारा।
4: अच्छा दूर का। ए ए ए बेटे सुनिए, फिर भी क्या रिश्ता, तुम दोनों का कुछ रिश्तेदारी तो होगी ना?
3: अरे अम्मा, मेरा सगा भाई है यो।
5: ओ, देखे दूर का रिश्ता बता रहा सगे भैया को अपने।
3: क्योंकि अम्मा, मेरे और इसके बीच में 6 भाई और भी हैं।
1: जी हाँ, मजा आ गया।
6: तो दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं अपने कहानी की दुनिया में, जिसमें आप जानते हैं कि कहानी के उस पार सेगमेंट हमारा चल रहा है। तो हम शुरू कर रहे हैं हमारे इस सेगमेंट को, जिसमें आज हमारी कहानी है घर जमाई, जिसको लिखा है उस्मान। तो चलिए आज सुनते हैं इसका एपिसोड 3।
7: हेलो दोस्तों, मैं आपकी अपनी दोस्त उज्मा और आप सुन रहे हैं कहानी घर जमाई। दोस्तों, अब तक हमने सुना हरिधन को ससुराल में सम्मान और प्यार मिल रहा था, लेकिन समय के साथ सब कुछ कैसे बदल जाता है ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ससुराल में आकर हरिधन को माँ के प्यार जैसा सुख मिला था, जिसे वो अपनी सगी माँ का प्यार समझ रहा था। इस नए संसार में आकर हरिधन को एक बार फिर माँ के प्यार का आनंद मिला। उसकी सास ने ऋषि के वरदान की तरह उसके खाली जीवन को खुशियों से भर दिया। रेगिस्तान में फिर से हरियाली उगाई। सालियों की हंसी मजाक में, सास के स्नेह में, सालों की बातचीत में और पत्नी के प्रेम ने उसके जीवन की सारी इच्छाएं पूरी कर दी। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही घर समझो, तुम ही मेरी आंखों के तारे हो। वो उससे अपने लड़कों से भी ज्यादा प्यार करती और अपने लड़कों की बहुओं की शिकायत करती। हरिधन दिल ही दिल में समझता था, मेरी सास मुझे अपने बेटों से भी ज्यादा चाहती है, मुझे अपना बेटा मानती है। बाप के मरते ही हरिधन अपने घर वापस गया और अपने हिस्से की काफी सारी जमीन बेचकर रुपयों की थैली लेकर फिर आ गया और वो थैली अपनी सास के हवाले कर दी। अब उसका 2 गुना आदर सम्मान होने लगा। उसने अपनी बहुत सारी संपत्ति सास के चरणों में अर्पण कर दी। अब तक तो उसे कभी कभी घर की याद आ जाया करती थी, पर अब भूलकर भी उसे कभी घर की याद नहीं आती। मानो उसके जीवन का कोई भयानक सपना अब उसे नहीं आता हो, जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था। वो सबसे पहले उठता, सबसे ज्यादा काम करता। उसकी लगन और परिश्रम को देखकर गांव के लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। उसके ससुर का भाग्य बखानते और कहते, जिए ऐसा दामाद। अरे भाई देखो, दामाद हो तो ऐसा। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, उसका सम्मान घटता गया। पहले देवता था, फिर घर का आदमी, अंत में घर का नौकर हो गया। रोटियों में भी दिक्कत पड़ गई, अपमान होने लगा। अगर घर के लोग भूखे रहते, साथ में उसे भी भूखे रहना पड़ता, तो उसे जरा भी शिकायत नहीं होती। लेकिन अब जब वो देखता कि और लोग मूंछों पर ताव दे रहे हैं, केवल मैं ही हूं जिसे दूध से मक्खी बनाकर निकाल दिया गया है, तो उसके मन से एक लंबी और ठंडी आह निकल जाती। अभी उसकी उम्र 25 साल की ही थी, इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजरेगी? और तो और उसकी पत्नी ने भी आंखें फेर ली। ये उस विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था। अपनी पत्नी और सास के इस बर्ताव से हरिधन बिल्कुल टूट चुका था। दोस्तों, जिसे पहले देवता माना जाता था, वही अब घर का नौकर बन गया था। उसकी पत्नी ने भी मुंह फेर लिया था। क्या हरिधन अपने इस सब्र को यूं ही बरकरार रखेगा, या फिर उसके सब्र का बांध टूट जाएगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका DD फ्री डिश।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है हमारे अगले स्पेशल सेगमेंट यूथ कनेक्ट का, जिसमें हम आपसे बहुत सारे सब सेगमेंट्स जोड़कर बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं ये सेगमेंट।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी साथी सना।
3: और दोस्तों, मैं हूँ आपकी साथी राशि त्यागी। आप सुन रहे हैं युववाणी का सबसे मजेदार और इंटरेस्टिंग सेगमेंट यूथ कनेक्ट।
2: दोस्तों, आज हम स्टूडियो से बाहर निकल कर पहुँचे हैं सीधे युवाओं के बीच, जहाँ होंगी ढेर सारी मस्ती, हंसी और दिलचस्प सवाल जवाब।
3: तो तैयार हो जाइए हमारे चार शानदार सब सेगमेंट के लिए। समय की सैर हूबहू गलत है तो सही है, और दोस्तों अरे दीवानों मुझे पहचानो के लिए।
2: देखना ये है कि लोगों की याददाश्त कितनी तेज है और वो सही जवाबों को गलत बना पाते हैं या नहीं।
3: तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं सीधे लोगों के बीच और शुरू करते हैं मस्ती, मनोरंजन और ज्ञान से भरपूर यूथ कनेक्ट। प्यारे दोस्तों, मिल गई है हमें पहली साथी। तो आपका नाम?
4: कल्पना भारती।
3: हाँ जी कल्पना भारती, हमारा एक सब सेगमेंट समय की सैर। तो हम आपसे उसमें एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप हमें उसका जवाब देना चाहेंगी?
4: बिल्कुल।
3: तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आपको अपने पास्ट में जाना पड़े तो ऐसा कौन सी चीज है जिसको आप चेंज करना चाहेंगी?
4: अगर मैं अपने पास्ट में जाना चाहूँ तो मैं अपनी फ्रेंडशिप फिर से चाहूंगी, अगर वो सही है अपनी जगह तो।
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। आपकी दोस्ती कभी कभी बिना किसी मतलब के, बिना किसी बात के टूट जाती है। तो अगर हमारी कोई भी इनकी जो दोस्त है वो सुन रही है सेगमेंट को, तो वो चाहती है कि फिर से उनकी दोस्ती हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
4: थैंक यू।
2: दोस्तों, अपने सेगमेंट को ले चलते हैं दूसरे साथी की तरफ। तो अब हम शुरू करने वाले हैं अपना सब सेगमेंट गलत है तो सही है, जिसमें हमें मिल भी चुकी है हमारी एक साथी। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं उनसे उनका नाम। आपका नाम?
5: भूमिका शर्मा।
2: भूमिका शर्मा, तो जैसे कि हम आपको बता दें कि हमारा एक सेगमेंट है यूथ कनेक्ट, जिसके चार सब सेगमेंट होते हैं। तो हम आपसे आज जुड़े हैं अपने सब सेगमेंट गलत है तो सही है। तो हमारा आपसे पहला सवाल रहेगा, पानी का रंग क्या होता है?
5: पीला।
2: पीला। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है?
5: डॉग।
2: डॉग। स्कूल में पढ़ाने वाले कौन होते हैं?
5: जानवर।
2: वेरी नाइस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 2+2=4 है तो 2+2 कितना होगा?
5: 10।
2: 10। ट्रेन सड़क पर चलती है या पटरी पर?
5: सड़क पर।
2: हमें आपके साथ इस सेगमेंट में जुड़ के बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।
3: तो दोस्तों, हम अपने सब सेगमेंट अरे दीवानो मुझे पहचानो के अपने एक साथी से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं उनका नाम।
6: कनिष्का।
3: तो कनिष्का, हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसका आंसर देना पसंद करेंगी?
6: यस। Yes.
3: तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपकी ऐसी कौन सी बुराई है जो आप बताना चाहेंगी?
6: हम जल्दी लोगों पे विश्वास कर लेते हैं।
3: अच्छा, और आपकी ऐसी कौन सी अच्छाई है जो आपको बाकी सबसे अलग बनाती है?
6: हम कभी झूठ नहीं बोलते।
3: तो चलिए, हमें कनिष्का से बात करके बहुत अच्छा लगा। तो कनिष्का, थैंक यू सो मच।
6: थैंक यू।

0: तो दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में हमने आपसे किया था हमारे बूझो तो जाने सेगमेंट के अंतर्गत एक सवाल। सवाल था, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो दोस्तों, जिसका सही जवाब है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और सही जवाब देने वालों के नाम है सना
1: विठल सुरेशे, धीरज भाई रबाड़ी, राजकुमार डूडी, सदाशिव, सुरेश गगनेजा, गुरमीत सिंह, धर्मवीर कश्यप, मोहम्मद सईद अब्बासी, विजय सुलरकर, MD यासीन अंजान, M खलील कुरैशी, शाहरुख नूर अंसारी, शमसुल

0: कमर, अभिजीत, मिसबा शमसी, गजानन येले, मोहम्मद आमिर अंसारी, बीआई धाकड़, आसिफ चौधरी, राष्ट्रपाल गजभे, फागुराम यादव, शाहजी भोड़के, लाल मोहम्मद अंसारी, मोहम्मद रफीक पवार, कृष्णन धाबी, संजय डिग्निया, बबलेश पवार, नाज रेडियो, तुलसी मस्कीन, राम कुमार रेवाड़, देवशंकर तमूरिया, प्रवीण चौहान, महाराज कीर्तनपुरी, भगवत चौबे, दुर्गाराम साहू, शकील अहमद, नदीम बाकी, ताज अंसारी, राजेश वर्मा, गंगा सिंह रावत, सुदर्शन शाह, पुंजाजी, हीरामणि वर्मा, धर्मेंद्र छिपा, जॉन डी कैस्ट्रो और विष्णु टेलर।
1: और दोस्तों, आपका अपने जवाब के थ्रू हमारे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको लेकर चलते हैं हमारे प्रोग्राम के अंतिम गीत की ओर।

0: दोस्तों ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम, हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें खत के जरिए बता सकते हैं। खत के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन कोड 246763।
1: और दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो

0: सकते हैं। अपडेटेड रहने के लिए हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही हमारे पुराने प्ले, कहानियां, आने वाले प्रोग्राम आप यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही आज के कार्यक्रम में अपनी साथी राशि त्यागी
1: और सना परवीन
0: को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत। तो दोस्तों चलते चलते छोड़ चलते हैं आपको इस गीत के साथ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवावाणी मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी

0: मंजूरी दे दी है। इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथेंद्र बोस को सौंपा गया है। इसमें ऋतव्रत बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया अंकित कुमार की राम राम। और सुनाओ किसान भाइयों, कैसे हाल चाल है थारे? खैर देखो भैया, हाल चाल तुम्हारे किसान भाई के भैया बढ़िया ही होंगे, और भैया हमारे किसान भाइयों की जो खेती बाड़ी है वो भी भैया ठीक ठाक चल रही होगी, और भैया हमारे किसान भाइयों ने जो पशुपाल रखे हैं भैया उनका भी हमारे किसान भाई जो अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, उन्हें भैया समय से चारा समय से पानी दे रहे होंगे, और भैया देखो गर्मी अब जब बहुत हो रही है तो भैया उन्हें समय से अंदर और बाहर भी बांध रहे होंगे, क्योंकि देखो गर्मी अब जब धीरे धीरे बढ़ेगी तो ऐसे में अपने पशुओं का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, और भैया खासकर उन पशुओं का ध्यान रखना जरूरी है जो हमारे गाभिन पशु हैं। तो भैया हम तो यूं ही सलाह देंगे कि आप हमारे जो किसान भाई हैं अपने पशुओं को ताज़ा पानी पिलाओ, हरा चारा खिलाओ, और भैया साथ साथ अपने पशुओं को दाना बेसन भी देते रहें। मैं और एक बात और भैया, भैया हम साथ साथ जो अपने पशुशाला है ना उसकी साफ़ सफाई भी जरूर करते रहना है, और भैया एक बात और का और ध्यान रखना है, अब जब भैया बरसात का जो समय है ना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो भैया हम समय समय पर टीकाकरण भी करवाते रहना जिससे भैया हमारे जो पशु हैं वो स्वस्थ रहें। मैं और देखो भैया गर्मी बहुत हो रही हो तो भैया हम साथ साथ पशुओं का तो ध्यान रखना ही है, हम अपना भी ध्यान रखना है भैया, हमारे किसान भाई जो हों भैया जो ज़्यादा देर तक गर्मी में काम ना करो, क्योंकि भैया देखो गर्मी में अगर हमारे किसान भाई काम करेंगे तो भैया स्वास्थ्य जल्दी खराब हो जाएगा, तो भैया जल्दी सुबह सवेरे चल जाओ और भैया शाम को लेट जाओ जिससे भैया गर्मी कम लगो। और देखो भैया वैसे तो काम ही जो खेती बाड़ी का वो निमटता ही ना है, और भैया देखो जून का महीना भी चल गया है और इस महीना भैया हमारे किसान भाई को बहुत सारे काम होते हैं। एक तो भैया देखो हमारे किसान भाई को धान की नर्सरी लगानी है, और धान की जब नर्सरी लगानी है तो भैया उसके लिए खेत भी तैयार करने हैं, और भैया खेत तैयार करने के लिए भैया हमारे किसान भाइयों को 2-3 बार भैया उसकी अच्छे से जुताई करनी है, उसमें भैया फिर गोबर की खाद डालनी है, और भैया उसे अच्छे तरह से तैयार कर लेना है। और भैया जब भी हमारे किसान भाई नर्सरी लगाओ तो एक बात का ध्यान रखा भैया, जो हमारा धान का बीज है ना उसे पहले 24 घंटे के लिए भीग रख लो, भिगोने से भैया क्या होता है कि उसका जो अंकुरण है वो बहुत अच्छा होता है। और एक बात का और ध्यान रखा भैया, बीज उपचार करना ना भूलो, बीज उपचार भैया आज के समय में बहुत ज़रूरी है भैया, हमारे किसान भाई बीज उपचार करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारे जो बीज है खराब बीज वे बच जाएंगे, और जो अच्छे बीज हैं उनकी गुणवत्ता में अच्छी जो हमारी नर्सरी तैयार होगी, और जब भैया जो हमारी गुण जो बीज हमारा अच्छा होगा तो भैया हमारी उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी, गुणवत्ता भी अच्छी होगी, और भैया हमारा जो उपज है वो भी बढ़िया रहेगी। देखो भैया बात तो हम तुमसे आज बहुत सारी करेंगे भैया, और मनोरंजन भी थारा करवाएंगे, और भैया जानकारी भी अच्छी अच्छी देंगे, और भैया देखो जिससे हमारे किसान भाई को फ़ायदा मिलेगा, और भैया फ़ायदा एक और चीज़ से मिलेगा वो भैया आज के खास दिन से, भैया आज है विश्व साइकिल दिवस। किसान भाइयों विश्व साइकिल दिवस प्रत्येक वर्ष 3 जून को मनाया जाता है, भैया इस दिवस का जो उद्देश्य है वो ये साइकिल के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है भैया। देखो ये पर्यावरण के अनुकूल हो, सस्ता हो और स्वास्थ्यवर्धक परिवहन है, और भैया इसे अपनाने से हमारे किसान भाई भैया हमारे किसान भाई प्रेरित हों या जो भी हमारे श्रोता हों भैया किसान हों या भैया साइकिल अपनाओ जिससे भैया हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा, क्योंकि एक बात है भैया यो क्योंकि जो साइकिल है ना भैया वो एक सरल सुलभ और टिकाऊ परिवहन है, और भैया इससे आर्थिक बचत भी होती है, अगर हम बाइक चलाते हैं या स्कूटर चलाते हैं भैया उससे पेट्रोल डीजल का जो खर्चा वो भी बच जा उससे पड़ता है, और जब हम साइकिल चलाएंगे तो भैया जो पेट्रोल डीजल का खर्चा वो भी बच जाएगा, और भैया साथ साथ इससे प्रदूषण की कमी भी होगी, तो भैया साइकिल जो भैया वो प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। एक बात और भैया देखो जो यो किसान भाइयों जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में 2018 में 3 जून के दिन विश्व साइकिल दिवस के रूप में मान्यता मिली थी, इससे भैया ये होता कि जो साइकिल का उपयोग हो इससे हम हमारे किसान भाई करेंगे या हमारे जो स्रोत हैं उसका उपयोग करेंगे तो भैया ईंधन की बचत होगी, और भैया सड़क पर जो वाहनों की भीड़ वो कम होगी, और भैया पर्यावरण हो वो भी स्वच्छ रहेगा, और भैया इसका एक फायदा और भैया इससे जो कार्बन उत्सर्जन हो ना वो भी कम होगा, ये होता ही नहीं है साइकिल से, तो भैया स्वास्थ्य की दृष्टि से साइकिल चलाना एक अच्छा व्यायाम है, इससे भैया देखो हृदय तंत्रिका तंत्र जो स्वस्थ रहता है, और भैया साथ साथ जो हमारे किसान भाई हैं या हमारे श्रोता हैं भैया उनकी जो मांसपेशियां वो भी मजबूत होती हैं, और भैया शरीर का वजन भी इससे नियंत्रित रहता है, और भैया तनाव से भी मुक्ति मिलती है, और भैया साइकिल चलाने से एक तो भैया जो मधुमेह है डायबिटीज हो ब्लड प्रेशर हो मोटापा ये जो जैसी समस्या बढ़ रही है ना इनका भैया भी इनका जो खतरा वो भी भैया कम होता है, और जो हमारा शरीर है वो स्वस्थ बना रहता है। तो भैया आज भी भैया ग्रामीण क्षेत्रों में साइकिल भैया लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, हमारे किसान भाई विद्यार्थी और भैया मजदूर इसका दैनिक उपयोग करते हैं और भैया वो स्वस्थ भी रहते हैं। और देखो भैया ये कम खर्चीला है, साथ साथ भैया सभी वर्ग के लोग इसमें, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सब वर्ग के लोग इसे आराम से ले सकते हैं और भैया अपनी जो मजदूरी में भैया दैनिक आने जाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। और भैया देखो इससे एक तो स्वास्थ्य संबंधी जो हमारी बीमारियाँ वो कम होंगी और रोज़ हमारा व्यायाम होगा और हमारी जो जीवन शैली वो स्वस्थ रहेगी। तो भैया हम तो यही सलाह देंगे कि साइकिल अपनाएं, स्वच्छता बढ़ाएं, पर्यावरण बचाएं और भविष्य सजाएं। तो देखो भैया यूँ तो रही बातचीत साइकिल दिवस के अवसर पर, और देखो भैया अब जब कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं पर उसे ले लेते हैं छोटा सा विराम, सुन लेते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत

0: बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: देखो संदेश तुम्हारे किसान भाई ने सुन लिया। और भैया अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं भैया कुछ खेती किसानी की। देखो हमारे किसान भाई जो भैया खेती किसानी करते हैं और भैया खेती से लाभ भी लेते हैं, पर भैया कभी कभी जो हमारी फसलों को नुकसान हो जाता है और जो हम और भैया हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। और भैया आग बोने के लिए हमारे किसान भाई के पास आर्थिक तंगी पैदा होती है। और भैया उससे बचने के लिए भैया हमारे किसान भाई जो सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ ले सकते हैं, वो भैया किसान क्रेडिट कार्ड योजना। भैया किसान क्रेडिट कार्ड योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है भैया, जिसकी शुरुआत जो है किसानों के समय पर भैया आसान ऋण उपलब्ध कराना भैया इस उद्देश्य से की गई थी, जिससे भैया क्या है जो हमारे जो किसान भाई है इस योजना से जुड़ सकें और भैया खेती बाड़ी के लिए पशुपालन के लिए

अब हमारे किसान भाई देखो पशुपालन हो या डेयरी व्यवसाय के लिए भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब भैया ऋण कैसे मिलेगा उसके लिए भैया हमारे किसान भाई कृषि के जो क्रेडिट कार्ड है किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए हमारे किसान भाई के पास एक तो आधार कार्ड पहचान पत्र पैन कार्ड निवास प्रमाण पत्र बैंक खाता और भूमि से संबंधित दस्तावेज जैसे खसरा खतौनी हो गई भैया 12 साल हो गया ये सभी दस्तावेज होने चाहिए। और हमारे किसान भाई अपने ही निकटतम बैंक में जाकर भैया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो या सहकारी बैंक हो या भैया अन्य अधिकृत बैंक हो उसमें आवेदन कर सकते हैं। और भैया आवेदन की जो प्रक्रिया पूरी होने के बाद और या स्वीकृत होने के बाद भैया हमारे किसान भाई को किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया जाता है और जो उसकी राशि है वो उन्हें प्राप्त हो जाती है। भैया इस योजना के अंतर्गत जो हमारे किसान भाई हैं उन्हें कम ब्याज पर ऋण मिलता है और भैया समय पर ऋण चुकाने वालों को भैया हमारे जो किसान भाइयों को जो ऋण में जो ब्याज होता ना उसमें छूट मिलती है। इससे भैया हमारे किसान भाइयों की देखो आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है और भैया जो खेती की लागत है तो वो भी कम होती है। और भैया किसान क्रेडिट कार्ड का भैया एक महत्वपूर्ण लाभ यो भी है कि भैया इससे जो हमारे किसान भाई फसल बोते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्राकृतिक आपदा आती है उस हमारी फसल खराब हो जाती है तो या दुर्घटना हो जाती है हमारे किसान भाइयों के साथ तो भैया उसमें बीमा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। प्राकृतिक आपदा हो बाढ़ हो सूखा हो या अन्य कारणों से जो फसल नुकसान होता है तो उससे हमारे किसान भाई को राहत मिलती है। और भैया इससे कि जो कृषि कार्यों में जोखिम भी कम होता है तो किसान भाई किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए भैया ये जो हमारे किसान भाई के लिए वरदान साबित हुई है। इससे किसानों को समय पर भैया वित्तीय सहायता मिलती है और किसान की उत्पादन में वृद्धि होती है और भैया किसान भाई को आय बढ़ाने में मदद मिलती है। और भैया देखो वर्तमान समय में हम देखो अधिक से अधिक जो हमारे किसान भाई हैं इस योजना का लाभ उठाऊँ जिससे भैया हमारी जो खेती है वो आधुनिक खेती अपनाऊँ और भैया अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकूँ और भैया लाभ कमा सकूँ। और भैया देखो अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो भैया ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बना सकूँ किसानों का जीवन भैया खुशहाल हो सको और हमारा जब हमारे किसान भाइयों का जीवन खुशहाल होगा तो भैया हमारे किसान भाई भी प्रसन्न होंगे और भैया देखो हम भी प्रसन्न होंगे। उसके लिए भैया हम सुन लेते हैं पहले एक कुछ जरूरी संदेश।

0: AIR at 90.
1: कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
2: पोषक तत्व बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
1: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
2: खुशहाली का नया प्रयोग।
3: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।
4: देखो भैया, संदेश तुम्हारे किसान भाई ने सुन लिया। अब भैया देखो, अब चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं ये कुछ खेती किसानी की। देखो भैया, जो हमारे किसान भाई है भैया खेती करते हैं, और भैया आज के समय की मांग है प्राकृतिक खेती, क्योंकि भैया देखो हम अपने पर्यावरण को बचाना है, अपने स्वास्थ्य को बचाना है, तो भैया जैविक खेती की ओर हम बढ़ना पड़ेगा, उसमें लौटना पड़ेगा। इससे भैया एक तो क्या होता है कि एक तो लागत कम होती है और फायदा भी मिलता है, और भैया रासायनिक जो खाद हो उन पर निर्भरता भी कम होगी। तो भैया आज इसी के संबंध में एक जानकारी लेकर आए हैं, जिसका विषय है यूरिया एवं डीएपी के उपयोग को कम करने में जैविक एवं प्राकृतिक खेती के बायो इनपुट्स का महत्व। और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर चंद्रभानु, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ में। और आप

0: से बातचीत कर रहे हैं हमारे भैया नरेश पाल सिंह। तो सुनते हैं यो बातचीत।
1: किसान भाइयों, आजकल सरकार का ये प्रयास है कि हमारे किसान भाई ज्यादातर जो रसायन इस्तेमाल करते हैं या जो रासायनिक उर्वरक ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे यूरिया और डीएपी का प्रचलन हमारे किसान भाइयों में ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, जो कि इसके दूरगामी परिणाम ऐसे हैं कि वो हमारी मिट्टी की सेहत और पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जो कृषि उत्पाद हैं उसमें भी इनका असर आता है। तो सरकार का प्रयास है कि हमारे किसान भाई कृषि रसायन और जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका प्रयोग कम करके अपनी कृषि को जैविक उत्पादों से और जो जैविक उर्वरक हैं या जो भी जैविक अपघटक हैं उनके द्वारा अपनी पैदावार बढ़ाएं। तो आज हम इसी के संदर्भ में अपने किसान भाइयों को एक भेंटवार्ता सुनवा रहे हैं और आज इस भेंटवार्ता का विषय है यूरिया एवं डीएपी के उपयोग को कम करने में जैविक एवं प्राकृतिक खेती के बायो इनपुट्स का महत्व। और इस विषय पर आज हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर चंद्रभानु, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ से, और आज इनसे हम इस विषय पर बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर चंद्रभानु जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रभानु, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ की ओर से आप सभी किसान भाइयों का सादर नमस्कार, अभिनंदन और स्वागत करता हूं।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आज का हमारा विषय है यूरिया और डीएपी के उपयोग को कम करने में जैविक एवं प्राकृतिक खेती के बायो इनपुट्स का क्या महत्व है, तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि जैविक और प्राकृतिक खेती के बायो इनपुट्स हैं क्या।
2: बहुत बढ़िया प्रश्न आपका
1: जी।
2: तो जैसा कि आप जानते होंगे कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यानी कि पोषक तत्व प्रबंधन
1: जी,
2: और नासी जीव यानी कि कीड़े मकोड़े और बीमारियों, ये खेती में जो फसल उत्पादन है उसका अभिन्न अंग है
1: जी।
2: अगर इन्हीं के बारे में हमारे किसान भाइयों को सही से ट्यूनिंग कर दी जाए तो ये मान के चलिए कि उसका फसलोत्पादन लगभग लगभग सफल होता है
1: जी, जी, जी।
2: तो जहां तक बात करते हैं कि जैविक एवं प्राकृतिक खेती में उपयोग होने वाले बायो इनपुट्स हैं
1: जी, जी।
2: तो बात करते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की। तो आपको पता होगा कि जैविक खेती करें या प्राकृतिक खेती करें उसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट सोर्स हम यूज करते हैं, जैसे कि गोबर की खाद हो गई, केंचुआ खाद हो गई, खलियां हो गई, कंपोस्ट खाद हो गई और कई तरह के खादें हो गई। ये पोषक तत्व, जैसे कि आपको पता है कि 17 तरह के पोषक तत्व तो हमारी फसलों को चाहिए
1: जी हाँ,
2: उनके सफल उत्पादन के लिए
1: जी जी।
2: तो ये तो केवल फसल को प्रोवाइड करते हैं
1: जी।
2: इसके बाद एक तरह के बायो इनपुट्स होते हैं जो कि मृदा में इनकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं
1: जी जी। यानी जो ये हमारे 17 पोषक तत्व हैं इनकी उपलब्धता किस प्रकार हमारी फसलों को ज्यादा बढ़े। तो
2: बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो ये बायो इनपुट्स हैं, उनके मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आपने सुना होगा कि बहुत सारी कंपनियां और हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम से संबंधित कृषि विश्वविद्यालय हैं
1: जी,
2: ये सब कई तरह के इनपुट्स बनाते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए फास्फोरस सालुलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटास सालुलाइजिंग बैक्टीरिया, जिंक मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। तो ये बायो इनपुट्स क्या करते हैं, इनके अंदर उपस्थित लाभकारी जो बैक्टीरिया या दूसरे जीव जंतु होते हैं जो हमारे पोषक तत्व, उदाहरण देना चाहूंगा कि फास्फोरस और पोटास मुख्य रूप से जिसके लिए हम फास्फोरस के लिए डीएपी का प्रयोग अधिकतम करते हैं
1: हाँ।
2: ये जब मिट्टी में प्रयोग करते हैं तो इसका बहुत सारा भाग हमारे रूट जोन में फिक्स हो जाता है और हमारी फसलों को आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसके लिए जब हम फास्फेट सालुलाइजिंग बैक्टीरिया जो कि अलग अलग संस्थानों द्वारा अलग अलग नामों से बेचा या दिया जाता है, इनका जब प्रयोग करते हैं तो हमारे मिट्टी में उपलब्ध फास्फोरस आसानी से हमारी फसलों के लिए उपलब्ध हो पाता है, और जब ये उपलब्ध होता है तो हमें अलग से डीएपी की मात्रा कम से कम डालनी पड़ती है
1: जी, जी।
2: उसी तरह से उदाहरण देना चाहूंगा कि जो पोटास है इसका भी बहुत सारा भाग मिट्टी में फिक्स हो जाता है और हमारी फसलों को बहुत आसानी से नहीं उपलब्ध होता है, तो इसके लिए हम पोटास सालुलाइजिंग बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं। अलग अलग कंपनियां या अलग अलग स्थान अलग अलग नामों से बेचते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बायो इनपुट्स ऐसे भी हैं जो कि हमारे किसान भाई ये जरूरी नहीं बाजार से ही खरीदें, उनमें उदाहरण देना चाहूंगा प्राकृतिक खेती में उपयोग होने वाले जीवामृत, घन जीवामृत, फर्मेंटेड बटर मिल्क और कई ऐसे उत्पाद हैं, पंचगव्य हो गया, किसान भाई अपने घर पर ही बनाकर सस्ते विकल्प के रूप में अपना।

0: सकते हैं।
1: जी, तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात बताई कि फास्फोरस की घुलनशीलता और पोटास की घुलनशीलता किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा हो, जिस जो हमारे पौधे अवशोषित करके अच्छी उत्पादन दें। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये बायो इनपुट्स जैसे आपने बताया जो फास्फोरस की घुलनशीलता को बढ़ाते हैं, पोटास की घुलनशीलता को बढ़ाते हैं, कि ये लिक्विड फॉर्म में या द्रव रूप में आते हैं या किसी पाउडर रूप में आते हैं या दानेदार रूप में आते हैं, और इनका इस्तेमाल करने का तरीका वो क्या होता है ताकि हमारी फसलें इसका उपयोग कर सकें, इसका लाभ उठा सकें।
2: बहुत अच्छा प्रश्न आपका
1: जी।
2: जैसे कि आपने बात करी फास्फोरस सालबुलाइजिंग बैक्टीरिया,
1: जी जी,
2: तो बहुत सारी कंपनियां अलग अलग नामों से प्रोडक्ट बनाती है। हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक संस्थान है NBIM जो उत्तर प्रदेश के मऊ में स्थित है, ये बायोफास्ट नाम से एक फार्मुलेशन बनाते हैं
1: जी।
2: और ये लिक्विड में भी आता है और बहुत सारी कंपनियां पाउडर रूप में भी बनाती हैं
1: जी जी।
2: तो इनका जो जनरल रिकमेंडेशन है, वैसे तो अलग अलग होता है लेकिन मोटा मोटा रिकमेंडेशन है कि 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर, यानी कि 1 किलो प्रति एकड़ की दर से जब हम फसल की बुआई के पूर्व खेत की तैयारी कर रहे होते हैं
1: जी,
2: तो उसी दौरान हम मिट्टी में इनका छिड़काव करके या किसी गोबर की खाद या अन्य जो हमारी जैविक खादें खेत में प्रयोग करते हैं उनमें मिला के खेत में प्रयोग कर देते हैं, तो ये मिट्टी में अपना मल्टीप्लीकेशन के पहले से हमारे बैक्टीरिया इस्टेब्लिश हो जाते हैं। जो खाद हमने खेत में डाली हैं उसमें उपस्थित या मृदा में पहले से उपस्थित फास्फोरस की जो घुलनशीलता को बढ़ाते हैं और उसकी अवेलेबिलिटी हमारे फसलों के लिए इंश्योर करते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात बताई आपने। और किसी किसान ने ऐसा यदि फसल बुआई से पहले नहीं किया या उसको नहीं पता, उसके खेत में अब फसल तैयार है 1 महीने की, जैसे इस क्षेत्र में हमारे किसान भाई अधिकतर गन्ने की बुआई करते हैं, तो गन्ना इस समय लगभग हमारे किसान भाइयों का 1 से 1.5 महीने का हो गया है, तो इस समय भी क्या इन फास्फोरस घुलनशील जो ये कारक हैं, जैविक कारक, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी पानी वगैरह के साथ मिला के?
2: हाँ बिल्कुल कर सकते हैं।
1: अच्छा।
2: इसके लिए ये रिकमेंडेशन है कि अगर बाजार से खरीदा हुआ फास्फोरस सालबुलाइजिंग बैक्टीरिया हमारे किसान भाई यूज करते हैं
1: जी,
2: तो जो भी हम अगला सिंचाई का पानी देने वाले हैं
1: जी जी,
2: उस सिंचाई के पानी में अगर लिक्विड फार्मुलेशन है तो टपक विधि से नाली जहां से उनका आउटलेट शुरू होता है पानी का वहां पर रख देंगे, धीरे धीरे पानी के माध्यम से पूरे खेत में फैल जाएगा। अन्यथा दूसरा तरीका है कि स्प्रे मिट्टी में करने के बाद खेत में पानी लगा सकते हैं
1: जी, दो तरीके
2: तो वो हमारे खेत में मल्टीप्लाई होंगे और पहले से डाई के माध्यम से, सुपर फास्फेट के माध्यम से या पहले से मृदा में उपस्थित जो फास्फोरस है फिक्स हो गया है उसकी अवेलेबिलिटी ये बढ़ाते हैं। तो ये किसी भी समय प्रयोग कर सकते हैं। तो शुरुआत में देने का ये फायदा होता है कि पहले से अवेलेबल फास्फोरस ज्यादा होगा
1: तो पौधे
2: वो
1: अच्छा
2: पौधों की
1: करेंगे।
2: जो इनिशियल स्टेज है शुरुआती अवस्था वहीं से बढ़िया ग्रोथ और जर्मिनेशन मिलेगा।
1: जी जी जी, तो बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब बताई और ये जो है बहुत फायदे का सौदा हमारे किसान भाइयों के लिए है। तो ये बायो इनपुट्स किसान भाइयों को कहाँ से मिलेंगे और इन्हें खरीदने में क्या क्या सावधानी हमारे किसान भाई बरते हैं डॉक्टर साहब?
2: बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। तो किसान भाइयों को अगर किसी भी जगह पे हैं तो उन्हें सबसे पहले देखना चाहिए कि ट्रस्टेड ब्रांड अगर वो बाजार से खरीद रहे हैं तो ट्रस्टेड ब्रांड कौन कौन से हैं जो कि क्वालिटी के प्रोडक्ट देते हैं, या कृषि विभाग अगर उनसे ले रहे हैं तो उनमें भी देखना चाहिए कि अच्छे क्वालिटी का हो और 3-4 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कई प्रोडक्ट पे ये देखा जाता है बायो फॉर्मुलेशन पे कि उसकी एक्सपायरी डेट या उसकी जो सेल्फ लाइफ 1 साल तो लिखी होती है पर 1 साल तक वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। शुरुआती 3-4 महीने में अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी बायो इनपुट्स वो बाजार से खरीदते हैं उन्हें वो 3-4 महीने के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग डेट से प्रयोग कर लें।
1: अच्छा।
2: या अगर अपने घर पे बना रहे हैं, चाहे जीवामृत हो, घन जीवामृत हो, फर्मेंटेड बटर मिल्क हो या पंचगव्य है, तो इनका रिकमेंडेशन 5-6 दिन से लेके, जैसे जीवामृत है 5-6 दिन के अंदर में प्रयोग कर लें, घन जीवामृत है 2-1 महीने के अंदर में प्रयोग कर लें, पंचगव्य है 1-2 महीने तक उसका प्रयोग कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का बायो इनपुट्स है, उसके रिकमेंडेशन के हिसाब से उसका प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात हमारे किसान भाइयों को बताई कि ये जो हमारे उर्वरकों की घुलनशीलता बढ़ाने वाले जैविक कारक हैं तो इनको हमारे किसान भाई दूसरे विकल्प के रूप में अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं। और घर पे तैयार करने के लिए किसान भाई जो है क्या क्या काम कर सकते हैं?
2: बहुत अच्छा। तो चूंकि ये बिल्कुल हम नहीं कहेंगे कि हमारे किसान भाई बाजार से ही बायो इनपुट्स को खरीदें, अगर उन्हें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना है, फसलों की जो पोषक तत्व है उनकी मिट्टी में उनकी उपलब्धता बढ़ाना है
1: जी,
2: तो जीवामृत एक सबसे बेहतरीन क्वालिटी का जो है

0: बायो इनपुट्स है जिसको किसान भाई अपने घर पर ही बना सकते हैं। तो इसके लिए 200 लीटर का ड्रम है तो उसमें आधा किलो गुड़ आधा किलो बेसन लगेगा। 10 लीटर गाय का या जो भी लाइव स्टॉक है उसका मूत्र ले सकते हैं।
1: गाय के अलावा जो हमारे भैंस है या भेड़ बकरी है तो उनका मूत्र भी ले सकते हैं।
0: हाँ, ले सकते हैं। ऐसा है जहाँ पर जिस तरह के पशुपालन हमारे पास होंगे, क्योंकि विकल्प हमारे पास वही है।
1: जी जी।
0: जहाँ पर हमारे किसान भाई गाय नहीं पाल, जहाँ गाय पालते हैं वहाँ तो बहुत अच्छा, उसमें देसी गाय हो और अच्छा है। जहाँ पर गाय नहीं है तो दूसरे पशु है तो उनका भी प्रयोग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो 10 किलो गोमूत्र और 10 किलो गोबर।
1: जी।
0: और इसके अलावा हमारे खेत के जिस कोने पे सबसे अच्छी फसल हो, या किसी पीपल या बट के वृक्ष के नीचे की मिट्टी जिसमें चिड़ियों की बीट के बाद अच्छा माइक्रोबियल बेनिफिशियल माइक्रोब ज्यादा होते हैं,
1: जी
0: वो मिट्टी 2 मुट्ठा उसमें डाल देंगे ड्रम में, और पूरे ड्रम को पानी से भर देंगे और सुबह शाम 5-5 मिनट लकड़ी के डंडे से उसे चलाते हैं और 4-5 दिन में वो पूरा जीवामृत का प्रिपरेशन तैयार हो जाता है। इसको किसान भाई, शुरू में रिकमेंडेशन था कि 500 लीटर पर हेक्टेयर, लेकिन आज की डेट में इसका रिकमेंडेशन बढ़ा दिया गया है तो 1500 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाई खेत में प्रयोग कर सकते हैं। अगर शुरुआती अवस्था में कर देंगे तो और अच्छा होगा। लैंड प्रिपरेशन, जब भूमि की तैयारी कर रहे होते हैं बुआई के पहले, तो उस समय कर दें। फिर हर महीने हर 15-20 दिन के इंटरवल पे एक स्प्रे के रूप में कर दें या सिंचाई के पानी के साथ कर दें। तो सिंचाई के पानी के साथ करेंगे और उसके बाद फिर स्प्रे करेंगे तो डबल फायदा होगा। इससे कई कीड़े मकोड़े भी दूर भागते हैं, पौधों की इम्यूनिटी में भी बढ़ाने में भी इसका लाभ होता है, और जो पोषक तत्वों की घुलनशीलता है उसको तो बढ़ाता ही बढ़ाता है।
1: तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे हमने इसको बनाने में गोबर का इस्तेमाल किया है, तो स्प्रे मशीन के जो हमारा फुहारा है उसको ये बंद नहीं कर देगा?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। एक्चुअली जब इसका
1: इसको
0: प्रयोग
1: छान
0: करते
1: के इस्तेमाल करते
0: हैं,
1: हैं।
0: हाँ, तो इसको क्या करेंगे, जो हमारा तरीका है छिड़कने का,
1: जी
0: तो स्प्रेयर में हम 10% का घोल बनाते हैं, यानी कि 10 लीटर पानी में लगभग 1 लीटर जीवामृत लेते हैं
1: जी
0: और उसको महीन छेद वाले कपड़े से छानकर ही प्रयोग करते हैं।
1: जी जी
0: तो और एक और भी खासियत है कि जीवामृत के साथ केवल जीवामृत नहीं, ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास या अन्य तरह के बायो कंट्रोल एजेंट जो कि फसलों में बीमारियों के नियंत्रण के लिए प्रयोग होते हैं, या गोमूत्र हो गया, जैसे गोमूत्र एक अच्छा सोर्स है पोटास का और कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, इसको भी अगर 1 लीटर पर 10 लीटर वाली टंकी में मिलाकर साथ में स्प्रे कर दें तो फसलों को डबल फायदा होता है।
1: जी
0: एक तरह से ऊपर से पोटास और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी मिल जाते हैं और उधर जो जीवामृत प्रयोग करते हैं वो फसलों की जो उपलब्धता है मिट्टी वो भी बढ़ाता है।
1: जी
0: तो इस तरह से ट्यून करके अगर किसान भाई इसका प्रयोग करते हैं हमारे खेती में तो बहुत सारा लाभ होगा और यूरिया और डाई के प्रयोग को हम बहुत अधिक मात्रा में कम कर सकते हैं।
1: जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी आपने ये बात बताई कि किसान भाई जो है अपने घर पर भी वाटर में इस्तेमाल करने के लिए अपने घर पे ये तैयार कर सकते हैं। जो जैविक कारक आपने बताया, यदि आपको बाजार में नहीं मिलते हैं तो अपने घर पे भी आप जीवामृत और गोमूत्र के द्वारा आप ये चीज बना सकते हैं। तो अंत में डॉक्टर साहब, मैं यही कहूंगा कि यूरिया और डीएपी के प्रयोग को कम करने के लिए बायो इनपुट्स के माध्यम से किसानों हेतु क्या आप अंत में जरूरी सलाह देंगे?
0: बहुत सही। जैसा कि आपको पता है कि आजकल पूरे विश्व स्तर पर बदली हुई भू राजनीतिक परिस्थितियों के कारण यूरिया और डाई का संकट एक तरह से कुछ हद तक आया हुआ है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे किसान भाई जो हमारी पुरानी परंपरा है उसके अनुसार इससे निपट सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा कि अपने पशुपालन वाले कंपोनेंट को बढ़ाएं, किसान भाई अच्छे वैरायटी की देसी ब्रीड रखें और उनके माध्यम से जो भी गोबर और पेशाब पैदा होता है उसका एक एक टुकड़ा हमें यूज कर लेना, एक भी बूंद पशुओं का पेशाब बर्बाद नहीं होने देना है। तो वो चूंकि अच्छा सोर्स है नाइट्रोजन पोटास और माइक्रो न्यूट्रिएंट का, और गोबर की खाद, केंचुआ खाद, अन्य खादों के माध्यम से हम यूरिया और डाई को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। इसके उपरांत जब हम बायो इनपुट्स जैसे कि जीवामृत, घन जीवामृत और कई तरह के फार्मुलेशन जब डालेंगे तो पोषक तत्वों की उपलब्धता और मात्रा दोनों जो कि यूरिया डाई के माध्यम से हम देते हैं काफी हद तक कम कर सकते हैं, और हमारे फसलों का स्वास्थ्य, हमारे पर्यावरण का स्वास्थ्य, हमारे मिट्टी का स्वास्थ्य और हमारे जो आम जनता है जो कि एग्रीकल्चर के जैविक खेती के उपरांत प्रोडक्ट को यूज करते हैं उन सबका स्वास्थ्य एक तरह से वन हेल्थ कंसेप्ट बहुत अच्छा स्ट्रांग होगा और सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा।
1: बिल्कुल, क्योंकि इस प्रकार से जो फसलें हमें अन्न देती हैं, दालें देती हैं, सब्जी यानी कि जो भी कृषि उत्पाद होंगे उनकी गुणवत्ता अच्छी रहेगी।
0: अच्छी हो।
1: तो डॉक्टर चंद्रभानु जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी यूरिया और डीएपी के विकल्प के रूप में, मिट्टी में जो घुलनशीलता है इनकी।

0: को बढ़ाने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद। अभी हमारे किसान भाई ने सुनिए भेंटवार्ता, जिसका विषय था यूरिया एवं डीएपी के उपयोग को कम करने में जैविक एवं प्राकृतिक खेती के बायो इनपुट्स का महत्व, और जानकारी दे थे डॉक्टर चंद्रभानु, और आपसे बातचीत करते हैं हमारे भैया नरेश पाल सिंह। देखो कितनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाई को डॉक्टर साहब ने दी कि वो जैविक खेती की ओर लौटें, पोषक तत्वों को बचाएं, और भैया जैविक विधि से खेती करें, गोबर की खाद डाल लें, भैया गौमूत्र को अपने इकट्ठा करें और भैया अपने खेतों में इस्तेमाल करें, तो भैया उससे क्या होगा कि एक तो हमारे खेत की लागत कम होगी और भैया हमारी जो मिट्टी की सुधार संरचना वो सुधार होगी, एक भैया मिट्टी में लाभकारी जो सूक्ष्म जीव उनकी संख्या बढ़ेगी, रासायनिक जो उर्वरक हैं और कीटनाशक हैं उनकी जो निर्भरता कम होगी, पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा भैया, फसलों की गुणवत्ता और भैया जो क्वालिटी है उसकी बहुत अच्छी रहेगी, और भैया उत्पादन भैया जो क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ेगी, और मानव का जो स्वास्थ्य है वो भी सही रहेगा, जैव विविधता का संरक्षण भी होगा, और भैया जो हमारी फसल में रोग और कीट लगते हैं उनसे भी बचाव होगा, और जो हमारी खेती होगी भैया वो टिकाऊ होगी, और किसानों की जो आय है वो दुगनी होगी, और भैया जो आने वाले समय में हम जो भूमि छोड़ कर जाएंगे वो भी भैया हमारी बंजर होने से बच जाएगी, तो भैया कुल मिलाकर बात ये हो कि लाभ ही लाभ होगा, और भैया जब लाभ हमारे किसान भाइयों को होगा तो भैया हमारे किसान भाइयों का मन करेगा मनोरंजन का, तो भैया ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुन लेते हैं ये प्यारी सी रागनी।

भेदभाव बेटी से करके। अभी हमारे किसान भाइयों ने भीम सिंह की आवाज़ में भैया ये प्यारी सी रागनी सुनी, और भैया देखो हमारे किसान भाइयों का मनोरंजन भी हो गया होगा। और भैया देखो अब समय आ गया है मौसम की चिट्ठी का, और भैया ये मौसम की चिट्ठी हमें प्राप्त हुई है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ से। और भैया इस चिट्ठी के अनुसार आने वाले एक दो दिन में भैया तेज़ हवा के साथ भैया कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है, तो हमारे किसान भैया अपने कृषि कार्य मौसम को देख करते रहें। और देखो भैया अगर बात करो घड़ी की, तो भैया घड़ी भी भैया बिल्कुल आप सब बातचीत करने की इजाज़त नहीं दे रही है, तो भैया चलते चलते हैं हम अपने किसान भाई को अपना पता ज़रूर बता दें, क्योंकि भैया हमारे किसान भाई को हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, कार्यक्रम में क्या सुधार चाहते हैं, तो भैया इसके लिए नोट करें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद। हमारा पिन कोड है 2467633 और हमारा व्हाट्सअप नंबर है 94।

57 08 82। किसान भाइयों, तो इस पते पर हमें आपकी चिट्ठी पत्री का रहेगा इंतजार। और अब कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भैया अंकित कुमार को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों, राम राम।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:45 हुए हैं। विविधा के अंतर्गत प्रस्तुत है डॉक्टर नवीन चंद्र लोहानी से वार्ता। वार्ता का विषय है खड़ी बोली का क्रमिक विकास।
1: खड़ी बोली हिंदी वर्तमान में विश्व संपर्क की भाषा है, जिसमें हम भारतीय भाषा एवं संस्कृति के विकास क्रम को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। इस भाषा के माध्यम से भारत की संसद में और अनेक राज्यों की विधानसभाओं में ही काम नहीं हो रहा है, अपितु यह हिंदी टेलीविजन, फिल्मों, अखबारों की एक ऐसी भाषा है जो वैश्विक स्तर पर भारत को भारतीय संस्कृति और ज्ञान विज्ञान से जोड़ती है। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौर सैनी के उत्तरी रूप से हुआ है। इसका मूल क्षेत्र मुजफ्फरनगर, बागपत, सामली, सहारनपुर, मेरठ, देहरादून का मैदानी भाग, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, दिल्ली आदि का है। अब हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में विश्व भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी है। यद्यपि उसके स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विविध रूप हैं, वह आज भारत की राजभाषा और साहित्यिक भाषा भी है। खड़ी बोली हिंदी में प्रारंभिक रचनाएं ब्रजभाषा और अवधी के साथ ही होने लग गई थी। साहित्यिक भाषा के रूप में इसका विकास बाद में हुआ। यद्यपि हिंदी की अन्य बोलियों के साथ साथ खड़ी बोली का विकास भी होता रहा, परंतु उसका विकास भारतेंदु युग से स्वतंत्रता आंदोलन के जोड़ने के साथ तीव्रता से हुआ। लेकिन हिंदी में भी खड़ी बोली का आरंभिक रूप दिखाई देता है। 13वीं शताब्दी में उत्तर भारत से बीजापुर तथा गोलकुंडा आदि क्षेत्रों में गए व्यापारियों तथा कर्मचारियों के साथ यह बोली दिल्ली से पहुंची। इस बोली में मराठी, कन्नड़ तथा तेलुगु का प्रभाव भी दिखाई देता है। दक्षिणी हिंदी के रचनाकारों में वली दक्षिणी महत्वपूर्ण है, जिनकी भाषा में खड़ी बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। उन्होंने लिखा है, जिसे इश्क का तीर कारी लगे, उसे जिंदगी क्यों न भारी लगे, वली को कहे तू अगर एक वचन, रकीबों के दिल में कटारी लगे। दक्षिणी हिंदी के अन्य रचनाकारों में भी खड़ी बोली हिंदी का प्रभाव दिखाई देता है, जिसमें ख्वाजा बंदा नवाज,

के क्रम में परखा। उदाहरण है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। यह कविता अमीर खुसरो के समय की खड़ी बोली के स्वरूप को स्पष्ट करती है। खड़ी बोली आधुनिक प्रवृत्तियों के विकास में सिद्ध और नाथ साहित्य का भी विशेष महत्व है। खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में अपनाने का श्रेय सूफी संत शेख फरीद को भी दिया जाता है। संत साहित्य में भी खड़ी बोली का विकास हुआ। संतों की रचनाओं में खड़ी बोली के उदाहरण दिखाई देते हैं, जैसे जो बिछुड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमार यार है हम में हमन को इंतजारी क्या। इसी प्रकार रेतकालीन कवियों में भी यारी साहब, पलटू साहब तथा दरिया साहब भी संत कवियों की भाषा में ही लिखते दिखाई देते हैं, जो खड़ी बोली के निकट है। मलुकदास भी एक महत्वपूर्ण रचनाकार है, उनके साहित्य में भी खड़ी बोली के विकास का प्रभाव स्पष्ट है। उदाहरण, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अब्दुल रहीम खानखाना की रचना बदनाष्टक में भी खड़ी बोली का प्रयोग है। वह ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली है, जिसमें रहीम की नई भाषा दिखती है। यह भाषा खड़ी बोली का तत्कालीन स्वरूप माना जा सकता है, जिसमें स्थानीय बोलियों के साथ साथ खड़ी बोली के प्रयोग स्पष्ट हैं। जैसे कि उन्होंने कहा, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ये कुछ उदाहरण हैं जिनसे हम आधुनिक काल तक आते आते हिंदी के विकास क्रम को कविता के माध्यम से देखते हैं। लेकिन मुख्य रूप में 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ, उसने ब्रजभाषा का स्थान ले लिया। इस समय भारत अंग्रेजों से स्वतंत्रता संग्राम में जूझ रहा था। अंग्रेजी तथा अरबी फारसी का प्रचलन था। अंग्रेजी के साथ साथ स्थानीय बोलियों में अरबी फारसी को जोड़कर व्यावहारिक हिंदी बनी। इस कार्य को आगे बढ़ाने में ईसाई धर्म प्रचारकों का भी योगदान है। उन्होंने देवनागरी लिपि में धर्म प्रचार के लिए सामग्री बनाई और उससे आम लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। स्वतंत्रता आंदोलन के निरंतर व्यापक होने के साथ साथ आर्य समाज, ब्रह्म समाज, हिंदी धर्म सभा, थियोसोफिकल सोसाइटी ने भी अपनी प्रचार सामग्री हिंदी खड़ी बोली में प्रकाशित की। इससे खड़ी बोली को विभिन्न धार्मिक सामाजिक संस्थाओं का सहयोग और समर्थन मिला। प्रेस की स्थापना होने के साथ ही खड़ी बोली का प्रचार भी बढ़ता गया और हिंदी समर्थकों, विशेषकर महर्षि दयानंद सरस्वती का इस समय हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। सदल मिश्र तथा लल्लूलाल द्वारा भी फोर्ट विलियम कॉलेज में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया। इसे वे हिंदुस्तानी कहते थे। मुंशी सदासुखलाल नियाज ने खड़ी बोली का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया। इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी इसी भाषा में प्रयुक्त हुई। सिंहासन 32, बेताल 25, शकुंतला, प्रेम सागर जैसी पुस्तकों में खड़ी बोली के साथ साथ ब्रजभाषा और उर्दू का भी भरपूर प्रयोग हुआ है। नासिकेत उपाख्यान में सदर मिश्र ने खड़ी बोली में संस्कृत शब्दावली को प्रयुक्त किया है। इसी क्रम में श्रद्धाराम फुल्लौरी का उपन्यास भाग्यवती भी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही चंद्रकांता संतति भी प्रकाशित हुई, जो देवकी नंदन खत्री की लोकप्रिय रचनाएं हैं। इसमें खड़ी बोली गद्य का विकसित रूप दिखाई देता है। प्रारंभिक रूप में खड़ी बोली का जो रूप दिखाई देता है, उसका क्रमशः विकास आगे होता दिखाई देता है, जिसमें 1858 ईस्वी में अयोध्या में जन्मे अवधवासी लाला सीताराम बी ए भूप की कविता हिंदी के आधुनिक काल में अवधि बोली क्षेत्र तक नए रूप को प्रदर्शित करती है। वैरगिया नाला जुलम जोर, जहां रहत साधु के भेष चोर, जब जब तबला बाजे धीन धीन, तब एक एक पै तीन तीन। हिंदी गद्य लेखन में यह परंपरा यद्यपि भारतेंदु हरिश्चंद के कवि वचन सुधा पत्र से आगे बढ़ती है, फोर्ट विलियम कॉलेज के साथ साथ भारतेंदु के प्रयासों ने खड़ी बोली को कविता और गद्य दोनों में स्थापित कराया। अपनी भाषा को उन्नति के लिए सब प्रकार की उन्नति का मूल मानने वाले भारतेंदु की यह कविता बहुत चर्चित रही है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। अंग्रेजी पढ़ के जदब सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। अंग्रेजी के प्रति उनकी इस धारणा ने अंग्रेजी को वर्चस्ववादी एकाधिकार को चुनौती मिलती है और स्थानीय भाषा में अंग्रेजी के समानांतर खड़ी बोली हिंदी के महत्व को स्थापित करने वाले विचार आते हैं। भारतेंदु ने अंग्रेजी भाषा के गौरव के स्थान पर स्थानीय भाषा खड़ी बोली के गौरव को स्थापित किया, इसलिए अंग्रेजी को वो झूठी कहकर प्रचारित करते हैं। सब गुरुजन को बुरा बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे, भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेजी। हिंदी के विकास में पत्र पत्रिकाओं का योगदान भी महत्वपूर्ण है। 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित उदन मार्दन तथा 1885 ईस्वी में काशी से प्रकाशित बनारस अखबार महत्वपूर्ण है। शिवप्रसाद सितारे हिंद द्वारा प्रकाशित बनारस अखबार की लिपि देवनागरी तथा भाषा उर्दू मिश्रित हिंदी थी। प्रतापगढ़ के कालाकाकर से प्रकाशित हिंदुस्तान अखबार की भी खड़ी बोली हिंदी के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका है। 19वीं सदी में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ साथ हिंदी के विकास को नई गति मिलती है। खड़ी बोली हिंदी को साहित्यिक प्रतिष्ठा दिलाने में इस पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान है। आजादी के आंदोलन के बढ़ने के साथ ही खड़ी बोली हिंदी व्यापक प्रसार का क्षेत्र विकसित हुआ। भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों से लेकर बांग्ला क्षेत्रों तक खड़ी बोली हिंदी की स्वीकृति आंदोलन की भाषा के रूप में होती है। प्रारंभिक खड़ी बोली में उर्दू, अंग्रेजी, देशज, संस्कृत बोलियों और भाषाओं का प्रचार है।
इससे उसकी स्वीकृति अनेक क्षेत्रों, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल, ढाका

0: का लाहौर तक दिखाई देती है। तेलुगु, तमिल, मराठी, बंगला के साथ साथ हिंदी खड़ी बोली साहित्यिक रूप ग्रहण करती गई। दूसरी ओर आजादी के आंदोलन की भाषा बनने के कारण लोकप्रियता में वह भारत की प्रमुख भाषा के रूप में पल्लवित पुष्पित हुई। आजादी के आंदोलन की भाषा होने के कारण तत्कालीन खड़ी बोली हिंदी में अन्य बोली भाषाओं को ग्रहण करने की जो स्वीकार्यता बढ़ी, उसी का परिणाम हुआ कि खड़ी बोली हिंदी देश की राजभाषा के रूप में हिंदी कहकर जानी गई। यह भारत की प्रमुख भाषा होने के साथ साथ साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित हुई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय भाषाओं के रूप में पहुंची। यद्यपि अंग्रेजों द्वारा फिजी, सुरीनाम, गयाना, मॉरिशस, ट्रिनिडाड में ले जाए गए भारतीय गिरमिटिया मजदूरों में अधिकांशतः खड़ी बोली क्षेत्र के नहीं थे, परंतु भोजपुरी अवधि बोली क्षेत्र के इन मजदूरों ने भी अपनी भावी पीढ़ियों में हिंदी खड़ी, परिणामतः आज खड़ी बोली हिंदी का मानक रूप इन देशों में भी भारतवंशियों के बीच लेखन और अभिव्यक्ति का आधार बना है। इसी प्रकार कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, अरब देशों, यूरोप के अनेक प्रमुख देशों, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों सहित चीन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका के अनेक क्षेत्रों में खड़ी बोली हिंदी के मानक रूप की प्रतिष्ठा है। इसी कारण प्रवासी भारतीयों में एक बड़ा वर्ग हिंदी का प्रयोग करता है और प्रवासी साहित्य के रूप में हिंदी एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण कर रही है। यद्यपि विदेशों में हिंदी प्रचार प्रसार में विदेशी लेखकों, भाषा वैज्ञानिकों, शिक्षकों तथा भारत सरकार द्वारा प्रसारित हिंदी शिक्षण योजनाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आज विदेशों में हिंदी फिल्मों, टेलीविजन, सीरियलों, ओटीटी माध्यमों सहित हिंदी के रूप में विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। साहित्यिक भाषा बनने के साथ ही हिंदी लोक में भी लोक बोली के रूप में दो मानकों खड़ी और हरियाणवी के रूप में प्रचलित है। खड़ी बोली के इन दोनों लोक रूपों में साहित्यिक रचनाओं का लेखन हुआ। स्थानीय लोकवार्ता, लोकनाट्य, लोकगीत के विकास के साथ ही इन रूपों में प्रभूत मात्रा में साहित्य उपलब्ध है और आज भी हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में खड़ी बोली के विभिन्न लोकगीतों, लोकनाट्यों का प्रचलन है। लोक भाषा के रूप में कौरवी और हरियाणवी की साहित्यिक रचनाएं पौराणिक, ऐतिहासिक, देशभक्ति, स्वतंत्रता आंदोलन सहित वर्तमान स्वरूप में अभिव्यक्ति का माध्यम है। हिंदी के साथ साथ इन लोक बोलियों का साहित्यिक एवं भाषाई स्वरूप विकसित हो रहा है। यद्यपि मानक हिंदी स्वरूप ग्रहण करने के बाद इनका स्थानीय स्वरूप मौखिक अभिव्यक्ति में अधिक प्रयुक्त हो रहा है। हाँ, फिल्मों, टेलीविजन में भी स्थानीय बोली रूपों का प्रयोग बढ़ा है। खड़ी बोली आज विकसित होते होते अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रतिष्ठापित हो गई है। इसका श्रेय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों, बोली तथा भाषा रूप में प्रयोगकर्ताओं के साथ साथ फिल्मों, पत्र पत्रिकाओं सहित इंटरनेट माध्यमों में प्रयुक्त स्वरूप को जाता है, जिसके कारण आज हिंदी विश्व की प्रथम तीन भाषाओं में से एक है। विकास की दृष्टि से देखें तो यह विश्व की अकेली भाषा है जिसको लगभग 150 वर्षों में विश्व भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने का गौरव प्राप्त है। भारतीय भाषाओं में भी आज वह प्रमुख भाषा है। हिंदी के वर्तमान स्वरूप को खड़ी बोली हिंदी के परिनिश्चित रूप में स्वीकार किया गया है। खड़ी बोली हिंदी का यह विकास उसके प्रयोगकर्ताओं, रचनाकारों के लिए गौरव की बात है।
1: विविधा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वार्ताकार डॉक्टर नवीन चंद्र लोहानी से यह वार्ता, जिसका विषय था खड़ी बोली का क्रमिक विकास। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:55 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत। कार्यक्रम छाया गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और श्रोताओं, अब धीरे धीरे दिन ढलने लगा है और बहुत कुछ इस दिन में उतार चढ़ाव कहीं ना कहीं हमारे जीवन में रहे होंगे, लेकिन अगर एक मस्ती भरे अंदाज में एक दिन का समापन किया जाए और खुशामदीद की जाए शाम को, तो समा कुछ बंध ही जाता है।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म जबरदस्त का ये प्यारा सा गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत को लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया आरडी बर्मन ने, और कितने खूबसूरत अंदाज में अपने दिल की बात को बयां किया। और दोस्तों, देखिएगा, दिल की बातों को बयां करने का हर किसी का एक अपना अंदाज होता है, जैसे कि इस गीत में।

अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की युगल आवाज़ों में फिल्म नीला आकाश का यह प्यारा सा गीत, जिसे लिखा राजा मेहंदी अली खान ने और संगीतबद्ध किया मदन मोहन ने। और दोस्तों, अपने पूरे दिन में जो भी वक्त हमने अपने संगीत साथियों के साथ गुजारा होता है या फिर उनकी याद में हमने कुछ वक्त गुजारा होता है, तो उनकी बातें हमें न केवल उस रात याद रहती हैं बल्कि लंबे समय तक दिल की गहराइयों में नजर आती हैं, अगर वो वास्तव में हमारे दिल से जुड़ा है। अभी अलविदा मत

हसन कमाल के लिखे, रवि के संगीतबद्ध किए और महेंद्र कपूर की आवाज़ में फिल्म निकाह के इस प्यारे से गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत। लीजिए प्रस्तुत है संगीतमयी आकाशवाणी का ये संदेश।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी का ये संगीतमय संदेश। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में आइए आपको अब बता देते हैं हमारी आज की सभा के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में। हमारे दिल्ली केंद्र से चर्चा का विषय है कब प्रसारण किया जाएगा, रात्रि 9:30 पर। हमारे लखनऊ केंद्र से कानून की बात आप सुनेंगे शाम 7:32 पर। नजीबाबाद केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के अंतर्गत कार्यक्रम मुझे याद है जरा जरा आप सुनेंगे आज रात्रि 10:30 पर। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी देहरादून में कार्यरत सनवर अली खान की आकाशवाणी नजीबाबाद की यादें प्रसारित की जाएंगी। व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया आप सुनेंगे रात्रि 10:00। इस कार्यक्रम के अंतर्गत साइकिलों से जुड़ी यादें हमारे श्रोता इस कार्यक्रम में साझा कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से। अब आप आपको बता देते हैं कल यानी गुरुवार को प्रथम प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में। आपको बता दें कि कल यानी गुरुवार की प्रातःकालीन प्रसारण सभा में ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आप सुनेंगे सुबह 7:31 पर। काव्यधारा में निशा अग्रवाल से काव्य पाठ आप सुनेंगे सुबह 6:45 पर। स्वास्थ्य चर्चा में प्याज के गुणों के बारे में आप जानेंगे सुबह 7:05 पर। खेती की बातें कार्यक्रम में करेला की वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी जाएगी सुबह 7:10 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है में कलाकार अनीता द्विवेदी की आवाज में रुहेलखंडी लोकगीत आपको सुनवाए जाएंगे सुबह 9:25 पर।

बात आसपास की कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 9:50 और भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में सुहाना सफर कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:00। श्रोताओं, ये थी हमारे आज के शेष और कल यानी गुरुवार की प्रथम प्रसारण सभा के अंतर्गत प्रसारित किए जाने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:18 हो रहे हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे लखनऊ केंद्र से सुनेंगे समाचार।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आज 24 प्रस्तावों को किया पारित। नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के सहयोग से लागू होगी पहल। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 208 करोड़ रुपए की 71 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति से प्रदेश में निवेश को मिली है गति। और वाराणसी में कल शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक। चीन, ब्राजील और मिस्र समेत 11 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्री परिषद की बैठक में 24 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि मंत्री परिषद ने नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मंजूरी दी है।
3: नगरीय क्षेत्रों में जो हमारे 17 नगर निगम हैं और नोएडा, कुल 18 हमारे जो बड़े शहर हैं, उनमें ई बसें संचालित करने के लिए हम लोग प्रस्ताव लेकर के गए थे और उसमें 1725 नई बसें चलाने का हमारा प्रस्ताव था, जिसे माननीय मंत्री परिषद ने मंजूरी दिया है। और ये बसें 17 नगर निगम है और प्लस नोएडा, उसमें जेवर जो एयरपोर्ट है उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं।
2: कैबिनेट ने सरकारी वकीलों के भत्तों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने वाली योजना को मंजूरी दे दी गई है। मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस परियोजना को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के भागीदार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू किया जाएगा।
4: कैबिनेट में

0: अप्रूव हुआ रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रक्स एंड बसेस रजिस्टर्ड इन दिल्ली एनसीआर टू BS6 और ईवी और सीएनजी व्हीकल्स। इस स्कीम के लिए 5041 करोड़ रुपीस का आउटले है। सपोर्ट लेंगे गवर्नमेंट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। इनकी मदद से करीब 2 लाख के आसपास ट्रक्स हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम बनाया जाएगा और करीब 16,000 बसेस हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम है। इससे हमारा मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में दिल्ली में पोल्यूशन सिग्निफिकेंटली कम होगा।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गीडा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए करीब 208 करोड़ रुपए के 71 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास और उद्यम के लिए सुरक्षा सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि साल 2017 के बाद से सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ी है। इसी का परिणाम है सरकार को 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
2: सुरक्षा का मॉडल क्या होना चाहिए, अब यूपी में वह उपलब्ध है। और सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति इसी भाव के साथ आगे बढ़ रही है। और आज इसी का परिणाम है प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त। 15 लाख करोड़ का हमने जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया। 7.5 लाख करोड़ का हमारे पास तत्काल तैयार है, इसको कभी भी हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर सकते हैं। लाखों नौजवानों को इसके माध्यम से कार्य मिला है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में आजमगढ़, बस्ती और गोरखपुर की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता संगोष्ठी 2026 का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में अन्नदाता किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्यात के मानकों पर खरा उतरने पर जोर देते हुए प्राकृतिक खेती पर बल दिया।
2: जो औद्यानिक फसल हम पैदा करें, न्यूनतम केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग कर न्यूनतम उन मानकों पर खरा उतर सके जो निर्यात करने लायक भी हो, और इसके लिए प्राकृतिक खेती एक बेहतरीन ऑप्शन है भारतवासियों के सामने। गौ आधारित खेती है ये, गौ माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए गौ माता की रक्षा भी होगी, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से आपकी खेती को बचाव करने के साथ साथ लागत को कम करने का भी एक माध्यम हो सकता है। हमें इसमें कार्य करना होगा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। वाराणसी में कल और 5 जून को ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान संस्कृति, विरासत संरक्षण और आपसी सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग एवं ODOP उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी में वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपरा के 6 शिल्पियों के 6 विशिष्ट उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा, बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुँचाने का अवसर भी मिलेगा। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों की काशी यात्रा को यादगार बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। प्रतिनिधियों के आगमन पर एयरपोर्ट से लेकर शहर के विभिन्न स्थलों तक लोक नृत्यों की प्रस्तुति होगी। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता है। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाई है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। गाजियाबाद के अभिषेक कुमार ने बताया कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिली है।
5: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
4: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: प्रदेश के 36 जिलों में आज और कल टीजीटी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के तहत होने वाली ये परीक्षा आज पहले दिन सकुशल संपन्न हुई। 3,539 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में 8,00,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की बारिश का अनुमान जताया है। वहीं पश्चिमी जनपदों में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने और गरज चमक का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आज 24 प्रस्तावों को किया पारित। नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के सहयोग से लागू होगी पहल। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 208 करोड़ रुपए की 71 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति से प्रदेश में निवेश को मिली गति। और वाराणसी में कल शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक। चीन, ब्राजील और मिस्र समेत 11 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 7:31 हो गए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम कानून की बात। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं तलाक संबंधी कानून विषय पर की गई भेंट वार्ता। जानकारी दे रही हैं एडवोकेट सीमा भटनागर और भेंट करता है सुमोना पांडे।
2: कानून की बात, कानून की बात कार्यक्रम में आज मैं हूँ सुमोना पांडे आपके साथ श्रोताओं, और आज हमारे साथ हैं तलाक संबंधी कानूनी अधिकार के बारे में बताने के लिए सीमा भटनागर जी, जो कि एक एडवोकेट हैं, लीगल कंसल्टेंट हैं और कई वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। सीमा जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: थैंक यू सुमोना जी।
2: सीमा जी, सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह से हमारी जिंदगी में कई तरह के बदलाव आते रहते हैं जिससे हमारी जिंदगी प्रभावित होती है, उसी में एक निर्णय हम लेते हैं शादी का। तो जब हम शादी करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि ये जन्मों का बंधन है, शादी के बाद परिवार बढ़ता है, समाज बढ़ता है, तो एक तरह का ये बंधन है जिसमें दो लोग साथ आते हैं और शादी के बंधन में बन जाते हैं और एक समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। लेकिन कई बार कई दिक्कतें आती हैं जिसमें शादी में कुछ तनाव, कुछ दूरियां हो जाती हैं और तलाक की बात आने लगती है। आपसे हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि किस तरह के लॉज हिंदू समाज के लिए या अन्य वर्गों के लिए मिलते हैं।
3: सुमोना जी, शादी नॉर्मली, जैसे कि आपने कहा कि जन्मों जन्मों का बंधन है, और इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगी जो आज का समय चल रहा है उसमें ये जन्मों जन्मों का बंधन कई कारणों से अब टूटने की कगार पर आ गया है, जिसका कि एक कानूनी शब्द है।

0: तलाक लेना, शादी के टूटने को तलाक कहते हैं। जिसमें हल्का सा मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आज के जमाने में शादियां टूट क्यों रही हैं। पहले ये कहा जाता था कि शादी जो है एक ड्यूटी है, ड्यूटी की तरह हम अपने फर्ज को निभाते हैं, महिला और पुरुष दोनों ही फर्ज को निभाया करते थे। मेरा मानना भी ये है और लॉ का भी मानना ये है और जो प्रेजेंट सिचुएशन भी चल रही है उसके अकॉर्डिंगली, अगर हस्बैंड और वाइफ एक अच्छे माहौल में खुशी के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करके अगर नहीं आगे चल पा रहे हैं डिस्पाइट गिविंग देयर 100%, मीन्स दोनों चाह रहे हैं या एक पार्टी चाह रही है कि लेट मी ट्राई, लेट मी गिव माय 100%, वी शुड नॉट ब्रेक द मैरिज, बिकॉज व्हेन वी ब्रेक द मैरिज इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। वाइफ पर तो पड़ता ही है, साथ में बच्चों पर भी पड़ता है। और इतना कोशिश करने के बाद भी या हस्बैंड की तरफ से 100% कोशिश करने के बाद भी समहाउ वाइफ के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही है, तो उस सिचुएशन में इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग द मैरिज इट इज बेटर कि आप अलग हो जाओ, अलग हो करके फिर अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। और शादी के आज के जमाने में मायने भी बदल गए, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा मैं शादी को एक ड्यूटी एक फर्ज की तरह से समझती हूँ जो पुराने जमाने में था। बट व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दीज डेज कि इमोशनल इंटीमेसी भी होना चाहिए और पर्सनल ग्रोथ भी होना चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी होना चाहिए, तीन इंग्रेडिएंट्स भी शादी में आ गए हैं। और जहां पर ये तीन इंग्रेडिएंट्स जो अगर नहीं मिलते हैं महिला को या पुरुष को, तो वहां पर इंस्टेड ऑफ गोइंग अहेड वो अलग हो जाते हैं।
1: शिवा जी, मैं यार ये जरूर कहना चाहूंगी, शादी भले ही पहले आपने फर्ज के नाम पर लिया हो, लेकिन ये तीनों चीज तब भी जरूरत थी और आज भी रिश्तों में जरूरत है। जिसकी बात आप कर रही हैं, चाहे हम इमोशनल स्टेबिलिटी की या फिर हम एक इंटीग्रिटी की बात करें, लॉयल्टी की बात करें, रिस्पेक्ट की बात करें, ये सारी चीजें शादी में होनी चाहिए।
0: एग्जैक्टली
1: और जब इसमें तालमेल नहीं रहता है तभी
0: तलाक की तरफ
1: हम पहुंचते हैं। तो हमारे लॉज क्या है एक्चुअली उसके बारे में आप बताएं।
0: इसमें बेसिकली अगर हम हिंदू की बात करते हैं, शुरुआत में हम हिंदू लॉज को ही लेकर के करते हैं, मेंटेनेंस का हमारा राइट बनता है। मेंटेनेंस का राइट एक महिला सेक्शन 125 सीआरपीसी में जा सकती है, वो हिंदू मैरिज एक्ट में जा सकती है, वो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में जा सकती है और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जा सकती है। अब यहाँ पे डिसाइड कैसा करा जाए, हमें कौन सा फोरम को अप्रोच करना चाहिए, किसमें हमें मिलना चाहिए। फर्स्ट टाइम टेकिंग मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस पे 125 सीआरपीसी जो होता है उसमें आपको क्विक रिलीफ मिल जाती है। अगर आपको मेंटेनेंस चाहिए एंड यू आर इन डायर नीड ऑफ मनी, 125 सीआरपीसी में जा सकते हैं। सेकेंड इज हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 24 और सेक्शन 25 है जो कि एक महिला को मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है। सेक्शन 24 प्रोवाइड मेंटेनेंस अमाउंट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द डिवोर्स प्रोसीडिंग। महिला अगर अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है दो सिचुएशन में, एक वो लीगल एक्सपेंसेस मीट नहीं कर पा रही है और दूसरा वो अपने खुद के एक्सपेंसेस मीट नहीं कर पा रही है, तो वो सेक्शन 24 में जाएगी। सेक्शन 24 जब डिवोर्स सूट फाइनली हो जाता है तो सेक्शन 25 में परमानेंट एलिमनी के लिए जाती है।
1: यानी कि सेक्शन 24 उस दौरान की बात है जब प्रोसीजर चल रहा है डिवोर्स का।
0: एग्जैक्टली, सेक्शन 25 तब अडॉप्ट होता है जब डिवोर्स प्रोसीडिंग फाइनल हो जाती है एंड दैट इज कॉल्ड एलिमनी। एंड द थर्ड इज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस में अगर महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और डिवोर्स की प्रोसीडिंग चल रही है तो वो इस फोरम में जा सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस में मेंटेनेंस मांग सकती है। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, वहां पर भी मेंटेनेंस मिलता है, बट वो मेंटेनेंस सिर्फ उस महिला को मिलता है जो शादी में है, जिसका डिवोर्स नहीं हुआ है।
1: नहीं तो शादी में तो हर आदमी है जो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर रहा है।
0: नो, द प्रोसेस ऑफ डिवोर्स हैज स्टार्टेड।
1: अच्छा, ओके,
0: प्रोसेस ऑफ डिवोर्स हैज स्टार्टेड। एज फार एज हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट इज कंसर्न, हमारी शादी हो गई है, हमारा तालमेल नहीं बैठ रहा है और अब हम आपके साथ रहना भी नहीं चाहते, हम अलग रहेंगे। शादी इज एग्जिस्टिंग बट हम अलग रहेंगे, हम
1: सेपरेशन।
0: एग्जैक्टली, तो भी वहां पर महिला को मिलेगा, बट दैट गोज फॉर अ मैरिड वुमन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कैन अ वुमन गो फॉर ऑल द थ्री फोरम्स? हम साइमल्टेनियसली तीनों फोरम को हम अवेल नहीं कर सकते हैं, हमें तीनों में से किसी एक फोरम को अवेल करना होगा।
1: तो कौन सा बेटर होगा किसी भी महिला के लिए, क्योंकि कई बार महिला को पता ही नहीं होता कि हमें कहाँ जाना है, तो कौन सा बेटर होता है?
0: हाँ, अगर उसको क्विक रिलीफ चाहिए तो उसको क्रिमिनल प्रोसीजर में जाना चाहिए। रीजन बिंग, अगर आपको कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि आपको मेंटेनेंस देना होगा और आप नहीं दे रहे हो, तो वहां पर कोर्ट क्रिमिनल एक्शन इमीडिएटली इनिशिएट कर लेता है। बट एज फार एज आपको चाहिए पूरा, हमें फाइनली डिसाइड करके पूरा एलिमनी मिल जानी चाहिए, हमें एक मेंटेनेंस का अमाउंट डिसाइड जाना चाहिए और यू आर नॉट इन हरी फॉर इट, देन यू शुड गो फॉर हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 25 एलिमनी के लिए जाइए। और अगर आपकी डिवोर्स प्रोसीडिंग चल रही है उस दौरान आपको ये मेंटेनेंस चाहिए और आपके साथ कुछ वायलेंस किया गया है, देन यू शुड गो फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट।
1: इसके अलावा भी इस लॉ में कुछ और भी बताना चाहेंगी आप?
0: हाँ, बिल्कुल। एक हिंदू महिला को इसके अलावा एलिमनी का भी अधिकार है, उसको स्त्रीधन का भी अधिकार है और उसको राइट ऑफ रेजिडेंस का भी अधिकार है, राइट ऑफ चाइल्ड कस्टडी का भी अधिकार है। तो उसको ये सारे राइट है, उसको ये सारे चीजें अवेल करनी चाहिए। एलिमनी, वो जैसे मैंने आपको बताया, वो डिवोर्स के बाद उस सेक्शन 25

0: जो एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में जाएगी, राइट ऑफ कस्टडी में वो अपने बच्चे की कस्टडी का डिमांड कर सकती है. दो फादर को भी राइट होता है बट वो डिमांड कर सकती है. राइट ऑफ रेजिडेंस की डिमांड्स वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जाकर के वो कर सकती है. तो दीज आर मेनी राइट्स विच आर प्रोवाइडेड टू हिंदू वुमन टू सेव हरसेल्फ फ्रॉम डेस्टिट्यूशन और वैगरेंसी.
1: तो इसके अलावा अगर हम और धर्मों की बात करें तो उनमें किस तरह के फैसिलिटीज या किस तरह के लॉज है हमारे कानून में?
0: वेल, अब मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ एंड पारसी लॉ की जैसे हम जनरली बात करते हैं तो मोर और लेस सिमिलर तरह के अधिकार उनके धर्मों में भी दिए गए हैं. बस उनका थोड़ा सा देने का तरीका बदला हुआ है. मुस्लिम की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी मेंटेनेंस का उसको अधिकार है. पहले मेंटेनेंस का अधिकार केवल इद्दत पीरियड के दौरान रहता था महिला को. अगर डिवोर्स हो गया है तो इद्दत पीरियड 3 महीने का मिलेगा. बट डेनियल लतीफी का केस आया 2001 में जिसके अकॉर्डिंगली अब महिला को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इद्दत पीरियड मानी 3 मंथ्स तक ही वो सीमित नहीं रहेगा. दैट शुड बी एक्सटेंडेड थ्रू आउट हर लाइफ. Therefore, now a Muslim woman gets maintenance, not just for 3 months, but throughout her life. फिर उसके बाद उसको डावर का अधिकार है. डावर मतलब मेहर जिसको हम बोलते हैं. तो जो शादी के समय अग्री करी गई होती है तो वो अमाउंट आपको एट द टाइम ऑफ डिवोर्स आपको देना होता है.
1: मुस्लिम महिला को
0: हस्बैंड देगा क्योंकि वो अमाउंट शादी के समय ही फिक्स हो जाता है कि ये अमाउंट हम मेहर हम उनको देंगे. और अगर वो नहीं देते हैं तो मुस्लिम वुमेन कैन गो टू द मैजिस्ट्रेट एंड फाइल एन एप्लीकेशन कि मुझे ये मिलना चाहिए. उसी तरह उसकी जो प्रॉपर्टी है, जैसे हिंदुओं में स्त्री धन होता है वैसे ही मुस्लिम में जो भी सामान उसको शादी के समय दिया गया था उसको पेरेंट्स ने, रिलेटिव्स ने या ससुराल से मिला, वो
1: सारा जो भी
0: वट एवर उसको मिला गया, अब वो उसका प्रॉपर्टी हो जाती है. वंस इट इज गिवन टू द मुस्लिम लेडी वो सारा उसका प्रॉपर्टी हो जाती है एंड दैट हैज टू बी रिटर्न्ड. तो इसी तरह चाइल्ड की कस्टडी का अधिकार है. तो बच्चा जब तक 7 साल का होता है, इनकेस ऑफ अ बॉय 7 साल तक का अधिकार उसकी माँ के पास है. और एक लड़की जो है वो 15 साल तक, टिल शी अटेन प्यूबर्टी, तब तक वो माँ के साथ रहेगी. दो फादर हैज द लीगल राइट बट एज प्रोवाइड करी गई कि यहाँ तक वो अपने माँ के साथ ही रहेगी.
1: मुस्लिम लॉज में आपने जैसे बताया कि मेहर एक हो जाता है.
0: मेहर इज वन थिंग.
1: सो नाउ द हिंदू वुमन शी ऑल्सो गेट समथिंग ना, मतलब इन रिटर्न की अगर डिवोर्स हो रहा है तो उसकी मेंटेनेंस भी तो हस्बैंड लेता है.
0: हाँ,
1: इफ ही इज इन अ जॉब.
0: Yes, definitely. He has to. अपनी प्रॉपर्टी में से आप लोग कहीं से भी एडजस्ट करके
1: दो. It is more or less the same thing, but in a different category.
0: Yeah. क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, थोड़ा शरिया लॉ और थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों को मिक्स करके एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करी गई है मुस्लिम पर्सनल लॉ में, कि पर्सनल लॉ भी आपका चलेगा और कॉन्स्टिट्यूशन भी आपका चलेगा.
1: तो सीमा जी, आपने अभी तक बताया कि महिलाओं के लिए क्या क्या लॉज हैं. कई बार ऐसे भी होता है कि शादी में पुरुष भी पीड़ित होते हैं या पुरुष को भी ये जरूरत होती है कि
0: बिल्कुल
1: शायद कहीं पे कोई दिक्कत आ रही तो वो भी डिवोर्स के लिए अप्लाई करे, उनको भी कुछ कानूनी अधिकार मिले.
0: बिल्कुल,
1: इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
0: वेल, आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है. जो आपने क्वेश्चन पूछा है, पुरुषों को भी बिल्कुल सिमिलर अधिकार पहले से ही प्रोवाइडेड. बट द थिंग वॉज कि महिला को इतना ज्यादा प्रमोट किया गया था या वो इतनी ज्यादा पीड़ित थी समय से, वो इतनी ज्यादा पीड़ित थी कि उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करके हम देख रहे थे. बट द लॉज विच आर अवेलेबल फॉर अ वुमन, सिमिलर लॉज, सिमिलर सेक्शन आर अवेलेबल टू अ मैन. हम मेंटेनेंस की जैसे बात करते हैं, अगर पुरुष अगर बेरोजगार है और अपने आप को मेंटेन नहीं करता या किसी वजह से उसकी नौकरी चली गई है तो वो अपनी वाइफ से मेंटेनेंस मांग सकता है इफ द वाइफ इज वर्किंग. और इवन इफ डिवोर्स हो गया है, डिवोर्स हो गया है तो वो अपनी वाइफ से, अगर सक्षम है और वो सक्षम उस लेवल का नहीं है तो वो अपनी वाइफ से मेंटेनेंस सेक्शन सीआरपीसी में भी ले सकता है और हिंदू मैरिज एक्ट में भी ले सकता है.
1: अच्छा, कुछ आजकल जो पद्धतियां चल रही हैं, लिव इन रिलेशनशिप की बात भी आने लगी है एंड इट हैज बिकम क्वाइट कॉमन अमंग आवर सोसाइटी. तो इसके बारे में आप बताना चाहेंगे किस तरह के लॉज इसमें है, क्या इसमें भी कुछ इस तरह की फैसिलिटीज जो गर्ल और बॉय को मिलता है?
0: बिल्कुल, लिव इन रिलेशनशिप अब आज के समय में एक टैबू नहीं रह गया है. अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ की तरह एक कॉमन हाउसहोल्ड में रहते हो, शेयर्ड हाउसहोल्ड में रहते हो और सोसाइटी के सामने अपने आप को एज ए हस्बैंड एंड वाइफ शो करते हो, माने कि योर रिलेशनशिप शुड नॉट बी हिडन, इट शुड अपीयर टू द सोसाइटी, टू द पीपल हु आर सीइंग यू दैट यू आर ए हस्बैंड एंड वाइफ. इन दैट केस इफ अ ब्रेकअप ऑकर्स अमंगस्ट यू, आप यानी कि वाइफ कैन सीक मेंटेनेंस अंडर सीआरपीसी, शी कैन सीक मेंटेनेंस अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. इनहेरिटेंस का भी उसके बच्चों को अधिकार है पर वो अधिकार सीमित है. यहाँ पर केवल अपने फादर ने जो भी अपनी खुद की प्रॉपर्टी बनाई है या मदर फादर ने दोनों जो ज्वाइंटली प्रॉपर्टी बनाई है उसमें ही केवल वो इनहेरिटेंस बच्चों को मिलेगा. एंड द चिल्ड्रन विल नॉट बी कॉल्ड इलेजिटिमेट चाइल्ड. उनका वही सुरक्षा और दृष्टि से देखा जाएगा जो कि एक नॉर्मल शादीशुदा हस्बैंड वाइफ के बच्चों को देखा जाता है।
1: जी, तो सीमा भटनागर जी, आपने तलाक संबंधी कानूनी अधिकार के बारे में बहुत सारी जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ शेयर की और हमें उम्मीद है कि वो बेहतर तरीके से इस लॉ को समझ पाएंगे। और इसी के साथ कानून की बात कार्यक्रम से सुमोना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानून की बात, जिसमें आपने सुनी तलाक संबंधी कानून विषय पर की गई भेंट वार्ता। जानकारी दे रही थी सीमा भटनागर और भेंटकर्ता थी सुमोना पांडे। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:45 हुए हैं। कार्यक्रम सुगम संगीत में आइए अब सुनते हैं जोगिंदर कौर की आवाज़ में शब्द।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: इस संदेश के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सुगम संगीत में बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कलाकार जोगिंदर कौर की आवाज़ में शब्द। लीजिए प्रस्तुत है इस कार्यक्रम का ये अंतिम शब्द।

इसी शब्द के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत और इस कार्यक्रम में आपने सुने जोगिंदर कौर की आवाज में शब्द। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। गीत संध्या कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को चरणजीत सिंह का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, रात्रि का पहर अब शुरू हो चुका है और आसमान पर सितारे टिमटिमाने लगे हैं और धीरे धीरे ये रात गहरी होती जाएगी और देखिएगा अपने किसी को याद हमारे मन में बसा करके अगर हम ये रात गुजारेंगे तो अगले दिन उससे मिलने का कहीं ना कहीं हमारे मन में एक बेचैनी सी रहेगी, इंतज़ार सा रहेगा।

अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फ़िल्म कन्यादान का ये प्यारा सा गीत, जिसे लिखा नीरज ने और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। श्रोताओं, जब शाम गहराती है तो धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है और फिर शाम रात में बदल जाती है, और जुल्फों का घना अंधेरा कभी कभी दिल को मचलने के लिए मजबूर कर देता है।

अभी आपने सुना आशा भोसले को इस प्यारे से गीत में, जिसे हमने लिया फिल्म मेरे सनम से। गीत को लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया ओपी नैयर ने। और दोस्तों, गीत में एक बात बड़े अंदाजमयी तरीके से कही गई कि रात जाए रहे आप दिल में मेरे, अरमां बन के रह जाइए। और देखिएगा, जब दिल में किसी के कोई अरमान होते हैं ना, तो वो कभी कभी एक नए अंदाज में बयां कर देता है। और देखिएगा, दिल की बात जब कभी गुनगुना कर सुनाई जाती है ना, तो दिल में घर कर जाती है।

दोस्तों, ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम कश्मीर की कली। गीत को लिखा SH बिहारी ने और संगीत दिया OP नैयर ने। देखिएगा दोस्तों, जो लोग ज़िंदगी को बहुत करीब से जीते हैं, ज़िंदगी के हर फलसफे को महसूस करते हैं, उनका एक अनुभव होता है जीवन को जीने का, तो वो डंके की चोट पर अपने जीवन के अनुभवों को कभी कभी गीत संगीत के माध्यम से कहते हैं और सुनते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोग जो प्यार में दीवाने हो जाते हैं ना, तो उन्हें बहुत कुछ जानकारी होने के बाद भी बिल्कुल नादान और अनजान से रहते हैं।

लता मंगेशकर और मुकेश को सुन रहे थे आप फिल्म हरियाली और रास्ता के इस प्यारे से गीत में, जिसे लिखा हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला ये प्यारा सा गीत मन्ना डे और साथियों की युगल आवाजों में, फिल्म का नाम विश्वनाथ। गीत की रचना की राज कवि तुलसी ने और संगीत राजेश रोशन ने दिया।

दोस्तों, दिन तो ढल चुका है और रात गहराने लगी है, और इस बीच आपने ये प्यारा सा जो गीत सुना है, इसमें कहीं ना कहीं यारी दोस्ती की बात कही गई। देखिएगा, दिन भर में हमारे साथ जो संगी साथी हमारे मिलते हैं ना, तो उनसे हम दिल की बातों को बयां करते हैं, और इसी के साथ हमारा कारवां जो है वो आगे बढ़ता है। और देखिएगा, दोस्ती पर तो कई फिल्मी नगमे बने हैं। एक गीत हम और आपको सुनवा देते हैं इसी दोस्ती पर केंद्रित, जो कि फिल्म शोले से है, और इस गीत को आवाज़ें दी हैं किशोर कुमार और मन्ना डे ने। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत आरडी बर्मन ने दिया है।

श्रोताओं, दोस्ती तो हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन एक बात ये भी समझनी चाहिए कि जो बीज हमने बोया है वो कल फसल भी बनेगा, और फिर जब फसल पककर तैयार हो जाएगी तो उसका कटना भी सुनिश्चित है, तय है। और देखिएगा, जन्म के बाद मरण भी निश्चित है, और जब किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो उसका समापन भी होता है। ये तो प्रकृति नियम है। जैसा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी ठीक 8 बजे, और अब एक गीत हमें आपको और सुनवाना है, और 8:30 पर हम इस कार्यक्रम से आपसे विदा भी लेंगे। तो चलिए, कार्यक्रम में चलते चलते हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मोहिनी का प्यारा सा गीत शमशाद बेगम की आवाज़ में। इस गीत की रचना की राजा मेहंदी अली खान ने और संगीत दिया एन दत्ता ने।

तो श्रोताओं, इसी प्यारे से गीत के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम गीत संध्या अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। एक ही फिल्म से कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, आज का यह कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं मैं, आपका रेडियो मित्र चरणजीत सिंह। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म नाम के प्यारे प्यारे से फिल्मी नगमे। और श्रोताओं, पहला गीत सुनवाने से पहले हम आपको बता दें कि फिल्म नाम जो काफ़ी चर्चाओं में रही, उसकी स्टोरी भी और उसके गीत भी, ये फिल्म 1986 में रिलीज़ हुई और बेहद सफल और प्रसिद्ध अपने दौर में ये फिल्म रही है। न केवल अपने दौर में बल्कि आज भी इस फिल्म के गीत और इस फिल्म की स्टोरी लोग याद करते हैं। और कुछ गीत तो ऐसे हैं जिन्हें सुनने के बाद मन भावुक हो जाता है। श्रोताओं, इस फिल्म में मुख्य कलाकार की भूमिका में नजर आए थे संजय दत्त, कुमार गौरव, नूतन, अमृता सिंह, परेश रावल, पूनम ढिल्लो और अन्य सहयोगी कलाकार। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये पहला गीत कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: श्रोताओं, इस कार्यक्रम के आगे बढ़ते हैं और अब इस गीत के बाद सुन लेते हैं ये संदेश।
1: सूचना, ज्ञान एवं मनोरंजन से भरपूर प्रसारण के 90 वर्षों से हम हैं आपके साथ, क्योंकि हम हैं आकाशवाणी।

इस संदेश के साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से मैं आप सभी श्रोताओं का फिर से बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, आज हम आपके बीच लेकर आए हैं फिल्म नाम के कुछ चुनिंदा और प्यारे गीत। आपको बता दें कि ये कहानी संजय दत्त यानी विक्की कपूर की है, जो एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता है और वो अक्सर छोटी मोटी परेशानियों में पड़ा रहता है। अपनी किस्मत बदलने के लिए वो अपने बड़े भाई यानी कुमार गौरव की मदद से दुबई चला जाता है, और लेकिन दुबई पहुंचने पर उसे पता चलता है कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है और वह एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर के जाल में फंस जाता है। और जब कोई किसी के मकड़ जाल में फंस जाता है और अपनों से दूर हो जाता है, तब दिल क्या कहता है। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत में।

ये प्यारा सा गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। और श्रोताओं, आपको बता दें कि इस फिल्म के निर्देशक रहे महेश भट्ट, कथा लेखन सलीम खान का रहा। और आपको बता दें कि इस फिल्म के गीतों को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और आपको ये भी बता दें कि आज जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं यानी फिल्म नाम, इसमें एक गीत है चिट्ठी आई है, और इस गीत को आवाज़ दी है महान गज़लकार पंकज उदास ने। और आपको ये भी बता दें कि यह गाना इतना प्रसिद्ध हुआ कि इसे बीबीसी रेडियो द्वारा सहस्राब्दी के सर्वश्रेष्ठ 100 गीतों में शामिल किया गया। तो चलिए कार्यक्रम के अंतिम चरण में सुन लेते हैं यही प्यारा सा गीत।

0: तो श्रोताओं, इसी प्यारे से गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
2: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर दी एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ दी स्ट्रेस इन दी सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
1: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने

और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को चार लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटक नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में 1 महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष

0: श्रृंखला प्रसारित कर रहा है आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
2: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
1: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
3: दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
1: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
5: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के

0: मानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nod to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Ritavrata Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal Legislative Assembly. Congress leader D.K. Shivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parmeshwar becomes Deputy Chief Minister while 12 legislators also take oath as Cabinet Ministers. Massive fire in Malviya Nagar in Delhi claims 21 lives. Police file FIR under charges of culpable homicide. Met Department warns of very heavy rainfall in Kerala and Mahe tomorrow. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000 after defeating China's Wang Hongyang. The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide aviation turbine fuel ATF price stabilization support to Indian Airlines for their domestic and international operations. The support will be provided to companies to facilitate stable ATF pricing for airlines during the ongoing period of exceptional fuel price volatility arising from the West Asia crisis. Briefing media in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said this is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers.
2: ATF price stabilization fund mein,
3: a self-sustaining revolving fund has been established under the ATF price stabilization fund. Airline carriers who want to participate in this will be provided aviation turbine fuel at a stable price during the current crisis. This is expected to significantly reduce the adverse impact on the aviation sector, where over 70 lakh jobs had started to be affected by the ongoing stress in the industry.
2: Because of the stress in the sector, wo isse significantly mitigate hoga.
1: The Union Cabinet has also approved a scheme for support to the National Capital Region Planning Board for replacement of old trucks and buses in Delhi NCR area. The scheme, with a total financial outlay of 9,585 crore rupees, seeks to incentivize owners of trucks and buses registered in the Delhi NCR region that comply with BS4 or earlier emission norms to replace them with BS6 or electric vehicles. Mr. Vaishnav also informed that the Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the construction of a new coastal highway from Rameshwar to Paradip in Odisha.
2: उड़ीसा में कोस्टल हाईवे जिसका फेज वन आज अप्रूव हुआ है.
3: इन ओडिशा द फेज वन ऑफ द कोस्टल हाईवे वॉज अप्रूव टूडे. इट विल एक्सटेंड फ्रॉम रामेश्वर थ्रू कोणार्क अप टू पारादीप, कवरिंग द स्ट्रेच फ्रॉम द सदर्न टिप ऑफ ओडिशा टू इट्स सेंट्रल रीजन रीचिंग पारादीप. एडिशनली अ वेरी इंपॉर्टेंट हाईवे प्रोजेक्ट हैज बीन अप्रूव्ड इन बिहार, दैट इज द फोर लेनिंग ऑफ द रोड बिटवीन खगड़िया एंड पूर्णिया.
2: खगड़िया से पूर्णिया के बीच में फोर लेनिंग.
1: In West Bengal, Social Security Scheme Annapurna Yojana was formally launched in the state today by Chief Minister Shubhendu Adhikari, transferring 3,000 rupees directly into the bank accounts of over 28 lakh women. Five women were symbolically handed

0: brings you a special feature on the government's efforts over the last 12 years across key sectors. Today we focus on the measures taken by the government towards the welfare of the middle class.
1: Over the past 12 years, the government has empowered India's middle class through wide-ranging reforms. Simplified taxation and a stronger banking, insurance and pension systems have enhanced their financial security. Under the new tax regime, individuals earning up to 12 lakh rupees annually are paying zero tax. For the middle class, specifically, GST has delivered several tangible benefits by simplifying taxes and lowering everyday costs. The Pradhan Mantri Awas Yojana Urban, launched in 2015, has transformed the lives of crores of people by providing them with secure housing. Out of the total 1 crore 25 lakh sanctioned houses, over 98 lakhs are completed or delivered to beneficiaries across the country so far. Talking to Akashwani News, Abhishek Kumar from Uttar Pradesh said the scheme is ensuring housing for the poor and bringing relief to those living in rented accommodation.
2: My name is Abhishek Kumar. I had applied under the Pradhan Mantri Awas Yojana 2 years ago. After submitting my application, I was allotted a house through a lottery draw. Following the allotment, I have been paying the required installments. Once all the installments are paid, the property registration will be completed in the coming months. After that, I will receive possession of the house. This is a very good scheme as it is helping poor people get access to housing.
1: Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana has enabled 43.52 crore health cards, expanding access to health care protection. While Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana scheme is providing quality generic medicines at 50-80% lower prices through Jan Aushadhi Kendras. Talking to Akashwani News, Brahmadev of Bihar said that the medicines at these Kendras are available at very affordable price than the market.
3: My name is Brahmadev Malhaka. I am from Muzaffarnagar district in Bihar. I have been purchasing medicines from here for about a year. The medicines are available at affordable prices. The doctor advised us to buy medicines from Jan Aushadhi and we follow that advice and regularly purchase our medicines from here. If we want to buy the same medicines from outside, they are much more expensive. This government initiative helps solve the problems of the poor people.
1: The Pradhan Mantri Mudra Yojana, launched in 2015, has also evolved into a powerful instrument of empowerment. Under the scheme, 40 lakh crore rupees of loans have been disbursed to the beneficiaries so far. As incomes rise and opportunities expand, India's middle class is actively driving the nation's growth, ambition and future prosperity. Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
0: Prime Minister Narendra Modi has congratulated Mette Frederiksen on assuming office as the Prime Minister of Denmark for a remarkable third consecutive term. In a social media post, Mr. Modi said India and Denmark share an enduring partnership founded on mutual trust, shared values and a common commitment to a sustainable future. The Prime Minister said he is looking forward to working closely with Mr. Frederiksen to further strengthen the India-Denmark Green Strategic Partnership and take the cooperation to new heights for the benefit of the people of both countries. United States Ambassador to India Sergio Gore has said 99% of the proposed India-US interim trade agreement has been finalized and both sides are working to resolve the remaining issues. Speaking at the CTE 2026 India conference in Mumbai today, Mr. Gore expressed confidence that the agreement could be concluded within the next few weeks. The Iran conflict has entered a severe new phase of escalation as Iranian ballistic missiles and drones struck U.S. military bases across Kuwait and Bahrain in the early hours today. A drone strike broke through Kuwait's air defenses and hit the main passenger terminal at Kuwait International Airport, killing one Indian national and injuring 63 others. Injuries ranged from blast wounds and amputations to head trauma and cerebral hemorrhages. The Indian Embassy in Kuwait confirmed the death of one of its nationals in the attack, expressing its deepest condolences to the bereaved family and saying the mission is closely coordinating with Kuwaiti authorities to provide all possible support. The Indian Meteorological Department has issued an orange warning for heavy rainfall over Kerala and Mahe tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Uttarakhand, parts of northeastern India, West Bengal, Karnataka, Konkan, Goa, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep during the next 2 days. In badminton, India's Ayush Shetty advanced to the second round of the Indonesia Open Super 1000 with a comeback win over China's Wang Hongyang, 8-21, 22-20, 21-15. India also secured a mixed doubles victory as Rohan Kapoor and Ritwik Agarwal defeated Chinese Taipei's Yang Po Huan and Hu Lingfang. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nod to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Ritubrata Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal Legislative Assembly. Congress leader D.K. Shivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parameshwar becomes Deputy Chief Minister, while 12 legislators also take oath as cabinet ministers. Massive fire in Malviyanagar in Delhi claims 21 lives. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000. That is all in the news at 9. Good night.
4: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। मरकजी काबीना ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों की मदद के लिए एटीएफ की कीमतों को मुस्तहकम करने की खातिर 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उसने दिल्ली एनसीआर इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने की खातिर कौमी राजधानी खित्ता मंसूबाबंदी बोर्ड को भी मंजूरी दी है। पार्टी से निकाले गए तृणमूल कांग्रेस के रुकन असेंबली रीता ब्रता बनर्जी को मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली में अपोजिशन का रहनुमा मुकर्रर किया गया है। कांग्रेस के लीडर डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें वजीर आला की हैसियत से हलफ ले लिया है। डॉक्टर जी परमेश्वर नायब वजीर आला बने हैं, जबकि 12 लेजिस्लेचर ने काबीनी वजरा की हैसियत से भी हलफ लिया है। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में आग लगने के एक बड़े हादसे में 21 अफराद की जान चली गई है। पुलिस ने गैर इरादतन कत्ल के इल्जाम के तहत FIR दर्ज की है। मौसमियात के महकमे ने कल केरलम और माहे में बहुत शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। और बैडमिंटन में भारत के आयुष शेट्टी चीन के वैंग होंग यांग को हराकर इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने तेल मार्केटिंग कंपनियों के लिए एक मरतबा दी जाने वाली बजट इमदाद के तहत 10,000 करोड़ रुपए की रकम को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद भारतीय एयरलाइन कंपनियों को उनकी घरेलू और बैन अल-अक़वामी परवाजों के लिए हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतों को मुस्तहकम रखने में मदद फराहम करना है। मगरबी एशिया कशीदगी के सबब ईंधन की कीमत में पैदा होने वाले गैर मामूली अदम इस्तेहकाम के दौरान ये मदद एयरलाइन कंपनियों को एटीएफ की कीमतों को मुस्तहकम करने में मदद की खातिर फराहम की जाएगी। नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए इत्तलातो नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि ये अपने आप में काफी फंड है जो भारतीय तैयारा बरदार कंपनियों को हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतों को मुस्तहकम रखने में मदद फराहम करेगा।
5: एटीएफ प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। एटीएफ प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल एटीएफ प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
4: मरकजी काबीना ने 9,585 करोड़ रुपए की माली अखराजात के साथ दिल्ली एनसीआर इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को तब्दील करने की खातिर कौमी राजधानी खित्ते से मुतालिक मंसूबा बंदी बोर्ड की मदद के लिए एक स्कीम को भी मंजूरी दी है।
5: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
4: इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने उड़ीसा के रामेश्वर से पारादीप तक एक नई साहिली शाहरा की तामीर की भी मंजूरी दी है, जिसकी कुल लंबाई 163 किलोमीटर से ज्यादा है। مغربی بنگال میں اہم سیاسی واقعے کے تحت

0: रीता ब्रता बनर्जी को मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली में अपोजिशन का लीडर मुकर्रर किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के लेजिस्लेचर के एक बागी ग्रुप को एक अलहदा कानून साज पार्टी के तौर पर असेंबली के स्पीकर की जानिब से तस्लीम किए जाने के बाद ये तकरीरी सामने आई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: रीता ब्रता जो CPIM के राज्यसभा के साबिक रुकन पार्लियामेंट हैं, वो बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए और उन्हें तकरीबन 60 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल है, जो पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों के कानून के तहत जरूरी दो तिहाई से ज्यादा है। ममता बनर्जी के ग्रुप ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को ओपोजिशन का लीडर नामजद किया था। स्पीकर से मीटिंग के बाद नामा निगारों से बात करते हुए रीता ब्रता बंदोपाध्याय ने दावा किया है कि बागी लेजिस्लेचर्स ने अब ऐवान में हकीकी और असल ओपोजिशन तश्कील दी है। उन्होंने कहा कि उनका ग्रुप एक तामीरी ओपोजिशन का किरदार अदा करेगा और जब जरूरत होगी हुकूमत की हिमायत करेगा, लेकिन जिन पॉलिसियों की वो मुखालफत करेगा उन पर साबित कदम रहेगा। तृणमूल कांग्रेस के दरमियान शदीद सियासी बहरान के तहत ये वाकया सामने आया है, जिसे हालिया असेंबली इंतखाबात के बाद अंदरूनी बगावत का सामना है। पार्टी ने इससे पहले अरकान असेंबली रीता ब्रता बंदोपाध्याय और संदीपन साहा को मुबैना तौर पर पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों की बिना पर पार्टी से निकाल दिया था। सियासी माहिरीन इस वाकये को जब से वो इख्तदार में आई हैं उस वक्त से ममता बनर्जी की क्यादत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज करार दे रहे हैं। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: कर्नाटक में कांग्रेस के सीनियर लीडर DK शिवकुमार को रियासत के 25वें वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया है। गवर्नर थावरचंद गहलोत ने उन्हें ओहदे का हलफ दिलाया। डॉक्टर बी परमेश्वर, जिन्होंने सिद्धरमैया काबिना में दाखिली उमूर के फराइज अंजाम दिए थे, उन्हें नायब वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया। 12 कानून साजों ने भी काबीना वुजरा के तौर पर हलफ लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने DK शिवकुमार को वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाए जाने पर मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने उनकी मुद्दत कार के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आज सुबह मालविया नगर के एक होटल में भयानक आग लगने के वाकये में गैर मुल्की शहरियों समेत 21 अफराद हलाक हो गए, जबकि 40 दीगर को बचा लिया गया। जुनूबी दिल्ली के DCP अनंत मित्तल ने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है और जख्मियों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है। अभी 26 अफराद जेरे इलाज हैं। 10 पुलिस एहलकारों को भी आग में फंसे हुए अफराद को बचाने की कार्रवाई के दौरान सांस लेने में दुश्वारी के सबब अस्पताल में दाखिल कराया गया। दिल्ली पुलिस ने गैर इरादतन कत्ल के इल्जाम के तहत FIR दर्ज की है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली पुलिस ने जुनूबी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक होटल में भयानक आग लगने के वाकये में गैर इरादतन कत्ल के इल्जाम के तहत FIR दर्ज की है। इस सानहे में कम से कम 21 अफराद हलाक हो गए। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने वाकये की छानबीन का हुक्म जारी किया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू ने कहा है कि DM, DCP और MCD के डिप्टी कमिश्नर की मुश्तरका क्यादत में कल से एक माह के दौरान आग लगने की रोकथाम पर अमल आवरी से मुतालिक मुआयने, ऑडिट्स और अदम तामील की सूरत में सीलिंग की कार्रवाई करने के लिए होटल्स, गेस्ट हाउसों, नर्सिंग होम्स, कोचिंग सेंटर्स और दीगर मराकज के मुआयने की मुहिम शुरू की जाएगी। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधा कृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आग लगने के सानहे में हुए जानी नुकसान पर रंजो अफसोस का इजहार किया है। छत्तीसगढ़ में शहरी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात के वोटों की गिनती कल होगी। 3 महलों में हुए पंचायती इंतखाबात के नतीजे का ऐलान भी कल ही होगा। शहरी बल्दियाती इदारों के आम और जिमनी इंतखाबात और 3 महलों में हुए पंचायती इंतखाबात पिछले पीर को हुए थे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की गुज़श्ता 12 साल के दौरान दूर अंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के तहत भारत में खातिर ख्वाह तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और जवानों के फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की तरफ से किए गए इकदामात के बारे में एक खुसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम भारतीय मुतवस्सित तबके को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए इकदामात के बारे में बात करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: गुज़श्ता 12 बरसों में हुकूमत ने वसी इस्लाहात के

0: ये भारतीय मुतवस्सित तबके को बाख्तियार बनाया है। टैक्स निजाम को सहल बनाया, बैंककारी को मुस्तहकम बनाया और पेंशन निजाम ने इस तबके के माली तहफ्फुज को मजीद बेहतर बनाया है। नए टैक्स निजाम के तहत 12 लाख रुपए सालाना की आमदनी वाले अफराद को टैक्स से मुस्तस्ना रखा गया है। इसके अलावा जीएसटी में इस्लाहात के जरिए रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में कमी आई है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी स्कीम के तहत करोड़ों अफराद की जिंदगी में नुमाया तब्दीली आई है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने कहा कि इस स्कीम से किराए पर रहने वाले अफराद को नुमाया राहत मिली है।
1: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं।
0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 हेल्थ कार्ड जारी किए गए जिससे आम लोगों को हिफ्जाने सेहत के शोबे में तहफ्फुज फराहम किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम के तहत जन औषधि केंद्रों पर मयारी जेनेरिक दवाएं 50-80% कम कीमतों पर दस्तयाब हैं। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए बिहार के ब्रह्मदेव ने कहा कि इन केंद्रों पर आम दुकानों के मुकाबले दवाएं निहायत ही किफायती कीमतों पर दस्तयाब हैं।
2: लगभग एक साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है। डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
0: 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी आम आदमी को बाख्तियार बनाने के अमल में एक मजबूत अवामिल साबित हुई है। इस स्कीम के तहत अहल मुस्तफिदीन को अब तक 40 लाख करोड़ रुपए के कर्जे तकसीम किए जा चुके हैं। जैसे जैसे आमदनी में इजाफा हो रहा है और मौके वसी हो रहे हैं, भारतीय मुतवस्सित तबका मुल्क की तरक्की, उमंग और खुशहाल मुस्तकबिल में फाल रोल अदा कर रहा है। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शबाना बेगम।
3: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क के वजीर आजम के तौर पर लगातार तीसरी बार ओहदा संभालने पर मेटे फ्रेडरिक्सन को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारत और डेनमार्क के दरमियान बाहमी एतमाद, मुश्तरका अकदार और पायदार मुस्तकबिल के मुश्तरका अज़्म पर मबनी शराकत दारी है। वजीर आजम ने कहा कि वो भारत डेनमार्क ग्रीन कलीदी शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए जनाब फ्रेडरिक्सन के साथ करीबी तौर पर मिलकर काम करने के मुंतजर हैं। लाओस के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा थोंग सावन फोम विहाने ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान सदर जमहूरिया ने कहा कि दोनों ममालिक के दहरीना सकाफती ताल्लुकात हैं जो बुद्ध मत के मुश्तरका विरसे और रामायण से जाहिर होते हैं। उन्होंने कहा कि सिफारती ताल्लुकात के क्याम के 70वें सालगिरह का जश्न भारत लाओस दोतरफा ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी एलियोना रॉड्रिग्स कोम्स भारत के 5 रोजा दौरे के लिए नई दिल्ली पहुंच गई हैं। उमूर खारजा, इक्तिसादियात और खजाना के वजरा और दीगर हुकाम पर मुश्तमिल एक वफ भी उनके हमरा भारत तशरीफ लाया है। दौरे के दौरान मोहतरमा रॉड्रिग्स वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दोतरफा तबादले ख्याल करेंगी। इस तबादले ख्याल में भारत वेनेजुएला ताल्लुकात के वसी तर पहलुओं का जायजा और तवानाई के तहफ्फुज, तजारत व सरमायाकारी, दवासाजी, हिफ्जान सेहत, नकल व हमल और काबिले तजदीद तवानाई के शोबों में मजीद तआवुन के लिए राह हमवार करना शामिल है। भारतीय कंपनियों ने श्रीलंका के बुनियादी ढांचे और तवानाई के शोबे में अहम कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए हैं जिससे दोनों पड़ोसी मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए इक्तिसादी तालमेल की अक्कासी होती है। लंका आईओसी पीएलसी ने सापू गासकांडा पावर स्टेशन के प्लांट ए फॉर 2026-27 के लिए 3,16,000 लीटर लुब्रिकेटिंग ऑयल सप्लाई करने का 392.47 मिलियन श्रीलंकाई रुपए की मालियत का ठेका हासिल किया है। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने केरलम और माहे में बहुत तेज बारिश के पेश नजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, शिमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों, मगरबी बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, अंडमान और निकोबार जजायर और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन के दौरान बहुत तेज बारिश की पेशगोई है। महकमे ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में कल गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। उन्होंने चीन के वैंग होंग यांग को हराकर शानदार वापसी की है। मिक्स डबल्स मुकाबले में भी भारत के रोहन कपूर और ऋत्विका गाडे की जोड़ी ने चीनी ताइपे की जोड़ी को हराकर एक और जीत दर्ज की है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों की मदद के लिए एटीएफ की कीमतों को मुस्तहकम करने की खातिर 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उसने दिल्ली एनसीआर इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने की खातिर कौमी राजधानी खत्ता मनसूबाबंदी बोर्ड को भी मंजूरी दी है। पार्टी से निकाले गए तृणमूल कांग्रेस के रुकन असेंबली रीता व्रता बनर्जी को मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली में अपोजिशन का रहनुमा मुकर्रर किया गया है। कांग्रेस के लीडर डीके शिवकुमार ने कर्नाटक के 25वें वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। डॉक्टर जी राम परमेश्वर नायब वजीर आला बने हैं, जबकि 12 लेजिस्लेचर ने काबिनी वजरा की हैसियत से हलफ लिया। दिल्ली के मालविया नगर इलाके में आग लगने के एक बड़े हादसे में 21 अफराद की जान चली गई। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Chaka Mishake. ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है मॉनसून पूर्वानुमान, कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जब तपती धरती की दरारें आसमान की ओर उम्मीद से देखती हैं, जब किसान की निगाहें खेत से ज्यादा क्षितिज पर टिक जाती हैं, जब गांव की चौपाल से लेकर देश के बाजार तक एक ही सवाल गूंजने लगता है, मॉनसून कब आएगा, तब ये सिर्फ मौसम का इंतजार नहीं होता, ये इंतजार होता है नई फसल का, नए अवसरों का, नई उम्मीदों का। भारत में मॉनसून महज बारिश नहीं है, ये खेतों की धड़कन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है और करोड़ों लोगों के सपनों का आधार है। इसकी चाल तय करती है कि खेतों में कितनी हरियाली होगी, गांव में कितनी खुशहाली होगी और अर्थव्यवस्था की रफ्तार कितनी तेज होगी। यही वजह है कि मॉनसून का हर पूर्वानुमान केवल मौसम विज्ञान का विषय नहीं, बल्कि कृषि, ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत बन जाता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, मॉनसून का पूर्वानुमान, कृषि, ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। हमारे साथ हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि इस वर्ष का मानसून क्या संदेश लेकर आ रहा है, किसानों के लिए इसमें क्या संभावनाएं हैं और ग्रामीण भारत और अर्थव्यवस्था पर इसके क्या दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अखिल जी आपके साथ। आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस साल मौसम विभाग ने जो मॉनसून का पूर्वानुमान जारी किया है, उसमें डायनेमिक और सांख्यिकीय मॉडल के क्या संकेत हैं? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमारी पूर्वानुमान तकनीक भी बदली है और उसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंसी भी देखने को मिली है।
3: जो भारत मौसम विज्ञान विभाग जो नॉर्मल फोरकास्ट को हम बोलते हैं, जो मॉनसून की वर्षा के लिए फोरकास्ट जारी करता है, इसके लिए अब भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है पिछले कुछ वर्षों से एक डायनेमिक जो है मॉडल का उपयोग कर रहा है, जिसमें स्टैटिस्टिकल यानी कि सांख्यिकीय से संबंधित जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, उसके साथ साथ जो डायनेमिकल मॉडल्स होते हैं क्लाइमेट के, वो भी रन किए जाते हैं। फिर उन दोनों को आधार बना करके जो वर्षा का क्या रेंज रह सकता है आने वाले मानसून के सीजन के दौरान, ऋतु के दौरान, उसको जो है जारी किया जाता है। तो अभी अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों से अगर आप उस डेटा को भी देखेंगे तो जो ये मॉनसून का जो पूर्वानुमान जा रहा है यानी कि फोरकास्ट में जो एक्यूरेसी है उसमें भी काफी जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफी बेहतर हुई।
1: जी डॉक्टर डबास, चूंकि आप कृषि वैज्ञानिक हैं और जब आप बोलते हैं तो भारत के किसान बहुत गौर से सुनते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान को देखते हुए इस खरीफ के मौसम में किसानों को किस तरह की फसल योजना अपनानी चाहिए, क्या कम पानी वाली या जल्दी पकने वाली किस्मों पर ध्यान देना उन्हें चाहिए?
2: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बार हमें उम्मीद है कि थोड़ी वर्षा कम है, 10% के करीब कम बता रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, क्योंकि फसल जो है पानी से ज्यादा जरूरी तो कौन कौन से स्टेज पे उसको कोई सूखा ना पड़े, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जहां तक हमारी कृषि विज्ञान का सवाल है, इस समय हमारे पास 700 से अधिक

0: विज्ञान केंद्र है, लगभग 80 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं और आईटीआर इंस्टीट्यूट है जो कि किसानों को गाइड करने के लिए और भारत सरकार की तरफ से किसान कॉल सेंटर 24 आवर काम कर रहा है। हमारे पास ऐसी किस्में हैं जो कम पानी में तैयार हो जाती हैं, हमारे पास कुछ ऐसी विधियां हैं जिसमें कम पानी लगता है और पैदावार अच्छी मिलती है, और साथ साथ में हमारे जो किसान है उसको हमें शिक्षित करना है कि जो भी पानी जमीन पे गिरे उसमें कम से कम रन ऑफ से मतलब फ्लड के तौर में बहे, ज्यादा से ज्यादा पानी हमारी जमीन मिट्टी के अंदर जाए और उसका सदुपयोग कर पाए, और पानी की जो फसल को होता है उसके साथ साथ में उससे फसलों के बहुत सारे दुश्मन है जो उस पानी को चुराने की कोशिश करते हैं, इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है खरपतवारों का। तो अगर हम हमारी जो कृषि क्रिया ऐसे करेंगे जिससे कि पानी की भी बचत हो, खरपतवार का नियंत्रण हो, तो ये जो 10% पानी की जो वर्षा इस बार हमें कम पूर्वानुमान है, इसके बावजूद भी हम खरीफ के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि बीज के साथ साथ हमें एक तो जितने भी हमारे पास देसी खाद है, खासकर चाहे कुरडी का खाद हो, चाहे हमारे पास वर्मी कम्पोस्ट हो, चाहे बायोगैस की सलरी हो, अगर बायोगैस की सलरी और वर्मी कम्पोस्ट है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये खाद न केवल हमारी फसलों को पोषण देते हैं बल्कि हमारी जमीन की जलधारण क्षमता को बढ़ाते हैं, और साथ साथ में बरसात से पहले ही हमें अपने खेतों की जुताई भी करनी है, और जुताई करने के साथ साथ में उसकी मेड़बंदी को मजबूत करना है कि जो भी बूंद गिरे वो या तो हमारे खेत में मिट्टी में नीचे जाए, जमीन के अंदर जाए, या हमारी फसल को मिले, और कम से कम जो पानी का ह्रास जो है वो रनऑफ के तौर पर हो या खरपतवार ले पाए, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरी ध्यान रखने वाली बात होती है, जो भी हम फसल लेते हैं उसमें कुछ क्रिटिकल अवस्थाएं होती हैं जिसमें हमारे किसानों को जो भी बरसात का पानी होता है वो इकट्ठा करके उसमें अगर हम उपयोग कर पाते हैं तो उसके बावजूद भी हम अपना फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारा जो कृषि विज्ञान तंत्र है और साथ साथ में जो हमारा मौसम विभाग है, ये जब दोनों मिलकर क्योंकि काम कर रहे हैं, इसमें मौसम विभाग की तरफ से हर आईसर इंस्टीट्यूट को, हर कृषि विज्ञान केंद्रों को काफी सूचना जाती है कि हफ्ते में के दो दिन बाद मंगलवार को शुक्रवार को कि नेक्स्ट 5 डे कैसा मौसम रहने वाला है, क्या पूर्वानुमान है, उसी के आधार पे हमारे कृषि वैज्ञानिक हर एक सब्जेक्ट के बैठते हैं और वो बताते हैं कि हमारे किसानों को कौन सा बीज बोना है, कब बोना है, कैसे बोना है, बीज की ट्रीटमेंट किससे करना, उपचार कैसे करना है, और हमें इस हालात से निपटने के लिए हमारे साथ में हमारा जो प्रसार तंत्र है, खासकर हमारा दूरदर्शन मास मीडिया है और हमारे ऑल इंडिया रेडियो है और साथ में दूसरी जो चीजें हैं वो भी किसानों को एजुकेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम इसका लाभ उठाएंगे, हम इससे किसी तरह हरास नहीं होने देंगे और इस विपरीत परिस्थिति को भी हम एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़े, उत्पाद की गुणवत्ता भी बेटर हो, हम कीड़े मकोड़े बीमारियों का भी ठीक से प्रबंध कर पाए और साथ साथ में हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हुए हर बूंद का सदुपयोग करके अधिक से अधिक अन्न सब्जी फल और सभी फूल और सभी चीजें उगाएं।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव आपसे ये समझना चाहेंगे कि अक्सर देखा जाता है कि देश में सामान्य मानसून का औसत तो ठीक रहता है लेकिन कुछ राज्यों में सूखा और कुछ में बाढ़ आ जाती है, इस बार वर्षा के जो स्थानिक वितरण को लेकर मौसम विभाग का क्या आकलन है?
2: मानसून जो है वो हर साल एक नई तरह की परिस्थिति को लेकर के आता है, तो इस वर्ष भी जो मानसून में जो वर्षा है पूर्वानुमान दिया गया है उसके अनुसार वो करीब करीब 90% रहने की संभावना है, जो लॉन्ग टर्म एवरेज है यानी दीर्घावधि औसत का, जिसमें प्लस माइनस 4% की कमी हो सकती है। अब ये जो वर्षा का पूर्वानुमान किया गया है ये अगले 4 महीनों के लिए जो है वो किया गया है, यानी कि जून से लेकर के सितंबर तक का। अब इसमें ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि जैसे आपने अभी बताया कि कुछ राज्यों में जो मानसून की वर्षा है वो कम हो सकती है, कुछ राज्यों में ज्यादा हो सकती है। इसमें अभी तक का जो स्थानिक जो हमारा स्मरण है पूर्वानुमान का, उसमें ये है कि जो पूर्वोत्तर राज्य है यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहां पर जो वर्षा है वो करीब करीब सामान्य रहने की संभावना है उत्तर पूर्व भारत में, यानी कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज दीर्घावधि औसत का 94 से 106% तक की रेंज में वर्षा हो सकती है। वही मध्य भारत में और दक्षिण पूर्वी भारत में 94% जो है दीर्घावधि औसत का उससे कम वर्षा रहने की संभावना है, उत्तर पश्चिम भारत में 92% यानी कि 92% से कम वर्षा रहने की संभावना है, यानी कि वर्षा जो है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है। हालांकि इसमें ये भी जरूरत समझने की बात है कि ये जो वर्षा है ये बहुत ही इवन तरीके से चारों महीनों में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहती है, कभी किसी समय में ज्यादा वर्षा मिल जाती है, इसके कई बार फ्लड की सिचुएशन देखने को मिलती है, कई बार मौसम ब्रेक कंडीशन भी आती है जब वर्षा काफी घट जाती है। तो इसके लिए भारत मौसम विभाग लगातार पूर्वानुमान देता रहता है, इसमें जैसे

0: चलिए अगर हम बात करें तो सप्ताह में 2 बार अगले 5 दिनों का वितरण किया जाता है। इसके साथ साथ हर बृहस्पतिवार को बारिश से संबंधित एक्सटेंडेड रेन फोरकास्ट जारी किया जाता है। इसमें अगले 4 हफ्तों के लिए सप्ताहवार यानी कि हर सप्ताह में कैसा वर्षा रह सकती है उसका भी पूर्वानुमान जारी किया जाता है। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इसमें जो हमारा मुख्य रूप से जो मॉनसून कोर जोन है
1: जी
0: यानी कि वो क्षेत्र जो कि ज्यादातर मौसमी वर्षा पर जो निर्भर करता है कृषि के लिए, वहां पर जो है वर्षा का पूर्वानुमान भी जो हमारे अभी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है उसमें सामान्य से कम वर्षा की संभावना जो है वो दर्शाई गई है। तो इसको देखते हुए जो मौसम की जो पूर्वानुमान किए जा रहे हैं स्थानीय स्तर पर भी और डिफरेंट टाइम फ्रेम के लिए यानी कि जो हर दिन दैनिक रूप में पूर्वानुमान किए जाते हैं, इसके साथ साथ में जो एक्सटेंडेड रेंज यानी कि विस्तारित रेंज का पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग करता है उसका भी बहुत अच्छे से उपयोग होना बहुत जरूरी है ताकि बहुत कुशल रूप से जो ये प्रिपरेटरी चीजें हैं उनको मैनेज किया सके, एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजों को मैनेज किया जाए।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर डबास, आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि जहां पर कम बारिश होने की आशंका जताई जा रही है वहां किसान किस तरीके से अपनी फसल का ध्यान रखें, और जैसा कि अभी डॉक्टर श्रीवास्तव बता रहे हैं कि कुछ राज्यों में ज्यादा बारिश की भी संभावना है, यदि मानसून के दौरान अचानक बहुत भारी बारिश होती है तो जल भराव से फसलों को बचाने के लिए किसानों को कौन से बुनियादी वैज्ञानिक उपाय पहले से कर लेने चाहिए?
2: हमारे जो किसान है वो हमें क्षेत्र वाइज हम उसको बांट सकते हैं। जैसे राजस्थान पूरा एरिया है, इसमें हम लोगों ने बहुत किसानों को आगाह किया हुआ कि उन्होंने खेतों पे टैंक बना रखे, तालाब बना रखे हैं, उनकी कोशिश होती है जो भी ज्यादा बारिश हो उसको टैंक में जाए। और इसी तरह से हमारे पूरे देश में सभी नदियों पे बांध बने हुए हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि अपने आवश्यकता के अनुसार पानी को इकट्ठा रखें और पानी को पूरा कितना हमारे पास पानी है, कितने आगे बारिश होने वाली है, कितना भी छोड़ना है तो ये बैराज से हम लोग नियंत्रण करने की कोशिश सरकार करती है। और इसी का फायदा उठा के किसानों को भी हम गाइड करते हैं कि जिन क्षेत्रों में अधिक बारिश होने वाली है वहां पे हम धान की फसल या जो फसलें ज्यादा पानी चाहिए उसका रिकमेंड करते हैं। और ये भी हम किसान को आगाह करते हैं कि जो पानी खेत से निकालना, क्योंकि जल निकासी भी बहुत जरूरी है, अगर हमें फसल अच्छी लेनी है और बरसात ज्यादा है तो वहां पे जल निकासी का भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब जल निकासी किसान करे तो इस आधार पे करे कि उसकी जो उपजाऊ मिट्टी भी ना जाए, फसल को नुकसान ना हो और मौसम विभाग को ध्यान में रखते हुए इन बातों के, क्योंकि किसान की जितनी भी कृषि क्रियाएं आगे जो पूरे 4 मानसून के जो महीने रहेंगे वो हम लोग हर वीक में 2 बार बताते हैं किसानों को और सभी कृषि विज्ञान केंद्र भी और सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी, हम ये बताना चाहते हैं अगर बरसात की संभावना है तो उसमें किसान को क्या करना है, क्या नहीं करना है और कौन सी विधि अपनानी है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा धान का ही, अगर धान की सब क्षेत्र नीचे है जिसमें पानी खड़ा होता है तो हमारे पास धान के अलग अलग किस्में हैं जो अलग अलग ऊंचाई में भी और पानी को भी सहन कर सकती हैं। और अगर बरसात कम हो रही है लेकिन हमें धान फिर भी पैदा करना है, खासकर नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट में जहाँ के, क्योंकि बासमती का हमारा एक्सपोर्ट लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा का है और इसमें हमें लगातार पैसा मिलता है और हमारा देश बासमती के नाम से काफी जाना भी जाता है, तो बासमती के में भी हमें एक तो डायरेक्ट सीडिंग के लिए बहुत सारी नई किस्में निकाली हैं जिसमें 35% पानी बचता है। इसी तरह से SRI विधि से भी अगर हम बासमती के चावल की खेती करते हैं तो 30-35% पानी बचता है और साथ में फसल भी अच्छी होती है, कीड़े बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम किसान को पहले से एजुकेट करके रखें जिससे कि किसान अपनी बचत करते हुए और जहां पानी की संभावना बहुत कम है तो वहां हम किसानों को कहेंगे धान जैसी फसल ना लगा के या तो मक्का लगाएं या मोटे अनाज लगाएं या दलहनी फसल लगाएं, लेकिन जो भी फसल लगाएं उनमें खरपतवार नियंत्रण और निराई गुड़ाई ये एक विशेष योगदान है, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है क्योंकि खरपतवार तो पानी के साथ साथ में न्यूट्रिएंट भी चुराई करते हैं, मतलब किसान से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो निराई गुड़ाई है वो एक फसल की जड़ों को एक ऐसा एटमोसफियर प्रदान करती है जिससे कि पौधे की जड़ें काफी ग्रोथ करती हैं और वो दूर तक के पानी के खींच लेती है और पानी एकदम से सीधा वाष्पीकरण से उड़ता नहीं है बल्कि जमीन में बना रहता है। और कुछ क्रिटिकल अवस्था पर हम किसानों को बार बार ध्यान देते हैं कि इस समय हमें पानी की वो विधि अडॉप्ट करनी है जैसे ड्रिप सिंचाई है या स्प्रिंकलर विधि है जहाँ पे हम कम पानी से भी ज्यादा लाभ उठा पाए। खासकर जब आपने दक्षिण भाग की बात की, मध्य भाग की बात की, जहाँ पे इस बार बारिश की थोड़ी संभावना कम लग रही है तो वहाँ पे हम किसानों को उस किस्म की सलाह देते हैं। तो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक वो भी तैयार है, साथ साथ में भारत सरकार ने अभी लास्ट तो लगभग 1 हफ्ता पहले ही एक मीटिंग ली है जिसमें सभी राज्यों के कृषि विभाग के जितने भी अधिकारी थे, साथ साथ में हमारी क्या योजना होनी चाहिए, हमारे पास कौन सी चीजों के कितने सीड है और किसान को सही समय पे सीड भी मिले, साथ साथ में उसके पास हमारे उर्वरक भी पहुंचे और किसान को सब सुविधाएं मिले, तो उसके लिए सरकार पहले से तत्पर होके ऑलरेडी कार्य योजना बना रही है। और इस समय जो हमारी कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR जो है ये पूरे देश में इस महीने को किसानों को एजुकेट करने के लिए यूज कर रही है और कृषि वैज्ञानिक गांव में जा रहे हैं उनको एजुकेट

0: कर रहे हैं, तो हमारी तैयारी पूरी है और तो वो हमारे प्रयास रहेगी किसानों को हम किस तरह से लागत को कम करने में मदद करें, कैसे पानी के संरक्षण में मदद करें, कैसे किसानों को तालाब और सब चीजों में गाइड करें। मल्चिंग इसमें एक बहुत बड़ा योगदान
1: जी
0: करती है
1: बिल्कुल
0: ताकि
1: डबाल जी,
0: सब्जी और
1: बिल्कुल सही
0: फलों
1: कह
0: में,
1: रहे हैं आप
0: तो उन सब चीजों को हम काफी जोर दे रहे हैं। और
1: जी।
0: मुझे लगता है कि हमारा देश जो है तकनीकी तौर के तौर पे और उसमें हमारे सक्षम है, और आप लोगों के सहयोग से हम बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, जब जलवायु परिवर्तन की हम बात करते हैं और जलवायु परिवर्तन के दौर में अल नीनो और ला नीना के जो संकेतक हैं वो तेजी से बदल रहे हैं, दो छोटे छोटे सवाल। पहले तो हमारे श्रोताओं के लिए अल नीनो और ला नीना को थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दें, और साथ ही उसी से जुड़ा एक सवाल ये है कि इस साल के मानसून पर इनका क्या और कितना असर देखने को मिल सकता है।
0: अगर हम एल नीनो को बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये एक तरह से ऐसी सिचुएशन होती है, ये एक तरह का सिचुएशन डेवलप होता है जो कि काफी दूर से ही भारतवर्ष के जो मौसम को प्रभावित कर सकता है। भारतवर्ष के कहे या अगर सौर ग्रह रूप में समझे तो ये पूरे ग्लोबल जो वेदर सिस्टम है, जो वेदर के इवेंट हो रहे होते हैं, प्रभावित करता है। इसमें मुख्य रूप से अगर हम एल नीनो की बात करते हैं तो जो प्रशांत महासागर, जो भूमध्य रेखा के पास का प्रशांत महासागर है, वहां पर जो समुद्र की सतह है उसमें जो टेम्परेचर है, उसका तापमान जो है, उसका धीरे धीरे वो बढ़ जाता है, यानी कि वो असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। जब प्रशांत महासागर का, जो भूमध्य रेखा के पास समुद्र सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं अल नीनो। और जब ये समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से ये ठंडा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं ला नीना। तो ये जो दो इवेंट है ये एक तरह से प्राकृतिक इवेंट है जो कुछ सालों के बाद जो हमें देखने को मिलते रहते हैं। जब समुद्र का पानी गर्म हो जाता है भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर में, तो इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि जो हवाएं हैं, जो हवा की जो एक नेचुरल जो डायरेक्शन होता है उसमें उनका जो रुख होता है ये उसको बदलने का काम करता है। हवा जो भारत में जो मानसून को खींच कर लाने वाली हवाएं हैं ये उनको कमजोर करने का एक तरह से कार्य करता है। इसलिए एल नीनो का बहुत असर जो है काफी हद तक भारत के मानसून पर देखा जाता है। इन जनरल अगर हम बात करें तो जब भी अल नीनो कंडीशन होती है तो भारत में जो वर्षा है उसमें कमी देखी जाती है। हालांकि कुछ वर्ष ऐसे भी देखे गए हैं जब अल नीनो के बावजूद भी काफी अच्छी वर्षा भारतवर्ष में देखने को मिली है। इसमें हमें ये भी समझने की जरूरत है कि जब ला नीना कंडीशन होती है तब भारतवर्ष में जो वर्षा है उसका जनरल ट्रेंड अगर हम देखें, एक अगर जनरली हम बात करें उसके बारे में, तो वो वर्षा के लिए सहायक सिद्ध होता है। जबकि एल नीनो कंडीशन यानी कि जो समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो वो वर्षा के लिए नेगेटिवली काम करता है, नकारात्मक रूप से उसको प्रभावित करता है। लेकिन जो मॉनसून सिस्टम है वो अपने आप में बहुत वृहद सिस्टम है, इसमें सिर्फ एक फैक्टर का जो है यानी कि एक जो इवेंट है जैसे एल नीनो, सिर्फ इसका ही असर नहीं होता है, बहुत सारे अन्य कारक हैं जो भारत के मॉनसून को प्रभावित करते हैं। जैसे कि इंडियन ओशन डायपोल यानी कि जो हमारा जो हिंद महासागर में जो डायपोल स्थिति बनती है उसका भी असर होता है कई बार। तो सिर्फ एक कारक से भारत के मानसून का जो है डायरेक्शन तय नहीं होता है, लेकिन एलिनो को इन जनरल देखा जाता है तो ये एक काफी ज्यादा जो है प्रभाव डालता है भारत के मानसून के ऊपर। अगर हम बात करें 2026 की यानी कि जो आने वाले जो अभी मानसून का सीजन हमारा शुरू ही हो गया है लगभग, इसमें तो अभी जो एलिनो की कंडीशन है वो अभी न्यूट्रल कंडीशन से एलिनो की वीक कंडीशन की ओर जो है ट्रांजिशन चल रहा है, यानी कि मॉनसून के दौरान एलिनो कंडीशन जो है डेवलप करने के गाइडेंस जो है वो सारे मॉडल दिखा रहे हैं और यही पूर्वानुमान भी दिया गया है। यानी कि मानसून के दौरान एलिनो कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है। प्रशांत महासागर में समुद्र के जो सतह तापमान है वो असामान्य रूप से गर्म होगा जो कि हवाओं के रुख को निर्धारित तौर पर प्रभावित करेगा, और हम इसका असर भी मौसम की जो मानसून की जो वर्षा है इसमें भी हमें देखने को मिल सकता है। और इसी को देखते हुए यही कारक रहा है कि जो वर्षा का पूर्वानुमान है वो बिलो नॉर्मल यानी कि सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान में इसकी बहुत बड़ा योगदान रहा है।
1: जी डॉक्टर डबास, उन किसानों के लिए आप क्या कहेंगे जहां पर जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचयन को लेकर कुछ किसान काफी सजग रहते हैं, उन किसानों को किन व्यवहारिक उपायों पर ध्यान देना चाहिए?
0: ये जो हमारे किसान हैं जिनके पास में जल सिंचाई की बहुत अच्छी विधियां हैं और साथ साथ में सजग हैं, इनको मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो एक अच्छी किस्म का चुनाव करना है, बीज का सही समय से प्रबंध करना है। प्रबंध करने के बाद में हमारे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कुछ पोषक तत्व तो वैसे होते हैं जो हमारी फसल को सूखे से लड़ने की भी ताकत देते हैं और उसकी जड़ों के विकास को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जिससे कि उसको फायदा होता है। तो एक संतुलित मात्रा में खाद का

0: पेट्रोल बिल आते हैं, साथ साथ में पानी का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो अगर हम पेट्रोल प्रबंध कर लेते हैं उससे भी बहुत बड़े पानी की बचत होती है और साथ साथ में हमारी मिट्टी का व्यवस्था रहता है। और निराई गुड़ाई समय पर होना बहुत ही जरूरी है। और इसके साथ साथ में हमें जो पानी हमारे पास है वो सही टाइम है, मोस्टली अगर आपके पास अपनी इरीगेशन फैसिलिटी है तो पानी का सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। और क्रिटिकल स्टेजेस पे विशेष ध्यान देने की जो जरूरत है, जैसे कि बाली निकलनी है, बाली आने वाली है, उग रहा है या फुटाव चल रहा है। और कई बार कुछ किसान भाई ज्यादा खेत में पानी खड़ा रखते हैं, उससे नुकसान भी होता है, खासकर धान की फसल में। तो अगर हम पानी सूखने दें और फिर पानी लगाएं तो उससे लगभग 30 से 35% पानी की बचत होती है और पैदावार भी अच्छी आती है, कीट और बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो मैं उन किसानों को ये कहना चाहूंगा कि उसका उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से मक्का की फसल में भी कुछ खास क्रिटिकल स्टेजेस होती है, उसका विशेष ध्यान रखना है, खासकर जब उसमें फुटाव हो, जब टेसल बने, उसमें फ्लावरिंग आए, तो उस समय पानी की कमी ना हो तो बहुत अच्छा रहता है। और खरपतवार प्रबंधन यहाँ भी करना है और साथ साथ में मक्का के में कीट प्रबंधन पे भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आजकल एक फॉल्स आर्मी वर्म आ रहा है जो काफी नुकसान करता है। तो उसको हम समय से पहले अगर टैकल कर लेंगे तो हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। साथ साथ में जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक लगातार संपर्क में बने रहें और जितना भी अधिक से अधिक मात्रा में देसी खाद का प्रयोग करेंगे उससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी और साथ साथ में मिट्टी का जब उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो हमारी फसल अच्छी पैदा होगी। तो वह हमें विशेष ध्यान रखना है और संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग करें, किसी भी हालत में घबराएं नहीं। और हमें अपने किसान पर पूरा विश्वास है कि किसान हमारा बहुत सक्षम है, सरकार की योजनाएं अच्छी हैं और आपका जो विस्तार तंत्र है, खासकर मास मीडिया है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल,
0: और साथ में जो हमारे मौसम विभाग का जो सहयोग है, तो इसके सहयोग का हम इसकी सूचनाओं का जानकारी का उपयोग करते हुए मुझे लगता है कि इस स्थिति में बहुत अच्छी तरह उभर के आएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे।
1: जी डॉक्टर श्रीवास्तव, एक और बड़ा बदलाव ये दिख रहा है कि अब कम दिनों में बहुत भारी बारिश, जिसे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स कहते हैं, वो हो जाती है और शुष्क दिन यानी ड्राई स्पेल्स बढ़ रहे हैं। मौसम विज्ञान इस नए पैटर्न को कैसे देख रहा है?
0: तो इसमें हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जैसे जैसे धरती का एटमॉस्फेयर का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है तो इसके जो मॉइस्चर को होल्ड करने की, यानी कि ये कितने अपने अंदर पानी को हवा के अंदर ऐसा वेपर या नमी को अपने अंदर रख सकता है वो भी बढ़ जाता है। हर एक डिग्री राइज पर लेते ह्यूमिडिटी है तो रिटेन करने की कैपेसिटी करीब करीब 7% जो है बढ़ जाती है। यानी कि अभी जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो अवेलेबिलिटी है पानी की, वाटर वेपर की, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जब इस तरह के जो गर्म एनवायरमेंट की कंडीशन होती है, ये लगातार कन्वेक्टिव एक्टिविटीज को, जो कि सडनली गर्मी की वजह से एकदम से क्लाउड डेवलपमेंट को और एसोसिएटेड उसके साथ में बहुत ही इंटेंस बारिश को जो है काफी ज्यादा सहायक होता है। और क्योंकि ऑलरेडी इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है एटमॉस्फेयर में, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं जहां पर बहुत सारी वर्षा एक बहुत ही सीमित समय में हो जाती है और उसके बाद में काफी कई दिनों तक फिर ड्राई स्पेल देखने को मिलता है, इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। तो जैसे कि ये सब मौसम बदलाव हो रहे हैं, इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए ताकि जो भी ये वर्षा है, एक तो ये इकट्ठा इतनी वर्षा हो रही है, ये जो पानी जो हमें मिल रहा है इसका ये रन ऑफ के जरिए इसका थोड़ा वेस्टेज ना हो और इसको हम सदुपयोग कर सके, तो उसका एकत्रित करने के लिए भी कुछ ना कुछ उपाय पहले से बनाए रखे।
1: जी डॉक्टर डबास, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा मॉनसून ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को कैसे बढ़ाता है और इसका असर ट्रैक्टर, एफएमसीजी और अन्य उद्योगों पर कैसे पड़ता है।
0: जैसे ही किसान की आमदनी बढ़ती है, किसान को अच्छी फसल मिलती है, किसान पहले से तत्पर होता है क्योंकि उसको और आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, अपने सपने देखता है। तो सपनों वो चाहता है कि उसके पास अच्छी मशीनरी होनी चाहिए, अच्छी तकनीकियां होनी चाहिए और आगे के मौसम को रक्षा करने के लिए उसके पास सभी संसाधन होने चाहिए। तो वो पैसा जो है बाजार में लगाता है, बाकी चीजें बाजार में नहीं लगती हैं। तो जब भी किसी का उत्पादन बढ़ता है, किसान को पैसे ज्यादा जाते हैं, तो आपके जितने भी ट्रैक्टर हैं या मशीनरी है या फार्म इक्विपमेंट है या सीड है या दूसरी चीजें हैं, और इसके साथ साथ में हमारे जो उपभोक्ता को भी अच्छी किस्म का भोजन मिलता है और हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है तो देश का नाम होता है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कोई कम से कम 20 साल से हमारी एक्सपोर्ट धान, बासमती धान में हम आप पूरे वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं और इससे और भी अच्छा करने की संभावना है। क्योंकि किसान हमारा सक्षम है, हमारी खेती में भी जान है और गवर्नमेंट भी चाहती है, गवर्नमेंट ने काफी अच्छी परिस्थितियां बनाई है जिससे कि किसान एक्सपोर्ट कर सके। जो हमारे भारतीय किसान संगठन बने हैं, किसान उत्पादक संगठन बने हैं, वो भी इस तरफ काफी आगे बढ़ रहे हैं। और सरकार ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि कौन से जिले से कौन सा प्रोडक्ट

0: ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग हो सकती है, कैसे हम उसको जिले वो सक्षम कर सकते हैं। तो सरकार की जो योजनाएं हैं, किसान की मेहनत है और जो भी किसान का उत्पादन बढ़ता है वो सारा का सारा बाजार में आता है। जब बाजार में आता है तो पूरे देश में रौनक आती है। तो एक किसी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो भी पैसा गवर्नमेंट अलॉट करती है तो उसका फायदा सबसे ज्यादा होता है। ये हमारे जितने भी अर्थशास्त्री कृषि अर्थशास्त्री हैं उन्हें काफी प्रेजेंट किया गया, अगर हम कृषि में 1 रुपया खर्च करते हैं तो हमारी आमदनी और बाकी क्षेत्रों से कहीं ज्यादा होती है। तो इसको देखते हुए मैं कहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में सरकार को और अधिक ध्यान देने की जरूरत है और किसान को और अधिक सक्षम बनाने की जरूरत है। और साथ साथ में हमें ये देखना मंडी में भाव क्रैश ना करे। जब किसान कई बार मेहनत करता है, अच्छा उत्पादन लेता है, तो जब भाव क्रैश कर जाता है तो किसान टूट जाता है। तो सरकार को जब भाव अधिक होते हैं तो उसको तो कम करने की कोशिश करती है, लेकिन सरकार को ये भी कोशिश करनी है कि किसान को उत्पादन लागत से अधिक पैसा मिले। और ये खाली हमारी वो नहीं मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाली फसलें ही नहीं, बल्कि जो सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं, क्योंकि देश को हर चीज की जरूरत पड़ती है। तो हमें सरकार को उस पर भी थोड़ा सजग होने की जरूरत है।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, दुनिया भर की तकनीकों पर चर्चा होती है। जब कोई भी नए गैजेट्स मार्केट में आते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि अमेरिका में ये चल रहा है, यूरोप में ये चल रहा है, दुनिया के दूसरे देशों में ये चल रहा है। मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में आपसे समझना चाहेंगे कि दुनिया के अलग अलग देशों में किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और भारत ने पिछले 1 दशक में पूर्वानुमान की तकनीकों में किस तरह का बदलाव किया है और उसके क्या प्रभाव दिख रहे हैं, बहुत संक्षेप में।
0: जी देखिए, पहले तो भारत मौसम में अगर हम पूरे वैश्विक पर बात करें तो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है वो ऑब्जर्वेशन के क्षेत्र में हो रहा है। अभी जितने भी तरह तरह के मैकेनिज्म है जो मौसम को ऑब्जर्व करने के, उसमें काफी ज्यादा जो वृद्धि हो रही है। इसको साथ साथ में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है एटमोस्फेरिक प्रोसेस को लेकर के, वातावरण में एटमोस्फेयर में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे न्यूमेरिकल मॉडल्स हैं जिनको हम हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर्स पर रन करते हैं और हमें गाइडेंस मिलता है जिसके बेसिस पर हम लोग फोरकास्ट इशू करते हैं, तो इसमें भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां तक बात है भारत मौसम विज्ञान बाकी, तो पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जर्विंग नेटवर्क है, ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है, बहुत ज्यादा उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। जो हमारे सेटेलाइट सिस्टम्स है उसमें बढ़ोतरी हुई है, बहुत उन्नत हुए हैं। रडार है उसका कवरेज भी काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो ये अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जो काफी इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी को, उसको भी ट्रैक करने में काफी ज्यादा रियल टाइम में मदद मिलती है। इसके साथ साथ जो मॉडल्स हैं, जो न्यूमेरिकल मॉडल्स हम लोग यहाँ रन कर रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में भी, और साथ साथ में जो अन्य संस्थान है भारत सरकार के, वहां पर भी वो जो मॉडल्स रन किए जा रहे हैं उसमें काफी ज्यादा रिजोल्यूशन में परिवर्तन हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, और काफी हाई रेजोल्यूशन मॉडल जो फ्रेमवर्क है वो डेवलप किए गए हैं और उनके बेसिस पे जो गाइडेंस मिल रही है उसको उपयोग करके पूर्वानुमान दिया जा रहा है।
1: जी
0: इसके साथ साथ में एआई का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल अब शुरू हो गया है, और एआई एमएल को यूज करके यानी कि जो कृत्रिम जो इंटेलिजेंस है ये, इसका भी काफी भरपूर उपयोग किया जा रहा है ताकि पूर्वानुमान को और अधिक सटीक बनाया जा सके।
1: जी हाँ बिल्कुल। मानसून भारत के लिए केवल एक मौसम नहीं बल्कि जीवन, जीविका और विकास का आधार है। इसकी हर बूंद खेतों में अन्न, गांव में अवसर और अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा लेकर आती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि मानसून का पूर्वानुमान केवल बारिश का अनुमान नहीं बल्कि कृषि उत्पादन, ग्रामीण रोजगार, बाजार की मांग और देश की आर्थिक गति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेतक है। साथ ही बदलती जलवायु परिस्थितियों में वैज्ञानिक पूर्वानुमान, आधुनिक कृषि तकनीकों और जल संरक्षण के उपायों का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। डॉक्टर श्रीवास्तव और डॉक्टर डबास, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे मॉनसून पूर्वानुमान कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है।
4: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, यह कार्यक्रम कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आप ही से जुड़ा है, क्योंकि इस मैसेज के माध्यम से आप इस कार्यक्रम से सीधे तौर पर जुड़ जाते हैं। और जैसे कि यह कार्यक्रम कंपेयर्ड कार्यक्रम है, तो आज हम आपके साथ एक दिन विशेष को लेकर, एक दिन विशेष की वस्तु विशेष को लेकर हम इस कार्यक्रम को सजाने वाले हैं, संवारने वाले हैं फिल्मी गीतों के साथ और कहीं ना कहीं आपके मैसेजेस के साथ। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आज हम ही नहीं, हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मना रही है साइकिल दिवस। और उसे पूरी दुनिया चूंकि मना रही है, तो हम कहेंगे विश्व साइकिल दिवस। और श्रोताओं, इस खास दिन पर हम साइकिल से जुड़ी कुछ बातें आपके साथ साझा करेंगे और जानना की ये कोशिश करेंगे कि आपकी क्या कुछ यादें साइकिल के साथ जुड़ी हैं। अगर वास्तव में आपकी भी कुछ यादें, चाहे वो बाल अवस्था की हों, युवावस्था की हो या प्रौढ़ अवस्था में भी, अगर कहीं ना कहीं आप साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किस तरह से साइकिल आपके जीवन का हिस्सा है, किस तरह से आपको अपनी पुरानी बातें साइकिल से जुड़ी याद हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पर लिख भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मालूम ही है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। व्हाट्सएप का मैसेज का नंबर है 9457078288, यानी 9457078288। श्रोताओं, हमने आपके साथ ये बात साझा की कि आज पूरी दुनिया मना रही है विश्व साइकिल दिवस। तो इस खास दिन पर पूरे देश में साइकिल को लेकर अलग अलग मत हैं, अलग अलग बातें हैं। कुछ बातें रोचक हैं और कुछ बातें ऐतिहासिक हैं। हम इस कार्यक्रम में आपके साथ इन बातों को भी साझा करेंगे और आपके व्हाट्सएप मैसेजेस का करेंगे इंतज़ार। हम ये चाहेंगे कि आप अपने जीवन से जुड़ी कोई बात, चाहे वो 4-6 लाइन में ही क्यों ना हो, हम उस बात को आपको कंपोज करके हम तक भेजने का पूरा मौका देंगे। लेकिन इस मौके को आप गंवाइएगा नहीं, जल्दी से मैसेज टाइप करके और हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, क्योंकि आपके पास मौका है एक गीत का। आप गीत का भी आनंद लीजिए और साथ साथ मैसेज टाइप कीजिए और हमें भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9457078288 पर। फिलहाल ये गीत।

तो दोस्तों, ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे फिल्म शोर से, जिसे आवाज़ें दी थी मन्ना डे, महेंद्र कपूर और साथियों ने। गीत को लिखा था राज कवि तुलसी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। और देखिएगा, जीवन चलने का नाम ही है वास्तव में, रुक जाने का नाम जीवन नहीं है। फिर वो चलना चाहे पैदल कदम चाल हो, साइकिल हो या कोई और जरिया, जिंदगी हमेशा चलने का ही नाम है, जीवन हमेशा चलने का ही नाम है। और जैसे कि हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत में आप तक ये बात साझा की थी कि आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं अगर साइकिल का कहीं कोई योगदान है आपके जीवन में, साइकिल को आप कितना महत्व देते हैं, कोई याद आपके जीवन में साइकिल से जुड़ी है, तो आप हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर साझा कर सकते हैं। जैसा कि अब हमें ये मैसेज मिल चुका है और हम देख रहे हैं बहुत लंबा चौड़ा ये मैसेज है, और भेजने वाले हैं दीपक कंडवाल, ये कोटद्वार शहर जनपद पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से हैं, और लिख रहे हैं कि आपको उन दिनों की बात बताने जा रहा हूं जब साइकिल बड़ा क्रेज़ हुआ करता था। तब मैं गांव से शहर पढ़ाई करने आता था और मेरे घर से स्कूल 3 किलोमीटर की दूरी पर था, तो मैं अपने घर से स्कूल पैदल ही जाया करता था। कुछ समय बीतने के बाद जब मेरे दोस्त बने, उनके पास साइकिल थी, तब मैं उनके साथ साइकिल पर जाता था। मेरा भी मन था कि मैं अपने लिए साइकिल लूँ, पर घर की परिस्थिति अच्छी न होने के कारण मैं अपने लिए साइकिल नहीं ले पाया। यह बात मेरे पिताजी को भी पता थी कि मैं साइकिल लेना चाहता हूं, मगर नहीं ले पाया। फिर मेरे पिताजी ने जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके मुझे पैसे दिए कि बेटा अपने लिए साइकिल ले आओ। पैसे तो आ गए थे मेरे पास, पापा ने दे दिए थे, पर मैं 2 दिन तक अपने लिए साइकिल नहीं ले पाया। मैंने सोचा अभी ले लूँगा, तभी ले लूँगा, लेकिन किसी कारणवश नहीं ले पाया। इस दौरान मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई,

उनको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा और जो पैसे उन्होंने मुझे साइकिल के लिए दिए थे वे पैसे खर्च हो गए। मेरे लिए साइकिल से ज़्यादा मेरे पिताजी का ठीक होना ज़रूरी था, क्योंकि वे स्वस्थ रहते तो साइकिल दोबारा आ जाती। फिर कुछ दिनों बाद पापा स्वस्थ हो गए और उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और बड़े मायूस होकर बोला, बेटा मैंने आपको पैसे दिए थे साइकिल के लिए लेकिन वह पैसे मेरे इलाज पर ही लग गए। इसका उनको बड़ा दुख था। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने मेरे को बिना बताए ही मेरे लिए साइकिल ले आए। मैं बहुत खुश हुआ और साइकिल से घूमने बहुत दूर दूर तक गया और मैंने सोचा कि अब पापा को भी ज़्यादा परेशान ना करूं और अपने खर्च खुद ही उठा लूं। तो ये मैंने अपने मन में सोच लिया कि फिर मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, जो कि मैं अपनी साइकिल से ही दूर दूर जाता था। बच्चों को ट्यूशन पढ़ने और साइकिल से ही मैंने अखबार बांटने का भी काम शुरू किया, जिससे मेरे थोड़े बहुत खर्चे निकलने लगे, क्योंकि मैंने सोचा था कि पापा को भी थोड़ा आराम दूँ। आप यकीन मानो उसे उसी समय साइकिल चलाने में इतना मज़ा आता था जो कि आज कार चलाने में भी या कार में घूमने में भी नहीं आता है। उस साइकिल से मैंने अपने घूमने का भी शौक पूरा किया, अपना काम भी किया, अपने खर्च भी निकाले। भले ही उसके बाद मैं बाइक लेकर काम में लग गया, लेकिन यकीन मानो उसे उस समय का दौर जब पापा ने मुझे वह साइकिल दिलाई थी वह आज भी बहुत याद करता हूँ। और पापा मेरे बीच मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन आज भी मुझे वे बहुत याद आते हैं और उनकी दिलाई हुई साइकिल आज भी याद करता हूँ कि किन परिस्थितियों में उन्होंने मुझे साइकिल दिलाई थी, मेरा शौक पूरा किया था। वास्तव में ये हमारे श्रोता हैं दीपक कंडवाल जी, वास्तव में बहुत ये भावुक कर देने वाले शब्द आपने हमें आज साझा किए हैं इस कार्यक्रम में। वास्तव में ये सारगर्भित है आपका मैसेज आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि दिल जो है वो याद कर रहा है उन पुराने दिनों को जो कहीं ना कहीं साइकिल से जुड़े थे। और देखिएगा, साइकिल का काम आगे बढ़ना है और नदिया का काम भी आगे बढ़ना है। तो हम सुन लेते हैं एक ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, ये प्यारा सा गीत आपने सुना मन्ना डे की आवाज़ में। फिल्म सफ़र से लिया गया था ये गीत, जिसे लिखा था इंदीवर ने और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। और इसी बीच हम तक पहुंच चुका है एक और मैसेज, जो कि साइकिल से जुड़ी अपनी यादों को ताज़ा कर रहे हैं हमारे साथ। और ये लिखने वाले हैं रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से, जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार के सदस्य। और लिख रहे हैं कि आकाशवाणी परिवार को हमारा नमस्कार, सभी को साइकिल, सभी के लिए साइकिल एक ऐसी चीज़ है, अगर उसमें पेट्रोल भी डालेंगे तब भी नहीं चलेगी। छोटे होते थे तो हम कैंची बनाकर साइकिल पर जाते थे, पीछे बैग रख लेते थे, तो साइकिल तो बहुत बढ़िया चीज़ है। और हमारे घर में आज भी साइकिल है, क्योंकि मुझे साइकिल चलाना आता है, बाइक चलाना नहीं आता है, इसलिए मैं साइकिल को बहुत सजा बजा कर रखता हूँ। और मेरे पास साइकिल है, स्टील की है, मैं उसको बहुत प्यार से रखता हूँ। और साइकिल ही मेरे जीवन का एक हिस्सा है, साइकिल मेरे जीवन का साथी है। जी हाँ, बिल्कुल, साइकिल हमारे जीवन का साथी है। और जो लोग साइकिल को इतना सजा बजा कर रखते हैं, तो यकीन मानिए कि वो साइकिल की सवारी का कितना लुत्फ़ उठाते होंगे, ये हम आपके इस मैसेज से वास्तव में महसूस कर सकते हैं। जगमाल सिंह डागला जी और आपके सभी परिवार के सदस्यों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और साइकिल से जुड़ी अपनी बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। एक मैसेज हम तक और पहुंचा है, और ये लिखने वाले हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर और विद्या कुमारी। इस मैसेज में इन्होंने लिखा है कि साइकिल चलाना यानी साइकिलिंग करना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक बेहतरीन, आसान और कम प्रभाव वाला यानी लो इम्पैक्ट वाला व्यायाम है। और ये न केवल आपको शारीरिक रूप से फिट रखता है, बल्कि तनाव कम करने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी मदद करता है। और हम भी साइकिल का पूरा ख्याल रखते हैं, साइकिलिंग का पूरा ख्याल रखते हैं और साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। तो ये मैसेज, साइकिल से जुड़ा मैसेज, अपनी पुरानी यादों से जुड़ा मैसेज हम तक पहुंचाने के लिए, हमसे साझा करने के लिए विजय सुरलकर जी और आपके परिवार के सभी सदस्यों का तहे दिल से धन्यवाद। एक मैसेज हम तक और पहुंचा है, और ये है नगीना जनपद बिजनौर से अनिल विनोचा का। और लिखते हैं कि साइकिल दिवस सच एक ग्रेट डे एंड वेरी यूनिवर्सल टॉपिक। कुछ लिख रहा हूँ, सच याद आ रहा है मुझे वो दिन जब हर इंसान की पहली सवारी साइकिल होती थी। बचपन में किराए पर लेकर साइकिल चलाते थे, बड़ा मज़ा आता था। जानबूझकर देर से दुकानदार को साइकिल वापस करते थे। हर इंसान पर साइकिल होती थी, शादी में भी साइकिल मिलती थी और रेडियो भी लोग साइकिल पर लटकाकर ही चला करते थे, सुना करते थे, सॉन्ग सुनते थे, प्रोग्राम सुनते थे। अब समय बदल गया है, लेकिन आज भी बच्चे साइकिल लेते हैं। अब बहुत महंगी साइकिल आती है, युवा मोटरसाइकिल चलाते हैं, मगर बच्चे आज भी सबसे पहले साइकिल लेते हैं। उस समय बॉलीवुड पिक्चर में साइकिल के सीन डाले जाते थे। जी हाँ, वास्तव में ये आपने अपनी पुरानी यादें जो ताज़ा की हैं अनिल विनोचा जी, वास्तव में आज भी हम ये बात महसूस करते हैं कि जब परिवार में, परिवार के बच्चों को जब कोई वाहन चलाने सिखाया जाता है तो शुरुआत साइकिल से की जाती है। तो हम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उन अभिभावकों से ये एक अपील करना चाहेंगे कि आप बच्चों को सीधे तौर पर टू व्हीलर यानी स्कूटी या बाईसाइकिल की जगह

मोटरसाइकिल चलाना चलाने के लिए ना दें, उन्हें आप साइकिल चलाने का मौका दें ताकि वे शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहें और साइकिल का चलन बना रहे। इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुन लेते हैं एक और ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, ये प्यारा सा गीत आपने सुना मुकेश की आवाज़ में, फिल्म अनोखी रात। गीत लिखा इंदिवर ने और संगीत दिया रोशन ने। और इसी बीच हम तक एक मैसेज और पहुंच चुका है, और ये लिखने वाले हैं ग्राम दूल्हापुर जिला मुरादाबाद से, मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। और ये लिखते हैं कि साइकिल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे साइकिल चलाने का बहुत शौक था, लेकिन जब मेरे घर एक साइकिल थी, उससे पापा रोज़ाना काम करने जाते थे, और जब शाम को आते थे तो मैं एक घंटे के लिए साइकिल ले जाता था और बहुत मज़ा आता था। वास्तव में साइकिल चलाने का एक अपना ही क्रेज़ है, अपना ही अंदाज़ है, अपनी ही मस्ती है, अपना ही एक जुनून है। तो जो लोग साइकिल चलाते हैं, वास्तव में वो सराहना के पात्र हैं। आज के इस खास दिन पर हम उन्हें सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। और जैसे कि आज हम मना रहे हैं विश्व साइकिल दिवस, तो हम अपने श्रोताओं को बता दें कि नीदरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जो जाना जाता है बतौर साइकिलों का देश। दरअसल नीदरलैंड में सबसे अधिक साइकिल कल्चर है, और यहाँ की सबसे खास बात यहाँ के लोगों का साइकिल प्रेम है। और आपको मालूम होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा साइकिलें चाइना की सड़कों पर चलती हैं। यहाँ के हर एक घर में एक साइकिल के एवरेज में देश में 50 करोड़ से ज़्यादा साइकिलें हैं। और दोस्तों, डेनमार्क के कोपेनहेगन को सबसे अधिक साइकिल फ्रेंडली देश माना जाता है, और इसे सिटी ऑफ साइकिल

ट्रस्ट भी कहा जाता है। यहाँ की तकरीबन 52% आबादी नियमित रूप से साइकिल चला रही है, यानी तेल की बढ़ती घटती कीमतें इन्हें परेशान नहीं करती है। लोग भले ही इसे पैसे और संसाधनों की बर्बादी बताएं, लेकिन जापान दुनिया का पहला देश है जिसने अपने यहाँ कई बड़े शहरों में साइकिलों को पार्क करने के लिए अंडरग्राउंड मल्टी स्टोरी ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम लगाया हुआ है। साइकिल के आविष्कार की अगर बात करें तो साल 1817 में जर्मनी में बनी एक मैनुअल मशीन ड्रेजिन ने जर्मनी के एक सरकारी कर्मचारी ने इसका इजाद किया था, और ये दो पहिए वाली बिना पैडल की साइकिल थी और ड्रेजिन की रोड पर चलाने के लिए पैरों से ज़मीन पर धक्का मारना होता था। दोस्तों, साइकिल से जुड़ी बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें हम आपके साथ इस कार्यक्रम में साझा करते, लेकिन देखिएगा हर बार ये वक्त जो है ये कहीं ना कहीं आड़े आ जाता है और हमें मजबूर होना पड़ता है कि हम सीमित समय में ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। फिलहाल कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर, अंतिम चरण में आगे बढ़ने से जुड़ा ये प्यारा सा गीत।

तो दोस्तों ये था हमारा आज का खास कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। और जो गीत अभी आप सुन रहे थे ये था फिल्म दो लफ्ज़ों की कहानी से, जिसे आवाज़ दी थी सुखविंदर सिंह ने, गीत रचना बलजीत सिंह पदम की और राज रणजोत की, इसके साथ ही इस गीत को संगीत दिया DRGS ने। और दोस्तों देखिएगा, साइकिल से जुड़ी यादें हमारे कुछ श्रोताओं ने हमारे साथ साझा की, हमने भी साइकिल से जुड़ी कुछ रोचक बातें आपके साथ साझा की। और चलते चलते एक और रोचक बात साइकिल से जुड़ी कि साइकिल चलाना मज़ेदार तो है ही, लेकिन आपको बता दें कि इसका मेंटेनेंस कराना भी बहुत आसान है और कम खर्चीला है। रिकॉर्ड के मुताबिक एक कार की तुलना में साइकिल की सालाना मेंटेनेंस का खर्चा करीब 20 से 30 गुना कम होता है। इसी संदेश के साथ आज का दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम संपन्न करने की अपने दोस्त चरणजीत सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मुझे याद है जरा जरा। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी देहरादून में कार्यरत सनवर अली खान की आकाशवाणी नजीबाबाद की यादें आप सुनेंगे

0: एक वक्त के बाद बीते हुए वक्त की बातें बहुत याद आती हैं। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम मुझे याद है जरा जरा लेकर हाजिर हूं मैं आपका रेडियो मित्र चरणजीत सिंह। दोस्तों किसी ने कहा है कि जितना समेटो उतना ही बिखरती जाती है, ये ऐसी यादें हैं जो न चाहकर भी हमेशा साथ निभा जाती हैं। हमें भी आज याद आई उस शख्सियत की जिसने लंबा समय आकाशवाणी केंद्र नजीबाबाद के साथ गुजारा। मुझे याद है जरा जरा कार्यक्रम में हमारे आज के खास मेहमान हैं साल 1989 से साल 2023 तक नजीबाबाद केंद्र में कार्यरत सेवारत रहे स्टाफ आर्टिस्ट सनवर अली खान साहब। सबसे पहले तो हम अपने श्रोताओं को ये बता देना चाहते हैं कि सनवर अली खान वर्तमान में आकाशवाणी केंद्र देहरादून में कार्यरत हैं। और अब बता दें कि इन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर न केवल निजी व्यक्तित्व को, निजी पहचान को अंतरराष्ट्रीय पटल पर चमकाया है, बल्कि आकाशवाणी केंद्र नजीबाबाद और देहरादून का नाम भी आप रोशन कर रहे हैं। तो सनवर अली खान साहब, आज के इस खास कार्यक्रम मुझे याद है जरा जरा में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत इस्तकबाल।
1: चरणजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आकाशवाणी नजीबाबाद का जो कार्यक्रम है मुझे याद है जरा जरा, उसका भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। तमाम स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
0: तो सर, जैसे आज का ये कार्यक्रम हम और आप कुछ भूली बिसरी यादों को लेकर, कुछ ऐसी यादों को लेकर जो कहीं ना कहीं आपके जहन में आज भी ताजा हैं, या हो सकता है कि आपके जहन में कुछ धुंधली यादें हों, उन्हें आप ताजा करना चाहते हों, तो कुछ ऐसी बातें जो आपकी आकाशवाणी केंद्र नजीबाबाद की और रेडियो की आप आज हमारे साथ साझा करने वाले हों।
1: देखिए शरणजीत जी, मेरी जो जन्म भूमि है वो है सहारनपुर, और मेरी कर्म भूमि है वो है नजीबाबाद। मुझे याद है जरा जरा, जिस वक्त नजीबाबाद में 1983 में मेरे फादर जालंधर से ट्रांसफर होकर नजीबाबाद आकाशवाणी में आए थे, तब मैं उनके साथ आ गया था नजीबाबाद में। मुझे याद है जरा जरा, तैयारी कर रहा था मैं, प्रैक्टिस में था उस समय के बाद, कुछ वक्त के बाद वहां पे ऑडिशन हुए थे, तो मैंने वहां ऑडिशन में पार्टिसिपेट किया। हाँ, इतना जरूर मुझे याद है कि जब वाली साहब को ये पता लगा कि मैं ऑडिशन में बैठ रहा हूँ, तो उन्होंने उस दिन छुट्टी ले ली थी। मेरा जो सफर शुरू होता है वो होता ही नजीबाबाद आकाशवाणी से है।
0: अच्छा,
1: सबसे पहले मुझे वाली साहब ने सारंगी शुरू कराई थी। एक बार मैं और वाली साहब मेरे रिक्शा में बैठे हुए आ रहे थे, मेरी गोद से छूट कर सारंगी नीचे गिर गई थी, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। तो उस वक्त मुझे इतना बड़ा झटका लगा और मैं रोने लगा। बचपन से मैं डिब्बे बजाता था, प्लास्टिक के डिब्बे होते ना घरों में, पहले बानों के पलंग हुआ करते थे, वहाँ उनके जो पाए होते थे उसी पे तबला बजा रहा था। वाली साहब को लगा कि इसकी उंगलियां तो बहुत अच्छी हैं, तो उन्होंने फिर मेरा तबले पे हाथ रखाया। उस बीच में क्या हुआ कि मैं बड़े भाई साहब के साथ बम्बई चला गया। बम्बई जाने के बाद मैं फिर नजीबाबाद जब वापस आया, तो यहाँ पर स्टाफ में थे कि उस्ताद साबिर हुसैन खान साहब, स्टाफ आर्टिस्ट थे, तबले के आर्टिस्ट थे। तो वाली साहब ने मुझे उनसे घंटा बंधवाया, और उन्होंने जो मुझे प्यार दिया, शिक्षा दी, तालीम दी, वो आज आप लोगों के सबके सामने जो भी थोड़ा बहुत है, ये सब उनकी दुआओं की बदौलत है। हाँ, रहा सवाल ये कि नजीबाबाद में जितने भी अधिकारी और कर्मचारी रहे हैं,

0: 1989 से लेकर 2023 तक, तो शायद मैं दुनिया का पहला इंसान ऐसा हूं जिसको भरपूर प्यार मिला है सबसे। एनएन मेठानी साहब के सामने मैंने ज्वाइन किया था, जो उस वक्त एसडी हुआ करते थे, स्टेशन डायरेक्टर हुआ करते थे। यहाँ पर एक म्यूजिक कंपोजर थी श्रीमती माधुरी बर्थवाल जी, और वो मेरे पापा से म्यूजिक भी सीखती थी, संगीत भी सीखती थी। पंडित सुंदरलाल गंधर्व जी यहाँ पे स्टाफ आर्टिस्ट थे, बांसुरी वादक। उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार, बहुत ही स्नेह दिया है। नाम मुझे याद है माथुर साहब का, जो स्टेशन डायरेक्टर थे। और जो सबसे अहम मेरी जिंदगी में जो किरदार रहा, मेरी जिंदगी में जो बहुत ही बड़ा रोल रहा, हुसैन, मोहम्मद हुसैन साहब को आना था किसी रिकॉर्डिंग में या कंसर्ट में, शायद उनको आना था। तो उस्ताद साबिर हुसैन खान साहब चले गए छुट्टी पर, मैं जब उसमें नहीं था, स्टाफ आर्टिस्ट नहीं था मैं, तो वहां पे एक डिस्कस हुआ विभूति भूषण भट्ट साहब से, आरिफ साहब का। आरिफ साहब ने कहा कि भाई भट्ट साहब वो लोग आ रहे हैं, टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हैं, लेकिन आसपास में तो कोई ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा जो उनके साथ संगत कर सके। भट्ट साहब ने फौरन ही मेरा नाम लिया, नहीं सर एक नाम है और वो उनके साथ बहुत ही अच्छा बजा पाएंगे। कौन है जी? वो सनवर अली हैं। वो कौन है? खैर मैं उनसे तब तक मिला नहीं था। मैं जैसे उनके ऑफिस में मैंने एंटर किया तो एकदम से बोला आओ सनवर, मुझे याद है जरा जरा वो चीज। खैर उन्होंने कहा कि भाई अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन आ रहे हैं, क्या उनके साथ बजा पाओगे? तो अब जो भी हमारे उस्तादों ने हमें सिखाया, विरासत में जो हमें चीजें मिली हुई हैं, क्योंकि एक चीज आपने सुनी होगी कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। तो बचपन से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे ये काम चलता आ रहा है। तो मैंने कहा जी देखिए कोई भी हो हमारे लिए, तो हमारा काम ही यही है, वो कोई भी है तो हमें तो संगत करने में हमें तो कोई झिझक नहीं होती है।
1: चलिए, संगत करने की बात आप कर रहे हैं और आपने साबिर हुसैन खान उस्ताद रहे हैं आपके, तो उन्हें याद करते हुए हम कोई गीत अगर हम अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहें।
0: इस वक्त मेरे जहन में एक गीत घूम रहा है, आज सुबह से ही घूम रहा है। और वो गीत यह है, किस राह से किसी मोड़ पर, कहीं चल ना देना तो छोड़कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। ये गीत मुझे बहुत पसंद है।
1: तो चलिए सनवर साहब, हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: तो गीत सुनने के बाद सनवर साहब, हम एक बार फिर से इस कार्यक्रम को कुछ भूली बिसरी यादों के साथ आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि आपने हमारे साथ जिक्र किया था कि जब आपकी एंट्री हुई थी, जब आपका प्रवेश आकाशवाणी केंद्र नजीबाबाद में हुआ, तो यहाँ
1: जी
0: आपको स्टेशन डायरेक्टर के रूप में मिले थे श्री एन एन मैठानी साहब।
1: जी हाँ जी हाँ
0: तो आपने ये भी बताया कि उनसे काफी अच्छा सानिध्य मिला, काफी कुछ
1: जी
0: सीखने के लिए
1: जी
0: मिला।
1: जी
0: कितना
1: जी जी
0: लंबा समय आपका इनके साथ जुड़ाव रहा?
1: मैठारी साहब के साथ लगभग 1 साल से ज्यादा मेरा रहा है, और माथुर साहब के साथ भी मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। बड़ी मोहब्बत मुझसे करते थे, और बख्शी आरिफ साहब और गिरीशचंद भटनागर साहब और केजी सेना साहब, और एक नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा चरणजीत जी, एक यहाँ पर एडीपी आई थी मनदीप कौर मैडम जी।
0: जी
1: तो जब वो मुझे पता लगा कि वो नजीबाबाद आ रही हैं, तो उससे पहले जब वो रामपुर आकाशवाणी में थी, तो रामपुर आकाशवाणी में उन्होंने अक्सर मुझे देशभक्ति गीतों के लिए, बहुत सारी गजलें या गीत कंपोज कराने के लिए मुझे अक्सर वो बुलाती रहती थी टूर पर, कंसर्ट में बहुत बुलाती थी। जिस वक्त उन्होंने नजीबाबाद में ज्वाइन किया, तो मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तो हाँ, तो मैं उनको शुरू

0: छोटी मैं दीदी कहता था, जब मैं रामपुर जाता था तो मेरे को दीदी कहता था, तो उनसे मुझे बहुत भरपूर प्यार मिला और आज भी मिल रहा है। उन्होंने मुझे स्टाफ आर्टिस्ट तो मैं हूं ही था ही, लेकिन उसके अलावा जो उन्होंने दिगर काम मुझसे कराए हैं, जैसे कि जिंगल मेरे लिए एक नया नाम था वो, तो ऐसा भी हुआ चरणजीत जी एक बार मुझसे कहने की, सनावर भाई ऐसा है कि एक जिंगल बनाना है। मैंने कहा ठीक है जी। कहने 1 मिनट का है, तो मैंने सोचा 1 मिनट का है तो उसको तो 2 मिनट में बना देंगे हम। खैर उन्होंने जिंगल लिखा और मैंने उसको कंपोज किया और हमने रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। अभी रिकॉर्डिंग उस गीत की कर ली तो इतनी देर में एक स्लिप और आ जाती है दूसरे जिंगल की, ये मैडम ने ये भेजा है, उसकी रिकॉर्डिंग हुई तो उसको कंपोज किया उसको, मतलब ऐसे करते करते करते करते 9 जिंगल उन्होंने 1 घंटे में लिख दिया। 9 1 घंटे में ही वो कंपोज भी हो गए और रिकॉर्ड भी हो गए, आज भी आकाशवाणी नजीबाबाद से वो बज रहे हैं।
1: वाह,
0: चरणजीत जी आप वहाँ रेडियो में हैं, आकाशवाणी में हैं, आप अक्सर देखते होंगे वहां पे देशगान जितने भी बजते हैं, उन देशगान में 90% जो देशगान है वो मेरी आवाज में रिकॉर्ड हुए हैं।
1: बहुत अच्छी बात कि देशगान जैसे जो गीत हैं वो देशभक्ति गीत, वो भी 90% आप ही के द्वारा तैयार किए हुए हैं,
0: जी
1: और
0: ये, और ये सारी देन आकाशवाणी नजीबाबाद की है।
1: आकाशवाणी
0: चरणजीत जी
1: नजीबाबाद
0: मैं मेरे अब शुरू में आपसे क्या कहा है कि वो मेरी कर्मभूमि है।
1: कर्मभूमि रही है।
0: मैंने गढ़वाली भाषा में जो गीत गाए वो भी नजीबाबाद की देन है। मैंने कश्मीरी गीत जो है वो ऑल ओवर इंडिया से ब्रॉडकास्ट हुए मेरे गाए हुए कश्मीरी भाषा में, गढ़वाली भाषाओं में मैंने गाया है, उर्दू हिंदी पंजाबी, लेकिन खासतौर से गढ़वाली गीत जो है एक मेरा इतना पॉपुलर हुआ है वो, जाइए ब्योली तो सौरा सजा अब क्यों रुए रुए की जू ना झुरा, तो ये एक विदाई गीत है।
1: इस गीत को अगर आप गाकर सुना दें तो हम समझेंगे इस कार्यक्रम की गरिमा और थोड़ा और बढ़ जाएगी।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो ऐसे है चरणजीत जी, जय ब्योली तू सौरा से जा, जय ब्योली।

0: थोड़ा ये ऐसा है, मैं इसमें भावुक हो जाता हूँ चरणजीत जी,
1: बहुत
0: क्योंकि
1: खूब, बहुत खूब सनोवर साहब। इस प्यारे से भावुक कर देने वाले गीत को सुन लेने के बाद हम चाहेंगे कि कोई फिल्मी गीत भी हम अपने श्रोताओं को इस कार्यक्रम में सुनवाएं। तो कौन सा गीत आप हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे अब?
0: एक चीज मुझे बड़ा पसंद है, जो मैं आपको बता दूं चरणजीत, मेरे वाली साहब जो ना बहुत बड़े सारंगी वादक रहे हैं, और आकाशवाणी में ये तीसरी पीढ़ी है जो हम आकाशवाणी की सेवा कर रहे हैं। मेरे वालिद मोहतरम उस्ताद मकसूद हुसैन खान साहब, उसके बाद मैं और मेरा बेटा मोहम्मद शाहरुख, अभी तक आकाशवाणी की हम सेवा करते आ रहे हैं, और जब तक हमारी जिंदगी है, हम हमारी ये दुआ है अल्लाह ताला से कि जितनी भी पीढ़ियां आने वाले टाइम में आए वो सब आकाशवाणी की सेवा करें। तो
1: बहुत खूब।
0: मेरे वालिद साहब कभी कभी जब मूड में होते तो एक गीत बजाते थे वो, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो।
1: तो चलिए सनवर साहब, आप ही की पसंद का, जो कि आपके वालिद साहब भी गुनगुनाया करते थे, सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत हम अपने श्रोताओं को।

0: हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि आपके वालिद साहब और उसके बाद आप और आपके बाद आपके साहिबजादे, जो 3 पीढ़ियां आकाशवाणी के माध्यम से लोगों तक लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम पहुंचा रहे हैं, तो कितनी आप इसको संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि महसूस करते हैं, और क्या ऐसा महसूस अभी आप कर रहे हैं कि कुछ है जो छूट रहा है समाज को देने से, और आपकी कोशिश है उसे
1: देखिए
0: समाज तक पहुंचाने की?
1: चरणजीत जी, जैसे मैंने आपसे बार बार मैं एक चीज कह रहा हूं कि नजीबाबाद हमारी कर्मभूमि है, आकाशवाणी हमारी कर्मभूमि है। बहुत लोगों ने हमसे कहा कि क्या आप एक छोटी सी तहसील में पढ़े हो यार, आप लोग तो बम्बई आओ, क्योंकि हमारे परिवार वाले बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री में हैं, तो आप तो बम्बई आओ, कोई कहता आप दिल्ली जाओ, कोई कहता आप अरे कलकत्ता आप। लेकिन अब मैं एक चीज बताऊं, उस नजीबाबाद में ही रह करके मेरा बेटा बॉलीवुड में पहुंच गया, ये नजीबाबाद की देन है, आकाशवाणी की देन है ये।
0: बिल्कुल
1: और उसी नजीबाबाद में रहते हुए आकाशवाणी के चलते चलते मैं कई मुल्कों में होके आया हूँ, और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हम दोनों बाप बेटों को हमें उम्रा कराया गया, तो ये तो वहीं की देन है। अच्छा, अब सवाल यह है कि और क्या देना चाहते हैं हम? ये देना चाहते हैं चरणजीत जी के जो भी कुछ हमारे पास है, वो अभी हमारा बेटा अभी यूनिवर्सिटी देहरादून में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा है म्यूजिक डिपार्टमेंट में, साथ ही साथ वो म्यूजिक एकेडमी भी वो चला रहा है। तो हमारी कोशिश ये है कि जितना भी बांटा जाए, क्योंकि वाली साहब का कहना था कि प्यार और संगीत बांटने से बढ़ता है, तो जो भी हमारी कोशिश अभी तक कोशिश है, वहां भी मैंने नजीबाबाद में जब तक रहा हूं मैंने जरा सा भी किसी में टैलेंट देख लिया, चाहे वो कवि हो, वो शायर हो, या वो लेखक हो, या वो ड्रामे का है, या वो म्यूजिक का है, फोक का है, लाइट का है, क्लासिकल का है, मैं फौरन उसको कहता था कि आप नजीबाबाद आइए, वो आकाशवाणी आइएगा। और फिर वहां उस वक्त में जो भी डायरेक्टर या एडीपी जो भी रहते थे मैं उनसे मिलवा देता था, फिर उनका इंट्रोडक्शन होता था, फिर उनको मैं घर जाकर सिखाता भी था। मुझे एक संतुष्टि मिलती है सेवा करने की। मेरी संगीत के अलावा भी अगर कोई मुझसे किसी भी तरह का कोई काम कह दे, मैं आधी रात भी उसके लिए खड़ा रहता हूं। एक नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा, मेरी जिंदगी में एक बार सिर्फ एक ऐसा मोड़ आया था नजीबाबाद में रहते हुए, मैं सहारनपुर गया था एक किसी काम से, तो वहां अचानक से ना लॉकडाउन लग गया था, तो वो परिस्थिति आपको पता है कि दुनिया थम गई थी, वो ऐसा दौर था। तो उस वक्त जब मैं सहारनपुर से लौट कर आया था, तो कुछ लोग जो है ना ऐसे बच रहे थे कि जो मेरे साथ के कुछ लोग थे, मैं उनका नाम ले लूंगा, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोरोना जो है अपनी जेब में लेके घूम रहा हूँ। तो चरणजीत जी, वो मेरे लिए ऐसा था कि मैं डिप्रेशन में ही आ गया था सीधा ही, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा प्यार करने वाला इंसान हूँ, प्यार बांटने वाला इंसान हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि मैं डिप्रेशन में आ गया और मेरी तबीयत खराब होने वाली है। उस वक्त में एक किरदार मेरे सामने आता है शोभित शर्मा जी का, वो चीज को समझ गए कि ये क्यों परेशान है, क्यों ये टेंशन में है, और मेरा जो ये माथा होता है ना, इसे पेशानी कहते हैं, इसकी जो नसें होती है मेरी खड़ी हो गई थी, ऐसे लगते थे फट जाएंगी, मैं इतना डिप्रेशन में आ गया था। तो मुझसे एकदम कहने लगे, सनवर जी आज आपने क्या बनाया, घर पे क्या बना आपके? अरे मैंने कहा शोभित जी खिचड़ी बनी हुई है। चले सनवर जी मैं करेले लेके आया हूँ, आप ले आइएगा साथ खाएंगे। और एक यहाँ पे अंजलि कुमारी जी पैक्स हुआ करती थी, जो आजकल झांसी में एडीपी हैं, वो बोली सनोर भाई मैं राजमा लेके आई हूँ, आज हम तीनों साथ में खाएंगे बैठ करके। अब मैं घर से खिचड़ी

0: तो सनवर साहब, वास्तव में इस गीत को सुन लेने के बाद अब कार्यक्रम में समय ज्यादा नहीं बचा है, और हमारा मन तो यही था कि हम अपने श्रोताओं को आपके जहन में कुछ बातें जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, साझा करना चाहें, वो हम बताएं। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि चलते चलते क्या आप कुछ ऐसी बात जो बताने से छूट गई हो, जो आपके जहन में आज भी हो और जो आप चाहते हैं कि आपके माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से लोगों तक पहुंचे।
1: कई जन्म बीत जाएंगे, मैं कह नहीं पाऊंगा, इतने इतना सब कुछ है। और मैं आने वाले लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग आकाशवाणी से जुड़े और अच्छे लोगों से जुड़े। आपका जो टैलेंट है, ये आकाशवाणी ही एक ऐसा मंच है, क्योंकि देखिए अभी हमारे आकाशवाणी 90 साल पूरे किए हैं आकाशवाणी ने, जिसका हर जगह जश्न हो रहा है। हर ये इतना बड़ा मंच है चरणजीत जी, कोई भी आर्टिस्ट जो नेशनल से इंटरनेशनल तक है, वो चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री है, बड़े स्टेज हैं, या आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, जो बड़े बड़े टॉप ग्रेड अगर आज हैं, वो सिर्फ आकाशवाणी और सिर्फ आकाशवाणी की ही देन है। शायर जितने बड़े शायर इंडिया में हैं, शायद ही कोई शायर ऐसा होगा जो आकाशवाणी से गुजरा ना हो।
0: सनवर साहब, मुझे याद है कि आप एक अच्छे गजल गायक हैं और गजल गायकी के क्षेत्र में आपने काफी नाम कमाया है, आकाशवाणी को आपने कई उपलब्धियां दिलाई हैं, और इस मौके पर हम ये चाहेंगे कि कोई ऐसी गजल जो आपको याद हो, आप

0: शुरुआत में उस गजल को आवाज दी हो या गजल को आपने तर्ज दी हो, वो गजल अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहें इस कार्यक्रम में।
1: चरणजीत जी, नजीबाबाद में एक शायर हुए हैं जनाब महेंद्र सिंह अश्क साहब,
0: जी
1: तो वो मुझको इतना प्यार करते थे, वो जो भी गजल लिखते थे उस गजल को लिख के वो पहले मेरे पास आते थे,
0: अच्छा
1: और मजाक में मुझे उस्ताद मोहतरम भी कहते थे वो।
0: जी
1: बहुत बड़े उस्ताद,
0: जी
1: अपने फन
0: जी
1: के उस्ताद,
0: वाकई
1: उनके बारे में क्या कहें।
0: बिल्कुल
1: तो कोई भी गजल वो लेकर आते थे तो सबसे पहले कहते थे, अरे उस्ताद मोहतरम देखो ये गजल लिखी है मैंने। तो उस गजल को उसी दिन कंपोज किया जाता था और उसी दिन उसको रिकॉर्ड किया जाता था। और मैंने जहां भी कॉन्सर्ट किए हैं, कोई भी कॉन्सर्ट ऐसा नहीं है जहां मैंने अश्क साहब की गजल ना गाई हो। तो एक कंपोज मैंने बहुत पुराना किया था, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। हालांकि इस वक्त गला को जो ना बहुत भावुक हुआ हुआ हूं मैं, लेकिन मैं फिर भी दो लाइन सुना रहा हूं।
0: नहीं, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये किस किस साल की, यानी कितनी पुरानी ये गजल, ये वाकया रहा होगा।
1: अगर वाकई की बात करें तो, अगर मेरी सबसे पहली अगर गजल की बात करें तो मैंने पहली गजल वो करी थी, दिल चला टूट कर जिस वक्त तेरे तीर के साथ, हसरतें फूट कर रोई मेरी तकदीर के साथ।
0: जी
1: तुम तो हंस बोल कर गैरों में गुजारो अपनी, मेरी तकदीर का रोना मेरी तकदीर के साथ। ये मैंने नजीबाबाद में पहला कंपोज किया था, और जब मैं जालंधर में युवाणी में मेरी पहली एंट्री हुई थी तो मेरे वाली साहब ने एक पहली और आखिरी गजल जिसे कहते हैं लिखी थी। इश्क में हमने रोग लगाए, इश्क में हमने रोग लगाए, जहां भी गवाई अश्क बहाए। अब चरणजीत जी एक शेर देखिएगा, जो एक दुनिया की और इंसान की जो सच्चाई से जुड़ा हुआ शेर है। खाके फना में हमको मिलाकर, खाके फना में हमको मिलाकर, छोड़ गए सब अपने पराए। इश्क में हमने रोग लगाए, जहां भी गवाई अश्क बहाए।
0: तो अब अश्क के बाद भाई याद कर लेते हैं महेंद्र अश्क को।
1: जी, बिल्कुल। उनकी एक गजल बड़ी पॉपुलर हुई, बस ये तो देखिए ईश्वर की मेहरबानी है चरणजीत जी। पॉपुलर वो इसलिए हो गई है कि वो अश्क साहब ने लिखी थी, हमारा तो एक जरिया बन गया, बहाना बन गया। हम जब उनके नगर जाएंगे लोग जल जल के मर जाएंगे, हम तो खुशबू हैं ऐ दोस्त, दुश्मनों के भी घर जाएंगे। तो ये गजल इतनी पॉपुलर रही है अश्क साहब की, और सारी गजलें लगभग उनकी जितनी भी हैं बड़ी पॉपुलर रही हैं। और मुझे
0: वास्तव में ये आज जो आपसे हमने आज बातचीत की है, और न केवल आपके यादों में ये बातें ताजा हुई हैं, बल्कि बहुत कुछ हमें भी आज पुराने दिन याद आ गए, पुराने दौर की बातें याद आ गईं, और हम चाहेंगे कि ये यादें हमेशा आपके और हमारे और हमारे श्रोताओं के जहन में ताजा रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम आपसे अब विदा लेना चाहेंगे सनवर साहब, और इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
0: तो श्रोताओं, हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे स्टाफ आर्टिस्ट आकाशवाणी केंद्र देहरादून में तैनात श्री सनवर अली खान साहब, जिन्होंने अपनी पुरानी यादें हमारे साथ ताजा की और बताया कि उन्होंने किस दौर को किस अंदाज में जिया है। और साथ ही उन्होंने एक मैसेज दिया है कि उनके बुजुर्ग उन्हें हमेशा कहते आए हैं कि प्यार और संगीत बांटने से बढ़ता है। तो श्रोताओं, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अब कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मुझे याद है जरा जरा। प्रस्तुति सहयोग था चरणजीत सिंह का और प्रस्तुतकर्ता थे शोभित शर्मा। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन

0: कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ. जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद। 10 मिनट हो रहे हैं। हमारी द्वितीय प्रसारण सभा के कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होते हैं। कल यानी गुरुवार को प्रातःकालीन प्रसारण सभा में सुबह 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।